0: तारीख पर तारीख।
1: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
3: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सस। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
4: सेम डे से बोर हो गए? ट्राई समथिंग डिफरेंट। मैक्सिकन फ्यूजन ग्लोबल फ्लेवर्स, हैप्पी आवर्स, नियॉन कैक्टस फेयरव्यू, मैक्सिकन बट डिफरेंट। एग्जैक्टली
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: हेलो टेक्सस परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड आर यू स्ट्रगलिंग विद योर क्वालिफिकेशन? Yes, we have loan options for you. So call कीजिए कामना को at 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 926641।
10: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
11: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
10: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
12: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
13: हाँ।
12: घर रिलोकेट करनी है?
13: हाँ।
12: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
13: हाँ भाई हाँ।
12: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
14: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
15: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, सुइट 205, फ्रिस्को।
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
16: क्या मतलब?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
17: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
16: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
18: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: We

डैलस की जनता, क्या हाल है? आप सुन रहे हैं एन इवनिंग इन डैलस विद मी इपी द हिपी, एंड दिस इज ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 FM। भाई आज आने से पहले ना मैं रेडियो सुन रही थी ऑन माय ड्राइव ओवर हियर। तो पहली चीज तो थैंक यू मार्विन जी फॉर गिविंग मी अ शाउट आउट। आपने मेरा नाम थोड़ा गड़बड़ कर दिया, हिपी द हिपी बोल दिया, फिर इपी द हिपी बोल के वॉट एवर बोल दिया। कोई बात नहीं भाई, एज लॉन्ग एज हमें पता चल जाए। मेरे नाम तो कितने सारे रह चुके हैं, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो मेरा नाम हर बारी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आपको क्या लगता है? इज इट टू कॉम्प्लिकेटेड और टू ईजी? एनी वेज, इट्स फन टू से, दैट्स ऑल वी केयर अबाउट। इट्स फन, इट्स कैची, इट्स क्यूट, दैट्स वॉट वी केयर अबाउट। तो मारन जी ने यह भी बोला कि भाई आई एम काउंटिंग ऑन यू कि आप ज़्यादा एनी वेज मत बोलना। मैंने बोला भाई I am counting on myself. I am counting my myself. How many anyways I say every time on my show? Because apparently it's more, way, way, way more than what anybody wants to hear. Anyway, no, I'm kidding. I wasn't gonna say it. Gotcha. लेकिन भाई जैसे मेरे पिछले पूरे लाइक दिस मंडे से मेरी थोड़ी मैंने अपने लिए डेट डाली हुई थी, एक्चुअली डेट नहीं सॉरी नंबर डाला हुआ था, विच इज़ कि मैं 5 से ज़्यादा एनीवेज पूरे 3 घंटे में नहीं बोलूँगी, एंड आई विल स्टिक विथ दैट। अगर मैंने उससे ज़्यादा बोल दिया देन आप मुझे प्लीज़ कॉल करके बताना भाई इपी आपने एनीवेज 6 बार ही बोल दिया आज, फिर मैं देन आई विल हैव टू डू एक्स्ट्रा चेकिंग। एनीवेज, जाने से पहले मारवन जी, अरे यार फिर बोल दिया, ले वन गॉन 4 लेफ्ट। तो जाने से पहले मारवन जी ने बोला कि भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टू टेक केयर ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। ठीक है, मतलब आप मेहनत कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, अगर आपको ट्रिप लेनी है, छुट्टी लेनी है, घूमने जाना है, इट डजेंट मैटर, मे बी यूल हैव सम एनिमीज अलॉन्ग द वे, मे बी पीपल वॉन्ट लाइक इट, कोई बात नहीं। आप कोई भी दो चीज़ अच्छी डालते हो ना सोशल मीडिया पे, 4 लोग आप पे नज़र वैसे ही डाल देते हैं। मुझे तो ये लगता है कि कोई कहता है हाय मैं क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया, सर से वो वाली वाली वाइब्स आ जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं उससे ना एक काउंटर सिचुएशन देती हूँ मारविन जी के लिए भी और आप सभी के लिए भी। भाई अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो और अगर आपको खुशी इन्जॉय करने के पैसे ही नहीं मिल रहे हैं तो आप कैसे अपनी खुशी इन्जॉय करोगे? खुशी वैसे हर चीज़ में ढूंढी जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें भाई, वी लिव इन अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, वी लिव इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर आपको उतनी मेहनत कर रहे हो, 14-14, 15-15 घंटा काम कर रहे हो और जहाँ भी आप जा रहे हो हर जगह से आपका पैसा कोई चुरा के अपनी जेबें भर रहा है और आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आप क्या करोगे? हैं, देन आप कहाँ से खुशी ढूंढोगे भाई? दैट इज द क्वेश्चन। चलो तब तक के लिए ये गाना सुनते हैं, वी विल कम बैक एंड टॉक सम मोर।

भाई वो गाना जो आपने सुना, दैट इज फ्रॉम पापोन्स न्यू एल्बम विच आई जस्ट केम अक्रॉस टुडे. इट इज कॉल्ड महफिल विद पापोन फ्रॉम द लिविंग रूम, एंड आई थिंक द सीरीज इज कॉल्ड इरशाद. तो मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा आपके लिए प्ले करूँ. अभी उसके दो गाने ही रिलीज हुए हैं, सो आई विल ट्राई एंड प्ले ऑल द सॉन्ग्स फॉर यू विद इन द नेक्स्ट 3 hours. सो होपफुली आप इंजॉय करेंगे उस गाने को. आगे बढ़ते हैं. तो मैंने इसके पहले जाने से पूछा, मैंने कहा यार भाई, अब आपको सवाल ये है कि आप खुशी तो बना सकते हो, जैसे ट्रिप वगैरह पे जाके आपको खुशी मिलती है, या फिर कई लोगों को रेस्टोरेंट में खा के खुशी मिलती है वगैरह वगैरह. तो सुरैया जी ने मुझे अभी कॉल किया, उन्होंने बोला भाई खुशी शुड नॉट बी टाइड टू जस्ट द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट. खुशी तो दिल से आती है. दैट्स ट्रू, खुशी दिल से ज़रूर आती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि दिल से खुशी आने के लिए आपकी वो मेंटल स्थिति भी होनी चाहिए ना, कि अगर आपको दिल से आप रिलैक्स रहोगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे. जो आदमी स्ट्रेस फ्री रहता है ना, वो वैसे ही खुश हो जाता है. लेकिन ये जो लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव लाइफ, आई फील लाइक. जैसे मतलब यू नो, से लिविंग इन टेक्सस, अगर आपके पास ढंग की गाड़ी नहीं है, आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, स्ट्रेस वहीं पे होता है. तभी हमारे पास उमर ख्वाजा जी के एड्स भी आते हैं, क्योंकि यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी स्ट्रेस फ्री, राइट? या फिर हैविंग द राइट काइंड ऑफ वर्क, थिंग्स लाइक व्हेन वी आर इमिग्रेंट्स लिविंग इन अमेरिका फॉर सो मेनी इयर्स, थिंग्स लाइक वीजा सिचुएशंस, थिंग्स लाइक रिलेशनशिप ट्रबल्स, बॉयफ्रेंड ट्रबल्स, थिंग्स लाइक आई डोंट नो, फैमिली ट्रबल्स, योर किड्स, वॉट एवर इट कुड बी एनीथिंग. जब आपके पास ये छोटी छोटी स्ट्रेस चीज़ें होंगी ना, देन खुशी लाना इज़ वेरी इजी. इट्स वेरी इजी टू बी हैप्पी. बट एक गरीब आदमी से पूछो जो इंडिया में रस्ते में खड़े होके भीख मांग रहा है या दिहाड़ी कर रहा है, डेली मजदूरी कर रहा है, उसको आप खुशी पूछोगे, उसकी खुशी दो वक्त की रोटी में होगी. कहते हैं उसको दो वक्त की रोटी मिल गई ना, कि दो वक्त की क्या, एक वक्त की रोटी मिल गई उसको, वो बेचारे को वही उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है कि हाय आज रात हम खाना खा के सोएंगे. मैंने कितने ऐसे गरीबों को देखा है इंडिया में, और उनकी लाइफ स्टोरीज भी, वो डेली मजदूरी करते हैं, रास्ते पे खड़े होके चीज़ें बेचते हैं, छोटे छोटे इयररिंग्स बेचते हैं, की चेन्स बेचते हैं. उनके लिए जस्ट दैट मनी, दैट लिटिल बिट ऑफ दैट कमर्शियल एस्पेक्ट इज द एंटायर खुशी, द एंटायर स्टेट, द यूनिवर्स ऑफ खुशी इज बेसिकली जस्ट दैट मच, है ना? थोड़ी सी चीज़ें, ओके, एंड देन दैट्स ऑल. तो इसी से दूसरा गाना सुनते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
4: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
5: Excuse me. It's called being loyal.
4: It's called being predictable.
5: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
4: And what's so special at Neon Cactus?
5: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
4: Not bad.
5: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
4: Okay, this I didn't expect from you.
5: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
3: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
6: Thousands की लाइफ बदली उनकी divine guidance से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और visit astrologerishwar.com.
7: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
8: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
7: कैसे?
8: पेज 3 ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
8: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
9: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
10: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
11: इट्स लॉसन।
10: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
11: इट्स लॉसन।
10: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
12: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
13: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

गाइज वी आर बैक। कैसे हैं? आपका वेंसडे इवनिंग है ना? वेंसडे इवनिंग कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है कि नहीं? वेल, दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। आर यू लुकिंग टू ऐड अ लिटिल स्पार्कल टू योर स्पेशल मोमेंट्स? यू कैन विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन, फ्रॉम ब्यूटिफुल रिंग्स एंड इयररिंग्स टू डैजलिंग नेकलेसेस एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स. Find the perfect piece for engagements, anniversary celebrations, or simply for treating yourself on the day you get paid or not. I have not been paid in a while, so that's why I can't go. Okay, experience unmatched craftsmanship and brilliance at Malabar Gold and Diamonds in Frisco. And don't forget, download the Malabar Gold and Diamonds mobile app for the latest collection and updates and more details. Well, क्योंकि हमारा मूड चल रहा है इसी के चक्कर में, तो मैं आपके लिए इसी से रिलेटेड गाना बजाऊंगी. दिस इज फ्रॉम द न्यू मूवी वेलकम टू द जंगल. आई वंडर इफ इट्स लाइक जुमानजी.

0: क्यों थक रहे हो?
1: जिंगलू में तेरा पैसा पैसा पैसा, चैन आए लेके पैसा पैसा पैसा, एक ही तो शौक है मेरा
2: पैसा ही पैसा।

0: ₹50 काटो ओवर एक्टिंग का।
1: जीना मरना पैसा पैसा पैसा, नींद चुराए मेरी पैसा पैसा पैसा, एक ही तो शौक है मेरे।

हाय गाइस, उसी से रिलेटेड बिकॉज वी आर लिसनिंग टू. वैसे उस गाने से मुझे समहाउ इट साउंड्स लाइक इट्स गॉट द सेम वाइब एज एबा, रास्पुटिन, बोनी एम एंड यू नो दैट 70s 80s डिस्को वाइब. इट्स गॉट द सेम साउंड. आई एम नॉट सेइंग ये कॉपी है किसी का, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली इसका ट्यून तो नहीं पता, बट इट्स गॉट द सेम बेस लाइन, सेम रिदम स्ट्रक्चर है ना. इट्स प्रीटी कैची. आई लाइक इट, आई लाइक इट. थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दैट ट्रैक ज़िमरान. एंड दिस इज हवा हवा इन द वॉइस ऑफ हसन जहांगीर, लेकिन अ लिटिल बिट बेटर क्वालिटी ऑडियो वर्जन.

ऑलराइट गाइस, हम जाने वाले थोड़े से छोटे से ब्रेक में, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 8 o'clock को क्या होने वाला है। 8 o'clock को होता है हमारा गिव अवे, दैट इज राइट। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड बिकॉज 8 o'clock का हमारा बड़ा अच्छा अच्छा गिव अवे होने वाला है। आई हैव टू टू गिव अवेज दिस वीक, लाइक आई सेड, दिस इज योर लकी वीक। तो आप जरूर कॉल करिएगा एंड वी आर गोइंग टू प्ले द कॉपी कैट गेम। तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं।

0: साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम। 9191 काइज़रवे स्वीट 205 फ्रिस्को।
1: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
2: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
2: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
1: ये क्या होता?
2: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
3: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
0: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
6: Calculating route, rerouting.
0: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
6: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
0: क्यों?
6: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
0: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
6: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
7: कफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डट्स मे बी टू ब्लेम एंड क्लॉग ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर्स। डक टाइम रिमूव्स डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एंड लिंट, गिविंग यू क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ, एनर्जी सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड। सर्विंग द DFW एरिया एंड 15+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद CSIA सर्टिफाइड टेक्नीशियंस एंड फ्री एस्टिमेट्स। फन एशिया लिसनर्स गेट $100 ऑफ डक्ट क्लीनिंग प्लस dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Ducktime.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
11: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभाल लेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
9: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
12: And guys, we are back. Well, this is the time for our giveaway. तो भाई giveaway कैसे खेलेंगे? पहले मैं गाना बजाऊंगी, which is from anywhere in the world, and उसके बाद आपको मुझे बताना है what is the Bollywood song of that धुन, of that melody. ठीक है? Very simple. Nothing complicated. आपको क्या करना है, बस कॉल करके मुझे आंसर बताना है. ओके, दैट सिंपल. 972-235-5555, दैट इज माई स्टूडियो नंबर. एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू एन इवनिंग इन डैलस ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM विद योर बेस्टी इपी द हिपी. तो पहले ये तो बता दूं कि आप जीत क्या सकते हैं. यू कैन विन समथिंग चीज़ी विद अ देसी ट्विस्ट फ्रॉम फन पिज्जा किचन, जिसका पिज्जा मैं अभी थोड़ा सा खा के आई हूँ, क्योंकि कल हम लोग शूट कर रहे थे, उसके लेफ्ट ओवर पिज्जा था और मैंने आज वो डिनर में वही पिज्जा खाया. हाहा, बिकॉज समटाइम्स कोल्ड पिज्जा इज नाइस. आपने कभी नहीं ट्राई किया? यू शुड ट्राई इट, इट्स रियली गुड. आई हैड दैट तंदूरी चिकन पिज्जा, गाइज इट वॉज सो गुड, एंड देयर वर दीज एलापिनोज ऑन टॉप, यम. तो फन पिज्जा किचन में ये सारा फ्लेवर मिलेगा अलॉन्ग विद देयर वेजिटेरियन ऑप्शंस टू. दे ऑल्सो हैव अ रियली नाइस डिजर्ट सेक्शन विच आई हैड. आई थिंक इट वॉज द चॉकलेट चीज केक विच इज प्रीटी गुड. सो हियर इज योर चांस टू विन ए $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को. मेक श्योर इट्स द फ्रिस्को लोकेशन एंड नॉट द कॉलोनी लोकेशन. ओके तो खेलें. तो दिए गोज माई क्वेश्चन. आप नंबर डायल करके रेडी रहिएगा. ओके हियर वी गो.

भाई दिस इज कॉल्ड अ मोटिव. आप छोटा सा गाने का पार्ट लेते हो ना, टीड़े, और उसको आप बिल्ड करो कि पूरा गाना ही बन जाए उसके ऊपर, है ना. दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ मोटिफ. म्यूजिकल लैंग्वेज में हम उसको मोटिफ बोलते हैं. एनी वेज गाइज, अरे दूसरा एनी वेज आ गया, कोई बात नहीं, 8 बज चुके हैं. दैट्स नॉट बैड. आई एम डूइंग वेल टुडे. ठीक है, तो 2 एनी वेज इन 3 घंटे चलेगा, मतलब 2 घंटे हो गए वैसे तो, बट ठीक है गाइज, आई एम डूइंग रियली वेल, है ना. तो आगे बढ़ते हैं, एनी वेज की जगह हम कुछ और बोलेंगे. एक दूसरा गाना सुनते हैं. 8:30 को हमारा दूसरा गिव अवे होगा, तो स्टे ट्यून्ड. तब तक के लिए ये गाना सुनिए.

Guys, this next part of the show is brought to you by AG FinTax, one of the fastest growing tax firms in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. Call 469-942-9888. Well, I am definitely not feeling lucky this week. एक के बाद एक कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही है लाइफ में, लेकिन कोई बात नहीं. मे बी इट्स दैट टाइम ऑफ द वीक, यू नो, दैट टाइम ऑफ द ईयर. वो नहीं बोलते क्या उसको बोलते हैं, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड. आपको विश्वास है कि नहीं? मुझे तो भाई बहुत विश्वास है. मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एक टाइम पे आता है वेयर इट फील्स लाइक द प्लैनेट मर्क्यूरी इज गोइंग बैक, और फिर उसमें ना सब कुछ गड़बड़ होता है. जितने घर में आपकी चीज़ें टूटती हैं, गाड़ी खराब होना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होना वगैरह वगैरह, या फिर कुछ डिले होना काम में, अपेरेंटली उसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आ गया है, तो कुछ काम धीरे धीरे अटक अटक के चलेगा. जैसे ही रेट्रोग्रेड ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही वो अपने आप स्मूथली अपने आप सारे काम हो जाएंगे. मुझे तो लगता है ये इस बात में थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि मैंने ट्रैक करके देखा है कि इसमें थोड़ी तो सच्चाई, एटलीस्ट मेरी लाइफ के साथ तो हमेशा वैसे ही होता है. मतलब जब भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आता है ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा होता है लाइफ में. कोई बात नहीं, हम चाहे लकी हो ना हो, लेकिन ये गाना तो बहुत लकी है, तो इसको ये सुनते हैं.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
9: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
8: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
10: इस शहर को हुआ क्या, कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
11: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
12: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स में वेरी।
14: छोटा सा मेरो मदन गोपाल।
15: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
16: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
17: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
18: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
19: फ्रेंड्स, वक्त आ चुका है दूसरे वाले गिव अवे का और मैंने सिर्फ अभी तक दो ही एनीवेज बोले हैं। वाह, शानदार प्रदर्शन, तालियां तालियां मेरे लिए। तो दूसरा वाला गिव अवे क्या है वो भी बोल दूं। दिस इज फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज। आप जीत सकते हैं एक दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को। दिस ऑफर इज वैलिड फॉर डाइन एंड ओनली। प्लीज मेक श्योर आपने पिछले एक महीने में ये गिव अवे नहीं जीता है, नहीं तो बाकियों को चांस नहीं मिलता यार, सबको चांस देना चाहिए। एंड दूसरा, आप अगर जीतते हैं, इफ इट इज योर लकी डे देन यू शुड रिडीम इट विद इन द नेक्स्ट वन वीक। ठीक है, तो गिव अवे सिंपल है, सेम फॉर्मेट है। वी आर गोइंग टू प्ले ए ट्यून, विच इज ए नॉट ए बॉलीवुड ट्यून. आपको उसको मैचिंग बॉलीवुड ट्यून गा के बताना है. गाना जरूरी नहीं है, बस बता देने से चलेगा. एंड इट इज वेरी सिंपल, दिस वन इज सुपर सुपर सिंपल. ठीक है, तो माई नंबर इज 9722355555. तो शुरू करें भाई.

0: नहीं, रणवीर सिंह है फिल्म में, वाणी कपूर भी है। एंड हियर वी गो। हाय फाइनेंशियल रेडियो, कैन यू हियर मी?
1: यस हाय। नशे से चढ़ गई हो?
0: वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव वन। पहले आंसर दे दिया, वेरी गुड। पहले अपना नाम तो बताइए।
1: मेरा नाम चाणक्य है।
0: चाणक्य, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव वन द गिव अवे। ये Awesome. So stay on the line. I'm going to play the song real quickly and then I'll come back and take your information, okay?
1: Okay.
0: Okay, guys. Chanakya has won the giveaway. Woohoo! From the Flavor Lounge. And here is the song. Oh, sorry. Give me one second.
1: Oh, yeah.
0: It's a double gana baj gaya. And here we go. Hi, Chanakya. Can you hear me? Yes.

आई लाइक दिस थिंग ऑफ हर्स, जो हर गाने के बाद वो प्यारा सा बोलती ना, थैंक यू. एक्चुअली इट्स वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस 1920s जैज सिंगर कॉल अनेट हैनशॉ, जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ. लाइक आई लव हर सिंगिंग. वो हर गाने के बाद ना, शी हैड दिस लाइक थिंग ऑफ सेइंग दैट्स ऑल, और ये बोलती है थैंक यू सुरीला. इट्स सुपर क्यूट. आई थिंक इट्स वेरी नाइस. एनी वेज गाइज, ओ थर्ड एनी वेज, नॉट नॉट बैड. 1.5 घंटे में 3 हुआ है. चलो नॉट बैड नॉट बैड. आई थिंक वी आर डूइंग ओके. सो वी विल लिसन टू दिस सॉन्ग एंड कम बैक एंड टॉक सम मोर. लेकिन उसके पहले डैलस, द वेट इज ओवर. PMJ जूल्स इज नाउ कमिंग टू फ्रिस्को, ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. एक्सप्लोर स्टनिंग गोल्ड, diamond and bridal collections for every celebration and milestone. Join the grand opening celebration starting June 20th and enjoy exclusive offers, exciting festivities and chances to win beautiful jewelry pieces. Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Ghatamaneni, PMJ is a trusted name by generations. Visit PMJ Jewels in Frisco on Main Street. Discover jewelry that tells your story. Bhai, ye bolte bolte mujhe achanak se ye cheez yaad aayi. Have you guys noticed gas prices are back to normal? There's a lot of gas pumps jahan pe gas is under $3 now. Woohoo! To gas prices. I don't know, war khatam ho gaya shayad, isiliye shayad gas prices normalize ho gayi hain. Lekin I don't know if you guys have noticed a pattern. मैंने तो पिछले 4 साल से notice किया. When basically I started driving a lot, like 2022 से the amount of driving I was doing all over DFW for lessons, work, gigs वगैरह वगैरह, it has increased significantly. तो मेरी गाड़ी दो तीन बार ही खराब भी हो चुकी है. उसमें मैंने बीच में नई गाड़ी भी ले ली. अभी वो गाड़ी चल रही है, थैंकफुली, थैंक गॉड, भगवान की कृपा से कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है. लेकिन क्योंकि मेरे को गाड़ी से इतना ट्रैवल करना पड़ता है, तो आई नोटिस द गैस प्राइसेस ऑन एन एवरीडे बेसिस. फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैड दिस ऐप कॉल्ड गैस बडी, जिसमें मैं प्राइसेस देख के जाती थी कि भाई कौन से गैस में प्राइस, कौन से पंप में प्राइस कम है और व्हाटएवर, इट मेक्स सेंस. Because a few weeks back, it reached like almost $4. Isn't that wild? So expensive. So, gas abhi normal ho chuki hai. So, you should get your gas tank filled up. Find the gas pump which is the cheapest in your area. And agar if anyone is above 3, to wo loot rahe hain bhai aapko. Go to a pump which charges you less. There are so many of them, those. And I don't mean Costco. I mean like normal gas pumps also, where you don't need some kind of a membership. But talking about that, have you noticed there's a pattern? हर समर में मई जून के महीने में गैस प्राइसेस स्काई रॉकेट. मैं पिछले 4 साल से नोटिस करी हूँ. मई आते ही गैस प्राइसेस $3.5-4 के ऊपर, मतलब उसी रेंज में होती है. और जैसे ही समर खत्म होने को आता है या मिड समर हो जाता है, यू नो आई एम टॉकिंग लाइक जुलाई आते ही, फिर नॉर्मलाइज होने जाती है. आई डोंट नो, हर साल कुछ ना कुछ होता है बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स ओवर $3.50. एंड आई हैव नोटिस दिस एज अ पैटर्न. आई वंडर इफ दिस इज ऑल प्लान्ड, और डू यू थिंक इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट वॉर दिस दैट हैपन्स एवरी ईयर. व्हाट डू यू थिंक, टेल मी, और नॉट. एंजॉय द सॉन्ग.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
4: It's Lawson.
3: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
4: It's Lawson.
3: Daddy, what is the law?
5: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
9: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे

0: दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
1: इन प्लेनो
0: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपेटिटर कोर्ट मैच भी कॉल 4692983870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
3: भूख लगी जोरों की भूख लगी
4: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है
5: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू ऑल अंडर One roof at Page 3 Eatery. Honestly, ये सिर्फ खाना नहीं है. It's what your mood is actually craving.
4: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
7: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है
8: हाँ
7: घर रिलोकेट करनी है
8: हाँ
7: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है
8: हाँ भाई हाँ
7: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है SFL Worldwide को कॉल कर
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग बॉक्सेस शिपिंग कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन ऑटो ट्रांसपोर्ट सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज SFL Worldwide हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.
11: And we are back, friends. This next part of the show is brought to you by Barabish Passion Health Primary Care. आपका डॉक्टर आपके साथ कितना टाइम स्पेंड करता है 5 minutes 10 minutes एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 minutes बिकॉज योर हेल्थ टेक्स टाइम यू नो अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ इट डेफिनेटली टेक्स टाइम एट पैशन हेल्थ आप सिर्फ पेशेंट नहीं है यू आर ट्रीटेड लाइक अ फैमिली फॉर यू योर फैमिली एंड द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एंड दैट्स नॉट ऑल They are growing, so they are actually hiring primary care doctors, endocrinologists, pediatricians, psychiatrists for full-time and part-time opportunities. If you're passionate about patient care, you can send your resume to passionhealthphysicians@gmail.com or text 217-454-4639 for more info. Or visit passionhealthphysicians.com or call or text 214-666-6259. Your health is their passion, okay? तो उसी से आगे बढ़ते हैं एनीवेज बिना बोले हुए आगे चलते हैं दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय उषा उथप भगवान को बुलाता है यार लाइफ में सब कुछ गड़बड़ जा रही है आजकल

गाइज, आपने कॉकटेल टू देखी कि नहीं अभी तक? कॉकटेल टू रिलीज हो चुकी है, पिछले फ्राइडे हुई थी रिलीज, पूरा एक हफ्ता हो चुका है, अभी तक नहीं देखी तो जाओ। 2012 के कॉकटेल फर्स्ट के हिट होने के बाद वी हैव द ड्रामा, रोमांस एंड फ्रेंडशिप, दे आर बैक विद ए फ्रेश ट्विस्ट। तो कॉकटेल टू जून 19 को रिलीज हो चुकी है एंड इट स्टार्स शाहिद कपूर, कृति शैनन एंड रश्मिका मंदाना, विद अ न्यू स्टोरी, न्यू इमोशंस एंड अ ब्रांड न्यू कॉकटेल ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड अ हार्ट ब्रेक। सो डोंट मिस कॉकटेल टू। तो इसी से एक गाना सुनते हैं कॉकटेल टू का, बिना एनीवेज बोले। हा।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Hey, तुमने कभी insurance लिया?
4: लिया।
3: कभी policy समझ भी आया?
4: नहीं आया।
3: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं।
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं।
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं।
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.

0: Hits is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Swag se karenge sabka swagat.
4: Bhai, we are in the last 30 minutes of our show. मैंने सिर्फ तीन एनीवेज बोले. हाहा, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मी यू गाइस. तालियां. और तो कोई है नहीं स्टूडियो में, तो मैं अपने लिए तालियां बजाती हूँ. आई विश मेरे पास वो वाले क्यूज होते हैं, वो जो अप्लॉज वाले नहीं आते जो सिटकॉम में बजाते हैं. एनीवेज गाइस, अरे देखो चौथा वाला भी निकल गया. ले फेल. दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा. अगर आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में फंस गए हैं या फिर यू हैड अ slip and fall incident, then attorney Omar Khwaja will come and fight your case and help you get the compensation that you deserve. Dealing with insurance companies and your bosses can be stressful. You need an attorney that will make sure that you are compensated and you don't get paid until you win. For a free consultation, call 469-300-5046. Okay, or visit attorneyomar.com. ठीक है, तो गाइज मैं नेक्स्ट गाना जो आपके लिए बजा रही हूँ, इट इज़ फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट टी वी शोज एक्चुअली, बट इट इज़ अ म्यूजिकल टी वी शो. सो रोल विथ मी ओवर हियर. इट्स नॉट किसी शो का टाइटल ट्रैक. अमेजॉन प्राइम पे ना एक शो आता है कॉल्ड बंदिश बैंडिट्स, विच आई एब्सोल्यूटली लव. इट्स बेसिकली ऑल अबाउट म्यूजिक. इट्स अबाउट अ पॉप सिंगर मीट्स अ हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर फ्रॉम सम घराना इन राजस्थान. और वो घराने वाले जैसे सिंगर्स होते हैं ना, दे वेरी ट्रेडिशन बाउंड, यू नो. तो वो अपने घराने में ही सिंगर्स को म्यूज़िक पास ऑन करते हैं, गुरु दक्षिणा लेते हैं. जब वैसे कोई फीस नहीं चार्ज करेंगे, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपसे वो गुरु दक्षिणा चार्ज करेंगे और या फिर कुछ मांगेंगे, यू नो दैट गुरु शिष्य वाली परंपरा, वैसी वाली. और अगर आप यू कांट गो ऑन स्टेज अनटिल द गुरु फील्स दैट यू हैव लाइक रीच्ड अ सर्टेन लेवल, तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है बेसिकली. एकदम मतलब पुराने ज़माने का गुरुकुल जैसे टीचिंग होती है, वो अभी भी है. ठीक है, ये चीज़ें जो है ना, ये घराने वाली सिंगिंग अभी भी है. मुझे पता है क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो हैं इन्हीं अलग अलग घरानों से आए हैं. पटियाला घराना एक है और ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे घराने हैं. तो एनीवेज जो, अरे यार पाँच वाला भी एनीवेज निकल गया. ले अब तो नो मोर एनीवेज, थैंक गॉड सिर्फ आधा घंटा ही बचा है. तो basically this pop singer hires this guy from this gharana. वो अपने घराने को आगे बढ़ा रहा है, वो classical singer है, लेकिन उसके गुरु जी ने उसको permission नहीं दी कि अभी बाहर public में जाके गाओ. और also तुम pop singer के साथ collaboration करोगे, तुम घराने का नाम खराब करोगे. we are purists. और ये pop singing के साथ modern collaboration, तो मतलब भ्रष्ट, एकदम घराना भ्रष्ट हो जाएगा हमारा. तो फिर वो कहता है कि देखो भाई पैसे बहुत मिल रहे हैं, अभी हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं है, हमारा घर छिन जाएगा, बैंक से लोन लिया हुआ है क्योंकि आप गुरु शिष्य परंपरा से चल रहे हैं, आप कॉन्सर्ट्स नहीं करते, आप शोज नहीं करते, तो हमारा घर नहीं चलेगा इससे. भाई वी हैव टू बी अ लिटिल बिट प्रैक्टिकल. यू आई अंडरस्टैंड द ट्रेडिशन बट वी हैव टू बी प्रैक्टिकल. एनीवेज तो वो अपने रूल्स नियम वगैरह सब तोड़ के वो जाता है, एंड देन समथिंग हैपेंस, ब्ला ब्ला. आगे स्टोरी आप बाकी का शो देख लेना. तब तक के लिए आप उसका ये गाना सुनिए, मुझे ये गाना बहुत पसंद है. इट्स कॉल्ड गरज गरज. दिस इज फ्रॉम द सीजन 2 ऑफ दैट शो.

0: the Dill of Dallas. Heart to heart.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At ShopCompareInsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
4: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's ShopCompareInsure.com, your 360 insurance solution.
5: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering, or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories, and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
6: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
7: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
8: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में? सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
9: Good evening, दोस्तों. रात के 10 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं 104.9 Fun Asia. मैं हूँ काव्या. वैसे अभी हम

आपके लिए एक सवाल से शुरू करेंगे। जैसे आप लोग वो है जो जो रात को जल्दी सो जाते हैं, यानी तो वो कुछ लोग रहते हैं जो 11 o'clock, जो 11 बज जाते हैं ना, तब ही लाइफ स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ना देर आर मैनी पीपल जो रात के सुकून का वो वक्त होता है ना, वो उन लोग उनके लिए ना ये रात का टाइम एक सुकून का वक्त होता है, यानी तो कुछ लोग के लिए ओवर थिंकिंग का होता रहता है। सो आज की रात हम बात करेंगे उन छोटी छोटी बातों की जो दिल को टच कर जाती है। तो वैसे ही हम यहाँ पर शुरू करेंगे अगले गाने पर।

Good evening, वेलकम बैक अगेन टू 104.9 फिनिशिया रेडियो. वैसे कितना सुकून है ना इस गाने में दोस्तों, क्योंकि ये ना कभी कभी हम नोटिस करते हैं कि ये जो रात में हम ना ये ज़्यादा हॉनेस्ट हो जाते हैं. मतलब कि दिन भर बिजी रहते हैं, फिर लेकिन रात को ये खुद से बात करने का ये वक्त मिल जाता है. जैसे कि शायद इसलिए रात के कन्वर्सेशंस ना थोड़े ज़्यादा ही यादें के साथ रहते हैं, और फिर ये ना थोड़ा ज़्यादा ही स्पेशल हो जाती है. वैसे ही ज़रा ये स्पेशल का गाना नेक्स्ट हम आपके लिए बजा रहे हैं.

वाह। सो हम ना नेक्स्ट प्ले करने वाले हैं एक गाना जो रिलेशनशिप के ऊपर है। वैसे मैं कुछ रिलेशनशिप के बारे में यू नो आई डोंट गिव मच एडवाइस ऑन इट, बट देर इज़ सम पॉइंट्स जो मैं ना नोटिस किया है इन मोस्ट ऑफ दी स्टोरीज जो हम सुनते हैं, देखते हैं, या यू नो हमारे जो दोस्तों के रहते हैं। सो इन दैट यू नो रिलेशनशिप की एक बात करनी है तो यू नो हर किसी के पास एक ही कहानी होती है एक्चुअली। सो ज़रूरी नहीं है कि हर कहानी को ना परफेक्ट ही रहना चाहिए, लेकिन हर कहानी की कुछ सीख कर ज़रूरी हो जाती है। और कुछ ना और एक सच बात करूँ तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में रह जाती है, यानी तो और कुछ सिर्फ यादें में रह जाती है, लेकिन दोनों ही हमें बदल देती है। ये है रिलेशनशिप की हमारा नेक्स्ट गाना।

हम कर बातें कर रहे थे, रात के जो ये थॉट्स आते रहते हैं, यानी तो हमारा ये सुकून का टाइम है, लाइक आई मेंशन्ड. सो मेरे को एक इंटरेस्टिंग सवाल एक आई मेरे माइंड में, वो है, अगर आपको एक चांस मिली जहाँ पर आप कौन सा तो एक पल को ना एक एक रोक सकते हो आपके लिए, तो फिर वो कौन सा पल आप चूज़ करने चाहेंगे? इज़ इट गोना बी लाइक अ स्कूल्स डेज जहाँ पर आपके टीनेज के टाइम में है, आपके बहुत सारे दोस्त लोग बन रहे हैं, खूल खूद मस्तियाँ चल रहे हैं. आई रिमेम्बर वन ऑफ माई स्कूल डेज ड्यूरिंग माई समर्स, जहाँ पर हम ना ये दो दो 1-2 रुपीज़ हमारे पॉकेट में रख के जाते थे, ये जो हमारी ये PT पीरियड रहते ना गेमिंग के टाइम पे, एंड देन वी यूज़ टू वेट फॉर वो आइस गोला जो लेकर आते ना वो आदमी, तो वो ठेले के लिए हम वेट कर रहे थे. एज सुन एज दी PT पीरियड इज अबाउट टू एंड, हम सब लोग ना हमारे जेब से वो 2 रुपये देते हैं, एंड देन वी गेट नो डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइस गोला. वो मेरे को बहुत याद आती है यहाँ पर, बिकॉज वी डोंट गेट दैट हियर. सो या आई वुड हैव दैट स्कूल डेज बैक नाउ. और कुछ हो सकता है, जैसे कि कॉलेज लाइफ, बहुत लोगों का बहुत कुछ यादें जुड़े रहते हैं कॉलेज से, और यानी तो एक फैमिली फंक्शन जहाँ पर सब साथ रहते हैं, वो जो एक अच्छी फीलिंग है यार, हम हमारे लोग हैं आजू बाजू में, लाइक दैट काइंड ऑफ फीलिंग. या फिर जो मुझे लगता है कि ना ये यादें की सबसे खूबसूरत बात जो है कि वो ना कभी पुरानी होती ही नहीं है.

वैसे हम बात कर रहे थे जो यादें जो खूबसूरत रहते हैं, जो यादों में रह जाते हैं, जो पुरानी नहीं होती। वैसे एक और एक बात याद आती है कि कभी कभी लाइफ में ना सब ठीक हो जाते हैं, ठीक हो गए करके हम सोचते रहते हैं, और फिर कभी एक लगता है कि कुछ तो मिसिंग है यार। लेकिन और फिर हम लग जाते हैं नए कुछ गोल्स में, या नहीं तो कहीं कुछ सपने में, या नहीं कुछ नया जर्नी में हम ढूंढने लग जाते हैं। तो शायद ये जो हम नया कुछ गोल, ये नया नया जो हम सोचते रहते हैं, शायद यही एक चीज़ है जो एक नाम बोलते हैं ग्रोथ की। इसी को शायद ग्रोथ बोलते होंगे। आपका अगला सपना क्या हो सकता है? कि कोई नेक्स्ट नया जॉब कौन सा हो सकता है, या नहीं तो नेक्स्ट ट्रिप कहाँ डाले, या नहीं तो अपने आप को सुधरने का समथिंग में भी।

0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
0: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

चलिए आज की रात ना थोड़ा सा और मजेदार करते हैं। वैसे मैंने ना एक कहानी सुनी थी जो एक्चुअली एक हॉरर सस्पेंस वाली है, तो ये मैं आपको एक अलग ही हिस्सा सुनाने वाली हूँ। और लेकिन ट्रस्ट मी, इस स्टोरी का एंड ना आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो एक छोटी सी हिस्सा बताऊंगी पहले कि इमेजिन कीजिए कि एक लड़की थी, अनन्या उसका नाम था, एंड शी वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली से लेके मुंबई जाने वाली थी। तो फिर ना उसने एक ओवरनाइट ट्रेन पकड़ी थी, लेकिन देखिए जो रात के 10 बज गए थे एंड देन यू नो ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ रही थी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये जो सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे अजीब सफ़र होने वाली थी। और उसके अगले मैं बताऊंगी नेक्स्ट गाने के बाद।

वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे फिनिश यू 104.9। तो हम एक इंटरेस्टिंग कहानी पे थे जहाँ पर हम बताए थे पिछले गाने से पहले कि यू नो ओके ओके डरिएगा नहीं, ये हॉरर का स्टोरी है, लेकिन बीच बीच में हम आपके अच्छे अच्छे गाने डालने वाले हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली अ सस्पेंस स्टोरी। सो हम बात कर रहे थे एक लड़की के नाम अनन्या जो ट्रैवल कर रही थी दिल्ली से लेके मुंबई तक रात के 10 बजे। तो फिर जब वो अपनी शुरू करी ट्रैवलिंग शुरू करी एंड देन यू नो ट्रेन की अपनी स्पीड पकड़ लाइक चुकी थी, और फिर जो अनन्या है जो अपनी सीट पर बैठकर आसपास देखा कि नो कंपार्टमेंट ऑलमोस्ट खाली था। फिर उसके सामने एक बुजुर्ग का आदमी था जो बैठा था, वो एक वाइट कुर्ता और फिर एक ब्लैक बैग करके एक बेटा था वहाँ पर, एक बहुत ही शांत चेहरा के साथ था वो आदमी, यू नो सो यू कैन प्रिडिक्ट हाउ इज़ दैट पर्सन, इज़ ही गोना बॉदर यू और नो। फिर होता है कि ये जो ट्रेन ऑलरेडी यू नो कुछ ही देर से पहले वो शुरू हो चुका है, एंड देन ये आदमी आकर, ये बुजुर्ग आदमी आकर अनन्या से पूछता है कि बेटा तुम्हारा सीट का नंबर 27 है क्या? तो अनन्या ने कहा जी हाँ। तो उन्होंने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा कि नो पिछले साल भी ना इसी डेट पर इस सीट पर एक लड़की बैठी थी। और फिर अनन्या ने बोला पूछा कि ओ अच्छा, कैजुअली बिकॉज यू नो नॉर्मली वो आदमी कुछ बोल रहा है एंड शी इज़ लिसनिंग। देन दूसरे आदमी ने कहा जवाब दिया कि वह ना कभी डेस्टिनेशन तक कभी पहुंची ही नहीं वो लड़की, एंड वो सेम डेट था और वो सेम सीट था। फिर वो एकदम चुप हो गई।

वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे 104.9 फिनिशर रेडियो। तो हम एक कहानी में रुके थे जहाँ पर अनन्या अपनी ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और फिर एक बुजुर्ग लोग आदमी था एक जो आगे वाली सीट में बैठी थी, और फिर वो बोला था कि जो सीट में वो अनन्या लड़की बैठी हुई है वो उस सीट में पिछले साल एक लड़की सेम लड़की थी जो सेम टाइम पर ट्रैवल कर रही थी एंड सेम डेट में, एंड देन शी वॉज नॉट रीचिंग हर डेस्टिनेशन। दैट वॉज दी स्टोरी वॉज गोइंग ऑन। तो फिर वो हैरान हो जाती है अनन्या, एंड देन शी इज़ लाइक थोड़ा अजीब सा फील होने लगती है। फिर उसने सोचा शायद ये ना ये अंकल मजाक कर रहे होंगे शायद करके इस उम्र में भी। फिर रात की 10:45 हो चुका हो जा ओ या कॉन्सटेंटली इट्स एक्चुअली 10:46। तो फिर ट्रेन की नोट ट्रेन एक छोटी सी स्टेशन में रुक जाती है, एंड देन जब ट्रेन दोबारा चलने लगती है अनन्या देखती है कि ना सामने वाले सीट में वो खाली था, मतलब वो बुजुर्ग आदमी गायब हो गया था। फिर लेकिन लेकिन वो ना सीट के ऊपर वही उसका एक ब्लैक बैग था ना वो वहीं पर रह गया था। तो फिर उसने एक ट्रेन अटेंडर जो TC साहब रहते ना तो उनको बुलाया गया था और फिर बताया कि यू नो ये यहाँ पर एक आदमी था उसका ये ब्लैक बैग ना यहाँ पर रह गया है करके। एंड देन वो अपना बैग देखता है एंड देन ही टेल्स दैट कि मैडम ये बैग ना पिछले साल ना किसी प्रॉपर्टी मतलब ये किसी का लॉस्ट प्रॉपर्टी है, ये रजिस्टर हुआ गया था एंड देन मैनी आई मीन लाइक ये बार बार हम ढूंढ रहे थे फ्रॉम मैनी टाइम्स एंड दिस इज़ अ रजिस्टर्ड लॉस्ट प्रॉपर्टी एक्चुअली करके। एंड देन ना अनन्या ना हैरान हो जाती है ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो आदमी तो अभी अभी यहाँ मेरे सामने बैठा था, एंड देन ही वॉज जस्ट टेलिंग आई मीन कुछ बोल रहा था अभी पिछले साल आई मीन पिछले साल के बारे में बोल रहा था एंड देन पिछले साल का बैग यहाँ पर कैसे आ गया। सो दिस वॉज अ इम्पॉसिबल थिंग। ओके इसका नेक्स्ट कंटिन्यूशन हम बताएंगे आपको नेक्स्ट गाने के बाद। तो देर वॉज वन रिक्वेस्टेड सॉन्ग फ्रॉम मूवी पठान, तो ये है आपके लिए।

तो अब हमारी इस कहानी की ना सस्पेंस और गहरा हो जा रहा है। तो अनन्या ये सब सुनने के बाद उसका ना ये क्यूरियोसिटी ना बहुत बढ़ जाती है, और फिर वो उस क्यूरियोसिटी में ना वो बैग खोल देती है, वो काला वाला बैग। एंड देन वो ब्लैक के अंदर, वो बैग के अंदर देखती है ना एक डायरी थी। डायरी के फर्स्ट पेज पर लिखा था कि इफ़ यू आर रीडिंग दिस बुक यू आर सिटिंग ऑन सीट 27। तो अनन्या का हाथ कांपने लगा ये देखते हुए। फिर नेक्स्ट पेज में लिखा था कि 11:15 PM पर ट्रेन टनल में एंटर करेगी, तब ना ट्रेन के बाहर खिड़की के बाहर बिल्कुल मत देखना। ये सुन के उसका तो कांप जाती है। अब हम बताएंगे कहानी नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट सॉन्ग।

तो हम बात कर रहे थे डायरी के बारे में, जो जिसमें लिखा था कि 11:15 को एक ट्रेन हम जो तुम ट्रैवल कर रहे हो वो टनल में एंटर करने वाली है, एंड देन खिड़की के बाहर मत देखना। सो 11:15 हो जाता है एंड देन ट्रेन टनल के पास ऑलमोस्ट पहुंच रही होती है, एंड देन अनन्या एक्चुअली डायरी को इग्नोर कर देती है कि कोई ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है करके। बट ये जो चीज़ें उसको हो रहा है कि वो गुजर आदमी यहाँ पर था विथ हिज ब्लैक बैग एंड देन अचानक से गायब, और फिर टीसी साहब भी बोल रहे थे कि दैट दिस वाज अ लॉस्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम पिछले साल एंड देन लेकिन ये इंसान का फितरत यही है कि जिस चीज़ को मना करोगे ना उस चीज़ को ही बिल्कुल करेंगे आप लोग। तो फिर इन द सेम वे शी एक्चुअली डज द थिंग दैट इज नॉट सपोज, आई मीन यू नॉट सपोज टू डू दैट। तो फिर ट्रेन के बाहर मत देखना करके लिखा था, बट शी विल डू इज लाइक जैसे ही ट्रेन टनल में एंटर हुआ है एंड देन कंपार्टमेंट एकदम अंधेरा हो जाता है एंड देन अनन्या ने खिड़की के बाहर देख ही लिया। जो उसने देखा था उसे ना उसकी सांस रुक चुकी थी, एंड देन जो ट्रेन के बाहर था वो एक लड़की थी जो ट्रेन की स्पीड के साथ भाग रही थी, एंड देन वो शी वॉज जस्ट स्टेयरिंग अनन्या एंड देन शी वॉज टॉकिंग समथिंग दैट अनन्या वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। पर शी वॉज रनिंग एंड लाइक ट्रेन की स्पीड में, और वो अनन्या को ही देख रही थी।

लिटरली ट्रैवलिंग अलोन इन द ट्रेन उस अंधेरे में, एंड देन ये अजीब और जैसे होते रहते हैं, जो जो तुम कहानी एक्चुअली पढ़ रहे हो और वो सच हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहानी बोल रही हूँ और ये सच हो रहा है किसी के साथ, है ना, हाउ कितना डर लगता है ना.

फिर से जैसे यू नो जैसे टनल ख़त्म हो जाती है, ट्रेन ट्रैवल आई मीन ट्रेन जब जैसे टनल से गुजर जाती है तो सब नॉर्मल लगता है. लेकिन जब ये जो कंपार्टमेंट में एक नई पैसेंजर यू नो बैठ जाती है, एंड वो बैठती है सीट नंबर 28 पर, और फिर अनन्या ने पूछा कि आप कब आए? तो लड़की मुस्कुरा के बोलती है कि मैं तो पिछले साल से इसी ट्रेन में हर रोज़ ट्रैवल कर रही हूँ. अनन्या का दिल ना एकदम से रुक गया, जिस लाइक क्योंकि ना ये डायरी में जिस लड़की का तशरीफ फ़ोटो था, ये तो बिल्कुल वही लड़की है. यार मैं अपने आप को भी इस कहानी में इमेजिन करूँ.

अब आता है कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहाँ पर यू नो सच सामने आ जाता है। नो पिछले साल C27 पर बेटी हुई ये लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए ये लड़की हर साल इसी डेट पर इस ट्रेन में नज़र आती रहती है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने आती है, वो लोगों को वार्न करने आती है। किस चीज़ का? जहाँ पर यह इसने अपना जान खो बैठी थी, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि आज रात ट्रेन के इस एज के ट्रैक में ना डैमेज था, जिसकी वजह से इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगी थी एंड उसका मौत हो गया था। तो से एंड द ट्विस्ट इज कि ये चीज़ जो हुआ था पिछले साल, वो चीज़ रिपीट होती आ रही है इन द सेम डेट। सो ये लड़की भी सेम एक्सपीरियंस करने वाली थी, तो इसीलिए इसने पहले ही बता दिया गया था कि यू नो दिस इज़ गोना हैपन, एंड देन इमरजेंसी ब्रेक लगी गई थी, एंड देन 2 मिनट के बाद यू नो ट्रेन रुक गई थी, एंड देन देखा कि यू नो ये तो एक्सीडेंट से बच गया, एंड देन जब सब सेफ हो गए उतर के देख रहे थे, फिर अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा कि ये C28 खाली है, एंड देन बस डायरी का लास्ट पेज खुला हुआ था कि उस पर लिखा हुआ था कि तुम ये तो मेरे कहानी है जो हो चुका है, और मैंने आपको आकर बता दिया, और हाँ आप सबका यू नो जान बच गया है, एंड देन नेक्स्ट ईयर भी इट्स गोना हैपन द सेम, एंड देन। और दोस्तों ये था एक्चुअली, अब ये जो भी हॉरर का सीन हुआ है अभी इसके बारे में यू विल कीप एन एनालाइजिंग कि यू नो अरे यार ये कैसे हुआ, ये हुआ तो ऐसा कैसे हो सकता है। नो डोंट थिंक अबाउट इट, अगर ये हॉरर का कहानी है तो हॉरर के वे में सोचिए ना, तभी तो थ्रिल एंड सस्पेंस रहेगा। देयर वाज अनदर मूवी माधवन का, जहाँ पर एक अपार्टमेंट नंबर रहता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली विच वन, मोस्ट ऑफ देम हैव सीन दैट, आई थिंक इट वाज अपार्टमेंट 13B, जहाँ पर टेलीविजन में कहानी चलती है जो एग्जैक्टली उस घर में चल रहा होता है। हर एक नुकसान होते रहती, किसी का कुछ जॉब जा रहा है या कुछ हो रहा है, लाइफ थ्रेटन हो रहा है, एंड द सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन द टेलीविजन, जहाँ पर पूरा फैमिली सीरियल देख रहे हैं, एंड देन ये कोई भी रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि इट्स द सेम थिंग दैट्स हैपनिंग इन द टीवी। माधवन इज द एक्चुअल मेन कैरेक्टर, ही इज़ रियलाइजिंग, एंड देन ही इज़ लाइक ही कैन नो दैट व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट, एंड देन वो कितना भी ट्राई करे रोकने के लिए कि ये यू नो ये डेंजर से बचने के लिए, वो होता ही नहीं है वो। सो दिस वाज आल्सो द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी।

वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे फिनिशिंग 104.9 मिडनाइट मसाला स्टोरीज। वैसे मेरे को एक कॉल आया था फ्रॉम सुरैया मैडम जी, एंड देन दिस वाज एक्चुअली माय फर्स्ट नरेशन स्टोरी ऑफ हॉरर, एंड देन शी एक्चुअली लव्ड इट। शी इज़ एक्चुअली ट्रैवलिंग लाइक 2 आवर्स टू अवर होम फ्रॉम प्लेनो, एंड देन उनके बेटे भी मेरे को कॉल किए थे फॉर सम पठान सॉन्ग, एंड देन आई प्लेड फॉर देम, एंड देन आई वुड एक्चुअली लव टू थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग मी, एंड देन आपको बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आपके लिए मैं और एक पठान के गाने भी डालने चाहती हूँ।

0: same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
0: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: जिंदगी की एक बरसाती में रहने वाला। आज यहां आया है मुंबई बेचने। बदले में कुछ तो चाहता होगा। क्या? मांडवा।
1: वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे 104.9 फिनिशियर रेडियो मैट्री। जैसे हम आपके लिए एक हॉरर कहानी बताए थे ऑफ द ट्रेन, देयर इज एन अदर वन दैट आई वुड लव टू टॉक अबाउट। ये है एक व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर। सो एक लड़की रहती है जो उसको व्हाट्सएप मैसेज में से अपने खुद के नंबर से एक मैसेज आता है ये कहते हुए कि ना आज तुम बाहर मत जाओ काम के लिए करके। सो शी थिंक्स दैट यार ये कोई तो प्रैंक करके रखा है शायद, कि समवन हैज प्रैंक्ड मी। एंड देन शी गो नेक्स्ट डे वो एक्चुअली चली जाती है ऑफिस, आई मीन शी गोज टू ऑफिस एंड द नेक्स्ट डे शी गेट अ मैसेज दैट यू इग्नोर्ड माई फर्स्ट वार्निंग करके एक अगेन शी गेट द व्हाट्सएप मैसेज। फिर इसके बाद जो होगा आई टेल यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। वैसे आई हैव गॉट अ सॉन्ग रिक्वेस्ट फ्रॉम कार्तिक, चलिए उनके लिए एक गाना डाल देते हैं हमें आतर से।

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे 104.9 फिनिश रेडियो। वैसे मलिक जी मेरे को कॉल किए थे ये कहने के लिए कि आपके हॉरर स्टोरीज सीरियसली इट्स वेरी गुड, और मेरे को बहुत अच्छा लगा बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग ऑल नाइट टुडे एंड पूछ रहे थे कि यू नो नेक्स्ट स्टोरीज कब आने वाला है आप और कब कहानी बनाने वाले हैं। एंड देन ही वाज लाइक क्या ये स्टोरी सच है? देन आई वाज लाइक अगर आप सच मानेंगे तो वो सच ही है, यू नो हॉरर तो है डरने के लिए। एंड देन ही वाज लाइक आपके रेडियो स्टेशन में तो वो लड़की नहीं है, आपको डरने लगता है क्या? आई वाज लाइक या एक्चुअली बिकॉज यू नो एट दिस टाइम सिर्फ आरजेज रहते हैं, एंड देन इफ आई हैव टू गो आउट फ्रॉम द स्टेशन एंड देन पूरा अंधेरा है बाहर, तो फिर दरवाज़ा बंद करते से मैं अगर सडन से ये दरवाज़ा का टिक टिक का साउंड आ जाने ना डर लग जाता है, भाई स्टेशन के अंदर कौन रह गया अभी? और मे भी जब मैं अंदर अभी बात कर रही हूँ को हु इज़ लुकिंग एट मी एंड देन मे इंतज़ार कर रहा हो कोई, एंड देन ही वॉज लाइक देख लीजिए कहीं वो ट्रेन वाली लड़की तो नहीं आई होगी आपके स्टेशन में। ही वॉज टेलिंग दैट okay, thank you so much Malik ji, and then many people who's responding to my horror stories, I would love these comments from you all, or the feedback. Aage jaake bhi I'll get more horror stories aapke liye. I think this is the peak interest horror stories ke upar. And then next song hum play karne wale hai from request hai from the name Ishwar ji, so this is the song for them.

0: वैसे ये कॉकटेल की मूवी जो टू है, इट्स एक्चुअली नॉस्टैल्जिक सॉन्ग जो हम बंदूक के सुनते रहते. सो हु हैव नॉट सीन दिस मूवी येट, प्लीज टू वॉच. मैं तो कल देखकर आई हुई मूवी एंड देन आज अभी सडनली ये गाना देखने में ना इतना मजा आ रहा है, बिकॉज एक्चुअली आई एम अ बिग फैन ऑफ रशी. सो रशी का परफॉर्मेंस लिया आई वेंट एक्चुअली, बट हर एक इंसान, आई मीन हर एक एक्टर इन दिस वॉज लाइक डूइंग अ वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस, एंड एक्चुअली स्टोरी वॉज ऑल्सो गुड. I would not give a spoiler. So I was in a story of a horror story on a WhatsApp message, but has 12 bajne ko hai, and then it's almost like end up. If main beech mein to nahi rok sakti kahani ko, because suspense agar beech mein ruk gaya to fir suspense hi nahi rahega na. So before I continue the story, I would stop the story here, because kal hum batayenge kahani ke continuation. Hum I would see who is going to listen to me tomorrow 10 to 12. I will be continuing the same horror, interesting suspense story. Tab tak ke liye ye raha agla smash song.
1: Namaste behno aur bhaiyo, bade hi kam shabdon mein aapko sunana chahta hu us saal ka lokpriya geet ye. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

वैसे कार्तिक जी ने पहले ये हर किसी को नहीं मिलता वाला गाना रिक्वेस्ट किए थे एंड देन आई डिड प्ले देम अ ओल्ड वर्शन. वैसे एक नया गाना भी, आई मीन इन अ लिटिल फोकी एक नया वाला गाना है, लाइक इन दिस जनरेशन सॉन्ग आई मीन अक्षय कुमार का. सो दिस इज हर किसी को नहीं मिलता जहाँ प्यार, अनदर सॉन्ग फॉर देम.

वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे 104.9 फिनिश योर रेडियो। अभी मेरा जाने का वक्त हो रहा है एंड देन मेरा एक अच्छा फेवरेट गाना आपके लिए डालने चाहती हूँ, विच इज़ एक्चुअली ओल्ड काइंड, बट स्टिल जो ड्राइव करे उनको मज़ा आएगा ये गाना सुनकर।

0: जाने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर देना था जो मैं हर समय करती रहती हूँ, एंड देन मैं उस सब द पीपल जस्ट इग्नोर इट। हर ये तो हर रहता ही है, क्योंकि सब हर किसी को मालूम है कि अपना हाल आई मीन अपना हेल्थ का टेक केयर करना है, अपनों का टेक केयर करना है, बट कैसे करना है ये भी जानते होंगे, बट स्टिल दे डोंट पुट एफर्ट्स फॉर देम सेल्फ। जैसे कि अभी हॉट समर है, सो प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड। हमारे ये कोक शोक जो जो रहते हैं ना, प्लीज़ अवॉइड दैट, क्योंकि हाल और ख़राब करने वाला है आपके लिए। तो हाइड्रेटेड के लिए यू हैव मेनी ऑप्शंस, लाइक लौकी है, ककड़ी है, लस्सी है, नारियल के पानी है, देयर मेनी मोर दैट विल कीप यू हाइड्रेटेड एंड हेल्दी एंड यू कैन लिव लॉन्गर। सो याद करते हुए आपके अपनों को भी याद करते रहिए एंड स्टे हाइड्रेटेड एंड ड्राइव सेफ। शुभ रात्रि।
1: किनारे भी मिले इस नजर के सहारे।
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
5: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
2: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी जर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना
0: है। अरे क्यों?
1: नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: बेटी देखिए आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ।
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता।
0: नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: Very good. और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: बेटा, 95% आए?
3: हाँ मम्मी।
2: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
2: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

0: जमीना होता है।
1: The Heartbeat of Dallas, Fun Issue Radio, 104.9 FM.

0: The Magic 24/7, only on 104.9 FM.
1: So let me present to you the Pandavas.

0: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
1: This is Ali Zafar, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
4: Hi, this is Janvi Kapoor, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट।
2: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
3: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
4: हाय, दिस इज कोंकणा सेन शर्मा एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनेशन।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: तो रुको जरा, सबर करो,
3: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया।

0: काफी हो।
1: मुझसे तो लड़ ले बेटा, दुनिया से कैसे लड़ोगे?
2: आप ही दुनिया हो
0: मेरे लिए, तुम काफी हो।
3: Playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio 104.9 FM.

the magic 24/7 only on 104.9 FM.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
4: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
5: Hi, this is Saleem Merchant from Saleem Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना ए ए I'm one in a million पर ज्यादा भी उछलेना ना किसी से कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना।

0: काम चाहे कुछ भी ना करे बेटे उसमें भी स्वैग है। अरे घूट में स्वैग है, अरे घूट में स्वैग है।
1: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप।
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
5: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
6: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
7: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
8: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: Heere moti, main na chahun.
10: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
11: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
17: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
16: नहीं।
17: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
16: नहीं।
17: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
16: वो भी नहीं।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
4: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
5: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
2: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
4: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: प्लानिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग और प्राइवेट इवेंट? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
2: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply. We got

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, walk in anytime, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
2: Ritesh, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
3: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
2: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
3: वेट, व्हाट?
1: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
1: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
5: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
6: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
7: इट्स लॉसन।
6: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
7: इट्स लॉसन।
6: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
8: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458, द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: भूख लगी
11: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
12: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. Honestly, ये सिर्फ खाना नहीं है, it's what your mood is actually craving.
1: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
13: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

0: जोया जोया, अरे वही तो बोला ना, जोया जोया।
1: हाँ तुमने एकदम करेक्ट बोला, जोया जोया।

0: अली हैदर लेडीज एंड जेंटलमैन, और ढोलन यारा, अगर ये गाना आपने देखा नहीं है तो जरूर जाके देखिए, बिकॉज हमारे जो सीईओ हैं वैशाली ठक्कर ऑफ फन एशिया नेटवर्क, शी इज फीचर्ड इन दिस सॉन्ग अलॉन्ग साइड अली हैदर, एंड हाउ कूल इज दैट. तो चलिए इसी बात पे एक और अली हैदर का गाना आपके नाम करना चाहती हूँ. दिस इज गपशप गली विथ मी टू ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. आज की तारीख 25 है, 25th of June लेडीज एंड जेंटलमैन, और घड़ी मिला लीजिए हमारे स्टूडियो के साथ 10 minutes past 10.
1: गोरे रंग का जमाना.
0: You are tuned into Fun Asia Radio 104.9 FM. The song that I really wanted to play for all of you was Chahat. Let's try and get that song for all of you. I'm trying really hard here. Chahat, ye jadan na narira narira, bahut hi mast sa gana tha. And I have to tell you all this, my cousin who used to be a big fan of Ali Haider, this is the late 90s that I'm talking about, and she almost thought ki unhone Ali Haider ko Bhopal mein dekha tha. This is Gapshup Gali with me.

यू आर ट्यून्ड टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम और यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि भाई वेदर अपडेट, ट्रैफिक अपडेट, ऑल ऑफ दैट कमिंग अप फॉर यू एंड बिटवीन 11 टू 12 वी हैव द सेगमेंट दैट आर यू नो लोडेड विद सम रिलेटेबल टॉपिक्स. कभी लाइट, कभी हम कुछ सीरियस बातें भी कर लेते हैं. और आप लोगों से ये इल्तिजा करना चाहती हूँ कि इफ यू हैव समथिंग दैट यू वॉन्ट मी टू टॉक अबाउट या कुछ हम डिस्कस करना चाहते हैं ऑन एयर, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ टॉपिक शामिल हो, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू सेंड अक्रॉस योर टॉपिक्स. तो आज ऐसा ही एक टॉपिक हम पकड़ेंगे. एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया कल, लेकिन शी वॉन्टेड मी टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक. तो आई सेड वाई नॉट, दिस इज समथिंग दैट इज डेफिनेटली quite valid for the month that we are in. It's World Environment Month and environment se related hi kuch baatcheet hamari between 11 to 11:30 and then another relatable topic, halka pulka sa topic hum aapke liye lekar aayenge. And then of course the last segment is a dedicated FIFA segment, ladies and gentlemen. So there is plenty jo mujhe aapse baat karni hai, to bane rahe yahi pe Financial Radio 104.9 FM.

0: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
1: Calculating route, rerouting.
0: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
1: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
0: क्यों?
1: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
0: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
1: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
3: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
4: कॉल द एसबीए लोन एक्सपर्ट्स।
3: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
4: कॉल द एसबीए लोन एक्सपर्ट्स।
3: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
4: कॉल द एसबीए लोन एक्सपर्ट्स।
3: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द एसबीए लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
5: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
7: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम। ओके, नेम ऑफ द लॉयर?
8: उमर ख्वाजा।
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
10: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
11: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
10: कैसे?
11: पेज 3 ईटरी?
10: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
11: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
10: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
12: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
13: छोटा सा मेरो मदन गोपाल।
14: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
15: Put you on the right track.
16: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Funisia Radio.

दिल होते सीने में दो तो दूसरा दिल भी देता मैं तोड़ने को. दिस इज द लिरिक्स जो जावेद अख्तर ने लिखा. एक ऐसे ऐसे लेजेंड है जो डेकेड से रेलिवेंट चले आ रहे हैं. दैट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग व्हेन यू इवॉल्व एज अ ह्यूमन बीइंग कि आप जिस डेकेड को बिलोंग करते हो उस डेकेड को आप अपना लेते हो. यू नो यू यू कीप इवॉल्विंग. वी आर आफ्टर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस एंड दैट इज वॉट फनीशर रेडियो इज ऑल्सो. और इसीलिए हम टाइम टू टाइम आपसे पूछते रहते हैं कि यार किसी भी तरह का आप यू नो फीडबैक देना चाहते हैं. यू आर मोर देन वेलकम टू. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. एंड टॉपिक्स ऑल्सो दैट वी टॉक ऑल ऑफ अस ब्रिंग सम टॉपिक्स दैट आर क्लोज टू आर हार्ट या जो हमें रेलिवेंट लगते हैं हमारे लिए आपके लिए हम वैसे टॉपिक्स लेकर आते हैं. तो यहां पर मैं मेंशन करना चाहती हूँ माई इंस्टा हैंडल. इट इज आर जे मीठू गांगुली MITHUGANGULY. गांगुली में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको भाई. मतलब सौरभ गांगुली ने ऐसा नाम कमाया है कि मैं आज तक मैं ढूंढ रही हूँ कि कुछ तो एक रिश्ता मैं उनके साथ जोड़ सकूँ. सिर्फ उन्हीं का नाम क्यों लूँ. यहाँ पे हम किशोर कुमार गांगुली की भी बात कर सकते हैं. उनके साथ भी आज तक तो कोई रिश्ता निकाल नहीं पाई हूँ लेकिन कुछ ना कुछ रिश्ता निकल ही आएगा ढूंढने जाओ तो. ठीक है ना. तो इसी बात पर मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहती हूँ आरजे मीठू गांगुली. That's my Insta handle. और आप मुझे DM कर सकते हैं about the kind of topics that you would be interested to, you know, be discussed, talked about, have a conversation, take your inputs, all of that. जो भी conversation आपको लगता है कि फनीशर रेडियो पे होना चाहिए मेरे शो पे गपशप गली पे तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े. और कई लोग जुड़े टू वॉच दिस फिल्म विच इज कॉकटेल टू. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लेइंग एट योर नियरेस्ट थिएटर्स. Distributed by Fanisha Films.

और अगर आपको वो US परमानेंट रेसिडेंसी की जो है चाह है, एंड इफ़ यू आर ऑन H-1B, F-1, L-1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेशन वीज़ा, तो आपके लिए लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता का रास्ता क्लियर होना चाहिए. और इसीलिए हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि भाई इनकी जो एक्सपीरियंस टीम है, दे स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ. आप चाहे EB-5 इन्वेस्टर वीज़ाज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या फिर फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप, दे हैव स्पेशलाइजेशन इन ऑल द फील्ड्स. यू मस्ट गेट इन टच विद देम अगर इनके बारे में आपको कुछ डिटेल्स चाहिए हो. आप इन्हें ईमेल करें info@seemamehtalawfirm.com टू फाइंड आउट मोर. एंड इट इज़ ऑलवेज ए गुड आइडिया टू राइट टू देम, टॉक टू देम एंड फिगर आउट what is possible in your case. This is Gapshap Gali.

0: अगर आपको भी मोहब्बत है ना अपने गानों से, तो यू मस्ट गिव अस अ कॉल एंड लेट्स लिसन टू द चॉइस ऑफ सॉन्ग्स यू वांट टू लिसन टू. पता है आज थोड़ी देर पहले ही जब मैं यहाँ पे स्टूडियो ड्राइव करके आ रही थी ना, तो साइकिल पे एक जेंटलमैन दिखे और उनके साइकिल के सामने ना एक येलो कलर का बास्केट लगा हुआ था एंड इट फेल्ट सो समरी, सो ब्यूटिफुल. बस फूलों की कमी थी उस बास्केट में, बाकी इट लुक्ड सो फिल्मी रियली एंड इट इज ऑल अबाउट फिल्मी एंड बियॉन्ड दैट यू लिसन.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
6: इस शहर को हुआ क्या, कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
7: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
8: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स मे वेरी.
9: आई एम सो स्ट्रेस्ड. क्रेडिट कार्ड बिल्स, अनसिक्योर्ड डेट्स, व्हाट आर वी गोइंग टू डू?
10: कुछ भी नहीं, उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस.
9: क्या मतलब?
10: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स.
9: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
11: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
12: सच में? सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
14: डालस की धड़कन 104.9 FM, Phoenicia Radio.
0: You are tuned into Gupchup Gali with me too. ऐसे तो मैं इस सेगमेंट में ना आपके लिए कुछ ऐसे फिल्मों के गाने लेकर आती हूँ जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन द पास्ट, लेकिन आज कुछ अलग करेंगी क्योंकि कुछ प्रोमिनेंट फिल्मों के नाम मुझे मिले नहीं ऐसे कि जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ, लेकिन शेयर कर सकती हूँ कि आज के दिन जो कुछ हमारे जो आर्टिस्ट थे जो हमारे साथ अब नहीं है, उनमें से दो ऐसे हसरत हैं जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ. एंड देन द बर्थडे सेलिब्रेशन विल कंटिन्यू continue with the living artist, and it is Madan Mohan Sahab. और उनके 102nd birth anniversary पे मैं ये गाना आप लोगों के लिए ज़रूर play करना चाहती हूँ. I mean, think about it, you know, the maestro Madan Mohan, जिनको आज भी आज की generation भी discover कर रही है, and they are loving the music that he has created, the man whose timeless melodies actually continues to echo across generations.

मदन मोहन साहब की आज 102nd बर्थ एनिवर्सरी है. प्लेइंग दिस सॉन्ग फॉर यू वाज अ प्लेजर फॉर मी एज वेल. क्या अमेजिंग कॉम्पोजिशन है ये. और मदन मोहन साहब हुज रियल वर्ल्ड यू नो जर्नी इज फुल ऑफ फैसिनेटिंग पैराडॉक्सेस वेरीफाइड बाय मेनी मेनी पीपल. और ये अपने आप में कमाल की बात है कि हम आज के दिन में भी उनका म्यूजिक इस तरह से इंजॉय करते हैं. एंड विच टेल्स अस हिज म्यूजिक इज फॉर जेनरेशंस. बिफोर ही ever touched a harmonium in Bollywood, Madan Mohan Sahab jo hai na, fiercely a disciplined second lieutenant the British Indian Army during World War II, jo ki boxing aur weightlifting mein behad hi kamal ke the. He was big on that. Aur unki isiliye physical toughness jo hai dikhti hai, ek disciplined soldier wali life unki dikhi hai. Aur usme ek incredible टेंडर म्यूजिकल सोल होना अपने आप में बहुत ही कमाल की बात. मतलब थिंक अबाउट इट, उनका एक्सटर्नल स्टील एक कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट था उनके इमोशनल डेलिकेट और एक हॉन्टिंग मेलोडीज जो उन्होंने क्रिएट की हैं. दो उनके जो फादर हैं, ही वॉज ए मैसिव मूवी टाइकून हु कट ऑफ ऑल फाइनेंशियल टाइज विथ हिम व्हेन ही लेफ्ट द मिलिट्री फॉर म्यूजिक. बट ही फाउंड हिज ट्रू रिदमिक फूटिंग at All India Radio in Lucknow alongside classical legends. और इसी रास्ते चलते हुए eventually उनकी मुलाकात हुई लता जी के साथ. और वो unshakable artistic और personal sibling bond जो उनके साथ बना लता जी के साथ. और इसका नतीजा भी ये था कि मेरा साया फिल्म जो एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म रही थी और उसका सुपरहिट म्यूजिक दिया था मदन मोहन साहब ने. द प्रोड्यूसर्स हैड सम प्रॉब्लम विथ यू नो मदन मोहन साहब. और लता जी ने बिल्कुल फुट डाउन किया था कि अगर वो म्यूजिक देंगे तो ही वो गाएंगी. एंड दैट्स हाउ शी वन द बैटल फॉर मदन मोहन साहब. उस फिल्म के बहुत सारे गाने इंक्लूडिंग द टाइटल ट्रैक लता जी ने गाए. प्रिसाइसली एक्चुअली 3 सॉन्ग्स दैट शी हैड संग इंक्लूडिंग दिस रिप्रीज वर्जन ऑफ मेरा साया द टाइटल ट्रैक. लेकिन उसका एक गाना जो आशा जी की आवाज़ में, वो प्ले करना चाहती हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि आज की जनरेशन ने इसी गाने के जो रीमेक जो करण जौहर लेकर आए थे उसके साथ कितना कनेक्ट कर किया. एंड दैट टेल्स अस अबाउट मदन मोहन्स लेगेसी.

You are listening to Funisha Radio 104.9 FM, bringing the community together. और हमने मदन मोहन साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और सेलिब्रेट की उनके ब्यूटिफुल कपल ऑफ सॉन्ग्स दैट वी वॉन्टेड टू प्ले फॉर हिम. यहाँ पे वेटरन एक्टर सतीश शाह को भी याद करना चाहती हूँ. इट इज़ हिज बर्थ एनिवर्सरी एज वेल. लास्ट ईयर ही पास्ड अवे एंड वी नो हाउ इनक्रेडिबल एन एक्टर ही वॉज. वो चाहे वो जाने भी दो यारों से आप उन्हें याद रखें या हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कल होना हो, मैं होना, देयर आर सो मेनी. और जो टेलीविजन की दुनिया से उन्हें याद रखते हैं तो सारा भाई वर्सेस सारा भाई वॉज डेफिनेटली अ कल्ट सिटकॉम फीचरिंग हिम. एंड सतीश शाह को याद करना चाहती हूँ यहाँ पर अलॉन्ग विथ मदन मोहन साहब. यहाँ पे आगे बढ़ के एक और सेलिब्रेशन लेकर आना चाहती हूँ और ये सेलिब्रेशन का हिस्सा आप टोटली बन सकते हैं क्योंकि आपको गेस करना है ये गाना इसमें कौन फीचर्ड है जिनकी हम बात करें. विच इट इज़ हर 51st बर्थ एनिवर्सरी. यू हैव टू जस्ट गेस द सॉन्ग एंड व्हाट यू गेट इन रिटर्न इज सैन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से दिस चॉइस ऑफ डोसा प्लस वन फिल्टर कॉफी. द फर्स्ट टू कॉलर्स हु आर एबल टू गेस द सॉन्ग विल गेट दिस इनाम फॉर द सेलिब्रिटीज बर्थडे 51st बर्थडे. हाउ अबाउट लिसनिंग टू द ट्यून एंड guessing the song 972-235-5555. बस इतना ही दे सकती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा देना तो गलत होगा. आप सारे म्यूजिक के शौकीन हैं एंड यू शुड नो द एक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, द सॉन्ग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो हियर वी गो वन मोर टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू गेस.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Beta, 95% aaye?
7: Haan, mummy.
6: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
8: Mera?
6: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
8: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
4: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
11: मामू देखो क्या हो गया।
12: ओ क्या हो गया?
11: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
12: ओए जर्मन का कमाल है।
11: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
12: ओ नहीं, ओए जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
5: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
13: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
5: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
13: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और विजिट astrologerishwar.com.
14: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
15: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
16: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.
17: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.
18: 25th of June, ladies and gentlemen, घड़ी मिला लीजिए, 11:04 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में, और मौसम का हाल भी बताते चलते हैं। इट्स अनदर हॉट वन ऑन टैप फॉर नॉर्थ टेक्सस टुडे, और सनशाइन भी अच्छी खासी होगी और टेम्परेचर्स भी अच्छे खासे होंगे। अच्छी हवा चलने वाली है आज और इसीलिए ह्यूमिडिटी भी थोड़ा कम रहेगा हमारे लिए. नॉनदलेस इट विल स्टिल फील लाइक 100, 100, सो बी श्योर टू स्टे हाइड्रेटेड एंड कीप कूल. तो हमारा वेदर पैटर्न अक्रॉस नॉर्थ टेक्सस व्हाट आई कैन सी इन द कमिंग डेज, इट इज गोइंग टू बी व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ लेट जून. काफी अच्छी खासी गर्मी रहेगी एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक गोइंग इन टू नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट हॉट एंड ह्यूमिड डेज और हाई टेम्परेचर्स हमारे कुछ मिड टू अपर 90s के आसपास ही रहने वाले हैं, 90s टू 100 के आसपास ही रहने वाले हैं. तो आज का हाई 95, आज का लो इट इज 77 डिग्रीज. लेडीज एंड जेंटलमैन कल परसों और आने वाले दिनों में बस समझ ले एक एक डिग्री का फर्क होगा और एक एक डिग्री बढ़ता ही जाएगा. तो कल का टेम्परेचर हाई जो होगा हमारा 90

हैं। तो आज का हाई 95, आज का लो इट इज 77 डिग्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन। कल परसों और आने वाले दिनों में बस समझ ले एक एक डिग्री का फर्क होगा और एक एक डिग्री बढ़ता ही जाएगा। तो कल का टेम्परेचर हाई जो होगा हमारा 97 एंड लो विल बी अराउंड 77। नाउ दैट बीइंग सेड, जल्दी से आपको अभी फिलहाल का टेम्परेचर भी बताते चलें जस्ट इन केस यू आर प्लानिंग टू स्टेप आउट। इट इज 85 डिग्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन। और हमारी विनर फॉर सैन इडली रेस्टोरेंट इज मेघा एंड याशी, द टू विनर्स दैट आई हैव विथ मी सैन इडली की रेस्टोरेंट की तरफ से। इनको इनके चॉइस ऑफ डोसा और साथ में एक बढ़िया शहर का बेस्ट फिल्टर कॉफी दैट यू कैन गेट एट दिस 100% वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ एट द जंक्शन ऑफ 121 एंड कस्टर। और बिल्कुल सही जवाब, करिश्मा कपूर के गाने से मैंने एक इंटरल्यूड प्ले किया था, वो गाना है ये, बिकॉज शी इज सेलिब्रेटिंग हर 51st बर्थडे टुडे।

0: राहुल तो यहाँ नहीं है।
1: अरे बॉबी राहुल यहाँ पर नहीं है, दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार।
2: राहुल कहाँ पर है भाई? You are listening to Funisher Radio 104.9 FM. आप में से किसी का अगर नाम राहुल है ना तो give me a call right now. It will be so fun to find out हमारे बीच राज राहुल कितने हैं इस नाम के साथ. You are listening to Funisher Radio और हमारे गपशप गली में आज कुछ environment से related कुछ topic पे बात होने वाली है. And the reason is कल मुझे एक call आया और उन्होंने मुझे जो एक environmentalist है उन्होंने अपना नाम नहीं बताना चाहा था. So let's keep it anonymous. That's fine. Absolutely fine. We care about the topic. And therefore, we thought we'll pick it up for you in Gapshap Gali with me too. आप सबसे मैं ये एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करने वाली हूँ. The topics that connect to your heart, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important topics हैं, चाहे वो family की बात से related हो, चाहे वो society की बात से related हो, ऐसे कोई भी topics जो आप चाहेंगे कि मैं यहाँ पे उसके बारे में बात करूँ, you can send me a DM on my Insta handle and that's RJ Meetu Ganguly, MITHU. That's how you spell my first name and Ganguly. तो भाई ये बताने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना. Once again, ladies and gentlemen, topics close to your heart, let us know and we'll be happy to talk about them. और यहाँ पे करिश्मा कपूर की बात कर रही थी ना, तो yes, you have to really think about करिश्मा कपूर out of the box now. That box of David Dhawan films, जहाँ पे वो हीरो नंबर वन हो, कुली नंबर वन हो, साजन चले ससुराल and all those David Dhawan 90s films, she is completely out of those. So finally वो एक जो वेब सीरीज के साथ आई है and it is Brown. और ये Brown जो है एक क्राइम थ्रिलर है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज जो कि अभिनय दियो ने डायरेक्ट किया है. एंड माय गुडनेस, शी हैज़ रियली आउटडन हरसेल्फ. मैंने शायद ही उनको ऐसे किरदार में कभी देखा है. सो इट इज़ अ न्यू अवतार. डेफिनेटली 2026 इज गोइंग टू बी ए वंडरफुल ईयर फॉर करिश्मा कपूर व्हेन वी सी दिस डिफरेंट अवतार ऑफ हर. विशिंग हर अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस बर्थडे, कि वो आगे भी एक्टिंग करती रहें, यही हम चाहेंगे. और इसमें ना कमाल की बात थी, करिश्मा कपूर के साथ देयर वाज सोनी राजदान एंड ऑल्सो हेलन इन दिस वेब सीरीज. आई रियली एंजॉयड वॉचिंग इट. येस, इट्स अ ग्रिटी वन, इट्स अ डार्क वन, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. इज सेट इन कोलकाता, तो कोलकाता की स्ट्रीट्स वगैरह भी आपको दिखते हैं. तो इफ़ यू आर नॉस्टैल्जिक अबाउट कोलकाता, इफ यू हैव ग्रोन अप इन कोलकाता, आपके लिए दैट स्लाइस इट ब्रिंग्स. बट येस, इट्स अ ग्रिटी वन, so be absolutely aware of it and then only go ahead and watch it.

And it is celebrating Karishma Kapoor that we played that song, but it is also celebrating the voice for Karishma Kapoor, and that was Alka Yagnik, ladies and gentlemen. And Alka Yagnik ko haal hi mein confer kiya gaya with Padma Bhushan, and she was at the Rashtrapati Bhavan, and she collected her award, which is India's third highest civilian honor, and it was given to her by President herself, Draupadi Murmu. और ये थोड़ा सा देखने को जो हमें मिला, दो साल के बाद she has come out. You all know that she was ailing from this problem of hearing loss, और ये जो इनकी जो तबीयत थी वो काफ़ी ख़राब थी, एंड शी एब्सोल्युटली वॉज आउट ऑफ पिक्चर. एंड दो साल के बाद हमें उन्हें देखने को मिला, शी वॉज लुकिंग वेरी फ्रेल, और उनको असिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ी थी ऑल द वे टू द स्टेज, एंड दैट रेज्ड कंसर्न्स अबाउट हर. लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना ग्रैटिट्यूड बताया लोगों को, और बताया कि बस स्लोली रिकवर कर रही हैं, एंड स्लोली शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड हर वे बैक, एंड वी विश हर स्पीडी रिकवरी एंड कंग्रेचुलेशन. दिस इज़ अ वेल deserve award that she got, India's third highest civilian honor that she received. It was definitely overdue, one can say. And iske alawa ek aur janab jinko hum yahan pe mention karna chahte hain, and that's R Madhavan, jinhe Padma Shri mila hai, and it is to celebrate his contribution in the world of cinema, and we know that is immense. Big fan of Madhavan, let's get this song going. और उसके बाद कुछ environment से related जो topic था उसको हम जरूर लाएंगे आपके लिए. And it is, ladies and gentlemen, this beautiful song that I want to play for all of you.

दिल की सुने, अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं या लेट्स से सेल करने का सोच रहे हैं या रीलोकेट करने का सोच रहे हैं DFW एरिया, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा नाम सजेस्ट करने वाली हूँ, एंड दैट्स नवनीता खेमका। इनको आप अच्छी तरह से जानते हो, शी हैज़ बीन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल टीम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, यू नो हर वेल, यू नो हर पर्सनली, एंड आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बात भी की है। आप जानते हैं कि ये जेन्युइनली केयर करती हैं लोगों की, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इनके पर्सनलाइज सर्विस, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और ये जो एक जेन्युइन केयर लेकर आती है ना, इसके साथ अगर अपना घर खरीदना या बेचना या रीलोकेट करने का सोच रहे हो तो दैट्स द राइट वे टू गो। ज़रूर याद रखें कि नवनीता खेमका इज़ विथ केलर विलियम्स रियल्टी टू गाइड यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। अब आपके लिए घर, आपका सपना जो है वो बिल्कुल पूरा हो सकता है विद जस्ट द राइट पर्सन। नवनीता खेमका का नंबर आप लोगों के लिए, इट इज 347-449-4242। और राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट मंथ जो चल रहा है, कल मुझे एक कॉल मिला, इसी के चलते आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट। हम रोज बात करते हैं नए फोन्स, नई गाड़ियां और फैंसी कुछ लग्जरी आइटम्स की, बट टुडे लेट्स टॉक अबाउट ए स्टाइल ट्रेंड दैट विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन, सेविंग अ प्लैनेट। बहुत क्लीशेड स्टेटमेंट लगता है, लेकिन हम सब लोग अक्सर सोचते हैं कि यू नो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल कुछ अपनानी पड़ेगी हमें, या बड़े बड़े प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना पड़ेगा हमें। बट द ट्रूथ इज द ईजिएस्ट थिंग वी कैन डू इज लिटरली राइट देयर इन आवर हैंड। यस, मैं स्मार्टफोन्स की बात कर रही हूँ, मैं लैपटॉप की बात कर रही हूँ, मैं इनफैक्ट हमारे कपड़ों की बात कर रही हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, शॉप लेस फॉर द फैड और ट्रेंड, और जो चीज़ पास में है उसे तब तक चलाओ या इस्तेमाल करो जब तक वो चलने लायक हो। अकॉर्डिंग टू अ ग्लोबल एनवायरमेंट ट्रैकिंग डेटा, द वर्ल्ड इज ऑन ट्रैक टू जनरेट ए मैसिव 65 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एनुअली। शॉकिंगली डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स 70% ऑफ दैट टॉक्सिक हैवी मेटल वेस्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कैन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फाउंड इन आर लैंडफिल्स, और even though they represent just a tiny fraction of total trash, अगर आप इसमें कुछ समझदारी दिखाते हैं तो बहुत बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। पहले के ज़माने में हमारे पेरेंट्स हर चीज़ का एक निचोड़ के फ़ायदा उठाते थे, निचोड़ कर यूज़ करते थे, याद है ना आपको। टुडे द मोमेंट ए न्यू फोन ड्रॉप्स विथ वन एक्स्ट्रा लेट्स से कैमरा लेंस, हम लाइन में लगने के लिए तैयार हो जाते हैं, घंटों लाइन में लगने के लिए तैयार हो जाते हैं वो नया फीचर पाने के लिए। बट स्ट्रेचिंग द लाइफ स्पैन ऑफ योर करंट डिवाइस बाय जस्ट वन और टू मोर ईयर्स drastically slashes demand for minimizing the toxic raw material waste like cobalt and lithium. अगर आप इसमें contribute कर सकते हैं, अगर एक वे बंदा इससे अगर कुछ एक अपना फर्क ला सकते हैं तो that would be your biggest contribution. And that will be a definitely मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा

0: गिरे।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
2: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
8: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
6: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
10: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
13: वेट, इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं हीरो।
15: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
16: हाँ।
15: घर रिलोकेट करनी है?
16: हाँ।
15: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
16: हाँ भाई हाँ।
15: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
17: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।

0: hits is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Swag se karenge sabka swagat.
4: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो
5: 104.9 FM. एंड इट इज विशाल शेखर गेटिंग रेडी टू परफॉर्म लेडीज एंड जेंटलमैन एट द कर्टिस कल्विल सेंटर जुलाई 12th को है. जल्द से जल्द अपने टिकट्स खरीद लीजिए. मैंने तो अपने टिकट्स खरीद ली हैं एंड आई एम ऑल सेट टू अटेंड दिस वन. सुना है कि भाई जबरदस्त शो लेकर आते हैं. क्योंकि कंपोजर्स हैं तो ये अपना म्यूजिक अरेंजमेंट भी कमाल का रखते हैं. द साउंड इज ऑलवेज फैंटास्टिक एंड द एनर्जी इज सुपर फैंटास्टिक ऑलवेज. और उन्हीं के बहुत सारे अच्छे गानों में से एक और अच्छा सा गाना मैं प्ले करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए. रिटन बाय विशाल दादलानी हिमसेल्फ ऑफ द विशाल शेखर डुओ. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गपशप गली विथ मी टू। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि भाई गपशप गली विथ मी टू में विशाल शेखर का म्यूजिक प्ले होना बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है, और ये सिर्फ मेरे शो पे नहीं, हर शो पे प्ले होता है। एंड यू नो दैट ऑन 12th of July दे आर हियर इन डैलस। मतलब आप सोच सकते हो कितनी कितनी कमाल की बात होगी। एंड यू नो आई रिमेंबर, आई थिंक इट वॉज अ ईयर और टू बैक, और वॉज इट फ्यू मंथ्स बैक, आई एम टोटली ड्रॉइंग अ ब्लैंक on that, but I remember one of my friends attended Vishal Shekhar concert और उसने इतनी तारीफ की ना कि मैं जलने लगी थी कि यार कि हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आए विशाल शेखर। अब बारी मेरी है, so yes मैं कहूंगी और वो जलने वाली है, because she told me that amazing amazing concert that they do, क्योंकि जो energy वो लेकर आते हैं वो बेहद कमाल की होती है। You are listening to Funny Show Radio 104.9 FM। कुछ energy हम चाहते हैं कि आप भी लेकर आएं, क्योंकि हम कुछ slam book के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ यादों को आपके ताज़ा करने वाले हैं। After all, this is Nostalgia Express, ladies and gentlemen। 972-235-5555 number in the studio।

बस यादों की अलमारी खोलना चाहती हूँ, बिकॉज इट इज नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्कूल कॉलेज के दिनों में किसने स्लैम बुक पास किया है अपने क्लास में, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, किसने पास किया है स्लैम बुक? अगर जिन्होंने भी किया है वो जानते हैं कि वो एक जो कलरफुल एक नोटबुक हुआ करता था, और वो जो हम एक सर्कुलेशन पे अपने फ्रेंड्स को देते थे, और उसमें जो क्वेश्चंस रहते थे वो सारे क्वेश्चंस ना हमारी जिंदगी से कोई वास्ता रखता था कई बार, कि उनका उनके बारे में जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता था. कितना ज़रूरी होता था कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनका हो, आपकी टीचर्स का भी आपको चाहिए होता था उसमें. एंड इट यूज़ टू बी सो मच फन. सीरियसली वही आज याद करने वाली हूँ. आज हम इस स्लैम बुक के उन पन्नों को फिर से पलटेंगे आप लोगों के साथ. एंड वो जो क्यूट क्यूट से क्वेश्चन हुआ करते थे ना हमारे उन स्लैम बुक्स में, उनको आप लोगों के साथ याद करना चाहती हूँ मैं. तो सबसे पहले आता था योर निकनेम. जो भी बंधु को आप देने वाले हो उसको उसका निकनेम आप पूछते थे उसमें. एंड देयर वर सो मेनी अदर थिंग्स. जिसमें एक और बहुत ही अजीब और गरीब एक क्वेश्चन होता था, व्हाट इज फ्रेंडशिप? ये जानकर हमें क्या ही मिलता था, लेकिन हम ये सवाल जरूर रखते थे कि व्हाट इज फ्रेंडशिप टू यू. और उसके जवाब भी बहुत ही स्टैंडर्ड किस्म के कुछ एक प्रोवर्ब आ जाएगा, या उस तरह की कोई चीज़ आ जाती थी, जैसे फ्रेंडशिप इज़ ए शिप दैट नेवर सिंक्स. इस तरह के बड़ी बड़ी महान महान कुछ आइडियाज़ एंड थॉट्स जो कि कॉपी पेस्ट करके लगा दिया जाता था, या फिर वो जहाँ पे FRIENDS मीन्स फलाना ढिमकाना, पूरा एक एक लेटर लेके आप लिखते थे द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू वुड राइट. एंड दैट वुड बी वन ऑफ दोज थिंग्स, वन ऑफ दोज क्वेश्चंस टू योर फ्रेंड्स. इसके अलावा बहुत सारे और क्वेश्चंस होते थे. बस आप लोगों के साथ वही सारी चीज़ें याद करना चाहती हूँ. स्लैम बुक, लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू एवर हैड वन, यू नीड टू कॉल मी एट 972-235-5555. लेट्स टॉक अबाउट देम. कोई अगर ऐसे क्वर्की क्यूट क्वेश्चन आपने भी अपने स्लैम बुक में रखा था तो ज़रूर बताइएगा मुझे. 972-235-5555. आई'd लाइक टू नो. एज आई सेड, नियॉन कैक्टस की तरफ से द फर्स्ट वन टू गिव मी अ कॉल विल गेट दिस गिफ्ट कार्ड, $20 का गिफ्ट कार्ड. डाइन इन गिफ्ट कार्ड है भाई, एक ऐसी जगह का जहाँ पे मेक्सिकन फ्यूजन के साथ ग्लोबल इन्फ्लुएंस मिलता है इनके खाने में आपको. Once again, 972-235-5555, number in the studio.

0: You are tuned into Furniture Radio 104.9 FM और Nostalgia Express में मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके स्लैम बुक के बारे में. आपके स्कूल, आपके कॉलेज के दिनों में ना स्लैम बुक हुआ करता था. अगर आपने कभी किसी का लिखा हो, कभी किसी के पन्ने भरे हो, या आपका अपना एक डायरी था जो आपने बहुत सजा के रखा हुआ था, बहुत सारे स्टिकर्स लगाए थे, अपनी बेस्ट हैंड राइटिंग भी उसमें आपने दी हुई थी, अपना नाम लिखा था उस पर, और ऑल ऑफ दैट. कई बार तो वो क्वेश्चंस प्रिंटेड आते थे और कई बार आप अपने क्वेश्चंस लिखते थे अपने स्लैम बुक में. और वो क्वेश्चंस जो होते थे ना, वो कमाल के होते थे. जैसे कि आपकी आपकी व्हाट इज फ्रेंडशिप टू यू, योर निक नेम, जोडियक साइन, फलाना ना ढिमकाना, जिसका ना कुछ मतलब होता था, लेकिन वो हमारी ना स्लैम बुक का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा होता था. हम यकीन मानिए, बहुत अच्छे से हम वो सारी चीज़ें पढ़ते थे. ऐसे में ना बहुत सारे और बहुत ही इम्पोर्टेंट, तब के लिए हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस और हम अपने लिसनर से सुनना चाहते हैं. यू आर लाइव ऑन एयर, बताइए. तो आपकी स्लैम बुक के बारे में आप बता रही थी मुझे, मैंने सोचा लेते हैं आपको ऑन एयर. और आपका जो वो सवाल है ना, दैट यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन आवर स्लैम बुक, वो बताइए आप हमारे लिसनर्स को. लेट्स मेक एवरीबॉडी अ बिट नॉस्टैल्जिक हियर.
1: So yeah, in those like 9th and 10th years, the typical teenagers years, so one of the questions which I used to ask to my friends was like, who is your favorite crush? And the answer will be like known to every the best friends, and they won't write the entire name.
0: Exactly.
1: But then you write the first letter and star, and then last letter, and then to like,
0: absolutely. एब्सोल्यूटली, बिल्कुल सही कहा. एक्चुअली दे वुड राइट द फर्स्ट लेटर, दे वुड गिव सम काइंड ऑफ इंडिकेशन. जिनको पता होता था उनको पता चल जाता था, और जिनको नहीं पता वो कभी भी नहीं पता कर सकते थे. इस तरह से थोड़ा सा सीक्रेटिव वे में लिखते थे. एंड देर वर अदर वेरी यू नो पोलिटिकली राइट आंसर्स टू दिस, जहाँ पे वो ना ऐसे लिख देंगे कि ऋतिक रोशन या फिर सलमान खान या फिर ब्रिटनी स्पियर्स, उस तरह के नाम भी आते थे कि जहाँ पे कोई वाला कोई चैलेंज नहीं कर सके उनको. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. व्हाट्स योर नेम अगेन?
1: माय नेम इज किरण.
0: किरण, बताइए आपके नाम. तो मैंने नियॉन कैक्टस का ये गिव अवे तो किया ही, लेकिन एक गाना बताइए जो उस जमाने का आपको याद आ रहा है, जो मतलब बहुत पॉपुलर था आपके उस जमाने में.
1: वन ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग वाज लाइक इतना प्यार तुम्हें करते हैं.
0: इतना प्यार तुम्हें करते हैं. ऑल राइट, लेट्स गेट दैट सॉन्ग फॉर यू. एंड इट इज फ्रॉम द फिल्म एक लड़का एक लड़की, इज इट?
1: Yes, नीलम एंड सलमान.
0: नीलम एंड सलमान खान. बोलते बोलते तो थोड़ी सी शर्म आपको अभी भी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है. वेल थैंक यू सो मच किरण, होल्ड द लाइन, क्योंकि नियॉन कैक्टस के तरफ से $20 का गिव अवे इज योर्स टू कीप.

0: लिसन, वी वर टॉकिंग अबाउट स्लैम बुक टुडे, और स्लैम बुक हमारे स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो सारी यादें एक डायरी में समेट लेते थे हम, जहां पर हम अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट करते थे, उनका नाम, उनका निक नाम, उनके फादर मदर का नाम, उनके सिस्टर्स ब्रदर्स का नाम भी कई बार पूछते थे, फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस सिंगर कलर मूवी सॉन्ग, बेस्ट फ्रेंड का नाम, बेस्ट फ्रेंड का निक नाम, क्रश का नाम, हॉबीज का नाम, एम्बिशन क्या है, ये सारी चीजें एक ही पन्ने में या दो पन्ने में चलिए पूछ लिया करते थे ये चीज। और आखिर में होता था ऑटोग्राफ, स्लैम बुक को कई लोग ऑटोग्राफ बुक भी बोलते थे, और उस ऑटोग्राफ के साथ फ्रेंड अपने जिस फ्रेंड के लिए लिखा जा रहा है उसको कुछ एडवाइस भी देते थे, और वो एडवाइस कई बार बड़े शानदार होते थे, एंड इट यूज टू रियली मेक यू थिंक ट्वाइस देन एंड अभी आपको क्रैकअप करेंगे अगर आप वो पढ़ेंगे दोबारा से। सो यस, दीज वर द फ्यू पेजेस आई वॉन्टेड टू टर्न विथ यू टूडे, एंड इट इज द स्लैम बुक, जिसके कई बार ना हम लोग जो ओनर होते थे वो भी कुछ अपना एक लिख देते थे वहाँ पे कि सब अच्छे से हैंडल करें। वन ऑफ द वेरी कॉमन वंस इन आर टाइम्स वाज आल्सो स्लैम बुक इज माइन, कीप इट फाइन, इफ यू टियर अ पेज आई विल पुट यू इन अ केज। कैन यू इमेजिन दैट? एंड अभी वो सोच सारी चीजें सोच के इतनी क्यूट लगती हैं, और मैंने सोचा कि बस आज इन्हीं को याद किया जाए आप लोगों के साथ। थैंक यू फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग हियर, एंड वंस अगेन दिस इज गपशप गली विथ मी टू। फीफा सेगमेंट कमिंग।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas, simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas, powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen,
2: official tax and finance partner AG FinTax,
1: official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja,
2: in association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम, ओके, नेम ऑफ द लॉयर, उमर ख्वाजा।
13: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
16: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
17: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
16: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
17: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
15: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कॉम्पिटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड
18: Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
19: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
20: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
21: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
22: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
23: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
22: Kya matlab?
23: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
22: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
23: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
22: Ab to karna hi padega, madam.
24: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
25: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
26: डालस की धड़कन 104.9 FM Fun Asia Radio.
0: दिस इज गपशप गली विथ मी टू और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ आई एम गोइंग टू टेक अ मोमेंट टू टॉक अबाउट अटर्नी ओमर ख्वाजा इंजरी लॉयर दैट ही इज मेक श्योर दैट यू गेट इन टच विथ हिम बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग चेंजेस व्हेन यू आर इनटू एन एक्सीडेंट या स्लिप और फॉल इंसिडेंट हुआ है आपके साथ या कुछ वर्क प्लेस इंजरी हुई है जहाँ पे आप कॉम्पनसेशन डिजर्व करते हैं लेकिन देर इज सो मच ऑफ माथापच्ची कि आपको लगता है कि यार कौन ही पड़े इसमें और आप छोड़ देते हैं. ये छोड़ने की बजाय आप अटर्नी ओमर ख्वाजा के साथ आप कनेक्ट करें क्योंकि एक तो क्या है ना कि फ्री कंसल्टेशन है तो आपको पता चल सकता है कि आपके केस में किस तरह से वो आपकी मदद कर सकते हैं. एंड द अदर थिंग इज इफ यू डिसाइड टू गो विद देम उनका एक जो प्रॉमिस आपके लिए होता है एंड दैट इज दैट यू डोंट हैव टू पे अंटिल यू विन द केस दैट इज अंटिल यू गेट योर डिजर्व कॉम.

टू गो विद देम, उनका एक जो प्रॉमिस आपके लिए होता है एंड दैट इज दैट यू डोंट हैव टू पे अंटिल यू विन द केस, दैट इज अंटिल यू गेट योर डिजर्व कॉम्पनसेशन. सो नाउ दैट बींग सेड, मुझे लगता है सही वक्त है कि मैं आपके साथ शेयर करूं इनका नंबर 4693005046. इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट यू कनेक्ट विद देम राइट एट द बिगनिंग. लेकिन मान लीजिए थोड़ा वक्त बीत चुका है लेकिन आपको लगता है कि यू स्टिल डिजर्व दैट कॉम्पनसेशन, गो हैड एंड गिव देम अ कॉल. विजिट देयर वेबसाइट अटर्नी omar.com. And this traffic update is brought to you by the offices of Omar Khwaja. तो यहाँ पे दो major accidents के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ. यहाँ पे I-20 at Bonnie View Road westbound में जो है right shoulder और right most lane ये पूरी तरह से बंद है, तो you can expect a backup there. And इसके अलावा एक major maintenance चल रहा है and that is on I-35 east at Valley View Lane northbound. और यहाँ पर ये जो maintenance का जो ये काम चल रहा है दैट हैज ब्लॉक्ड द एग्जिट एंड ऑल्सो द टू राइट मोस्ट लेन्स. दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू टू नो. कपल ऑफ माइनर इंसिडेंसेस, एक्चुअली मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन की बात है यहाँ पर. I-35 ईस्ट एट FM 3040 राउंड ग्रोव रोड नॉर्थ बाउंड पे आप कुछ माइनर बैकअप आपको मिल सकता है. द शोल्डर, राइट शोल्डर इज क्लोज अलॉन्ग विद टू राइट लेन्स दैट आर क्लोज्ड. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन चल रहा है I-30 एट बेल्ट लाइन रोड ग्रैंड प्रेरी वेस्ट बाउंड. और आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि राइट शोल्डर बंद है और राइट मोस्ट लेन भी बंद है. सो थोड़ा बहुत बैकअप आपको वहाँ पर भी मिल सकता है. एंड दैट ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय द ऑफिसेज ऑफ अटर्नी ओमर ख्वाजा.

एंड दिस इज गपशप गली विथ मी टू. फीफा सेगमेंट है ये, और फीफा सेगमेंट में हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आते हैं आज के, और कुछ इंटरेस्टिंग यू नो अपडेट्स या ट्रिविया भी साथ में मैं जो लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए. लेकिन इन सबको मैं शेयर करूँ इससे पहले ना, आई डू वॉन्ट मेक श्योर दैट यू नो अबाउट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. ये वो जगह है जहाँ पर आपको बिल्कुल एक तो ना सेम डे अपॉइंटमेंट मिल जाता है, और दूसरी बात यह है कि आपका अपॉइंटमेंट कुछ एक 5 या 10 मिनट का नहीं होता है, पूरे जितना टाइम आपको जरूरत होगी उतना ही टाइम आपको दिया जाएगा. एंड दैट इज व्हाट वी सीक व्हेन वी आर गोइंग टू डॉक्टर्स, राइट? और ये यहाँ पे आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, सबके लिए एक बिल्कुल वो जगह जो आप एक्चुअली एक तलाश करते हो व्हेन यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर. एंड डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, आप उनसे बात करो, फील द वाइब, गो टू द प्लेस एंड फील द वाइब. इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू चेक इट आउट. और इसीलिए हम सब चाहते हैं कि आप उनके साथ एक कनेक्शन बनाएं और पता करें कि इफ दे आर राइट फॉर यू. passionhealthphysicians.com इज दैट वेबसाइट. 214-666-6259 इज द नंबर टू कॉल. और हमें जितने भी प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट और पेडिट्रिशियंस के साथ साथ साइकेट्रिस्ट सुन रहे हैं, उनके लिए भी फुल टाइम और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर. तो आप अपने रेज्यूमे वहां पर भेज सकते हो. एंड दैट ईमेल एड्रेस फॉर ऑल ऑफ यू इज passionhealthphysicians@gmail.com. एंड द नंबर that you can text at is 217-454-4639. All right. Now that being said, let's begin. Talk about FIFA World Cup 2026. Is gaane ke baad. Ye gaana jo ki Gullak season 5 ka, and I really loved it. I'm watching the series right now. It is the 5th season of the Gullak series. It is such a cute, such an amazing storytelling. डायलॉग्स इतने बेहतरीन लिखे गए हैं, एक्टर्स इतने कमाल के हैं. इट्स सच अ फील गुड वेब सीरीज़.

अबे जोधपुर करके आवाज में दिस गाना दैट यू हर्ड, एंड मुझे इतना प्राइड फील हो रहा है ना, क्योंकि कल जब मैं ये गाना सुन रही थी आई थॉट कि कौन किसकी आवाज होगी. एक बार के लिए लगा जावेद अली, फिर लगा कि नहीं, ये जावेद अली की आवाज नहीं है. फिर मैंने कहा कि अभय जोधपुर कर, एंड राइट नाउ आई एम लुकिंग एट द क्रेडिट्स एंड इट इज अभय जोधपुर कर. तो आई एम पैटिंग माई बैग बिकॉज आई डू फील कि हम अपने ना जो फेवरेट सिंगर्स हैं जिनको हम बहुत पसंद करते हैं उनकी ना ऐसे झट से पहचान जाते हैं, और वह ऐसे रजिस्टर करता है ना दिमाग में कि भी नहीं आप भूलते हो. सो यस, चीयर्स टू अभय जोधपुरकर, एंड देयरफॉर आई एम गोइंग टू प्ले अनदर सॉन्ग इन हिज वॉइस इन जस्ट अ बिट. लेकिन उसके पहले कुछ अपडेट्स लेकर आना चाहती हूँ आपके लिए. फीफा, आज का जो हमारा स्केड्यूल दिख रहा है काफी टाइट स्केड्यूल है. 3 मैचेस होने वाले हैं, और एक कुरासाओ और वर्सेस आइवरी कोस्ट के साथ. द सेकेंड मैच इज गोइंग टू बी बिटवीन इक्वेडोर एंड जर्मनी. द थर्ड इज टूनिशिया एंड नेदरलैंड्स. द फोर्थ इज पैराग्वे वर्सेज ऑस्ट्रेलिया. द फिफ्थ इज टर्की वर्सेज यूनाइटेड स्टेट्स. एंड द सिक्स इज जापान वर्सेज स्वीडन. तो ये जो आखिरी 2 मैचेस की बात की उनके बारे में भी कुछ थोड़ा सा आपको बताऊंगी, और डिटेल्स बताएंगे कि किन के कन्फर्म्ड सीट है एट द राउंड ऑफ 32, और कौन एलिमिनेट हो चुके हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में.

दिस इज गपशप गली विथ मी टू. आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वी ऑलरेडी नो डैलस स्टेडियम जो है हमारा, इसका मतलब AT&T जो स्टेडियम है, इज होस्टिंग 9 मैसिव मैचेस. बट द रियल ऑफ पिच एक्शन, बस पूरी दुनिया की नजर इस वक्त डैलस पर है. Our city has officially turned into this ultimate goal, global media headquarters for the 2026 tournament. And ये कमाल की बात है. We are the nerve center. You need to know that. सबसे बड़ा धमाका जो हमारे downtown में चल रहा है, it's FIFA officially set up their massive international broadcast center inside the K. Bailey Hutchison Convention Center. And this was before the start of the FIFA. Every single live video feed from all 16 stadiums across the US, Canada and Mexico flows directly right here to Dallas first, और उसके बाद उसे beam out किया जाता है to billions of TV screens worldwide. मतलब पूरी दुनिया में जो मैच चल रहा है उसकी real time transmission control Dallas से हो रही है. It even houses the entire tournament's VAR replay operations. Can you imagine that? How big a role that Dallas is playing? और Dallas में आज Japan versus Sweden का जो ये मैच होने वाला है, इसके लिए everybody is all ears, and I'm sure you are also keen to find out where does Japan and Sweden stand in this. So Japan and Sweden ye jo meet kar rahe hain, group F ka finale hai of 2026 World Cup, aur ye Japan jo team hai, they need a win to finish first in the group. और स्वीडन एम कर रहा है कि बस उसको एक पॉइंट मिले कि वो एक जो नेक्स्ट राउंड के लिए उस कंटेंशन में जिंदा रह पाए. एंड दैट्स द कंटेंशन ऑफ एट द डैलस स्टेडियम दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे. एंड द गेम आई बिलीव इट स्टार्ट्स एट 6 PM. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑन दिस, बट दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ. एंड ये डैलस स्टेडियम में होने वाला है. और इसी के साथ US का जो गेम होने वाला है उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ. वेल, देयर इज नथिंग on the line when the US men's team, national soccer team is concerned. They are going to play their final match for the 2026 World Cup group stage against Turkey. The US has already secured first place in Group D, ladies and gentlemen. So I said that they don't need to worry about it. And their win thi Paraguay and Australia, ke saath, that has landed them in this first position. And Turkey, meanwhile, has already been eliminated. और उनसे उन्होंने जो दो ओपनिंग मैचेस हारे थे तो ये उनके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि टर्की इज़ ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट. दे हैव बीन एलिमिनेटेड. व्हेन दीज टू टीम्स मीट टुडे, द मेन कंसर्न फॉर द US मेंस टीम विल बी टू अवॉइड येलो कार्ड एक्यूमुलेशन एंड बैलेंसिंग रेस्ट वर्सेस स्टेइंग शार्प फॉर द नॉकआउट स्टेज. प्लस हमें पता है कि US मेंस टीम के कैप्टन जो हैं क्रिश्चियन पुलिसिक, इनका एक काफ इंजरी था, तो आज हमें पता चलेगा कि हाउ इज ही डूइंग. होप ही हैज रिकवर्ड वेल एंड ही इज रेडी टू प्ले. दिस इज गपशप गली विथ मी टू विथ ऑल द अपडेट्स दैट वी गेट इन दिस लास्ट सेगमेंट फॉर ऑल ऑफ यू.

0: रिश्ता तोड़ ताड़ के चाहता हूँ तेरा बनूँ अपने फैसले।
1: And that's pretty much all the time I have with you all. This is RJ Meetu signing off for the day.
2: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
3: लिया।
2: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
3: नहीं आया।
2: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
4: Visit www.sanadainc.com today.
5: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
7: क्यों?
8: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या Pooja essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
6: इफ यू होल्ड H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा स्टेटस एंड आर कंसिडरिंग द पाथ टू परमानेंट रेजिडेंसी, कॉन्टेक्ट द लॉ ऑफिसेज ऑफ सीमा मेहता। Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
9: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
6: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
11: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिजल्ट्स में वेरी।
12: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 469-734-3338 469-734-3338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
13: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

नहीं, nobody is going away. Rather, it's time for me to welcome you guys to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Rumita, और ये जो afternoon अड्डा शुरू हो गया है, it's a 12:40 by the studio clock. It's lunch break time, और lunch break के साथ साथ ना ये जो हमारी गपशप है, I know गपशप is specifically meant for RJ Meetu, हमारी the sweetheart of our station, but कुछ गपशप के साथ साथ अड्डा तो मेरे साथ भी आपको कर रहा है आज. और मैंने आज ना बहुत एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन से आई वांट माय शो टू बिगिन विद, कि आई हैव नोटिस दिस कि हम सोचते हैं कि हम अपना दिन कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ना हमारा जो मूड है वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से कंट्रोल्ड होती है. लाइक एक अच्छी कॉफ़ी, एक ट्रैफिक सिग्नल, एक व्हाट्सएप मैसेज या फिर बॉस का एक मेल, बस पूरे दिन का सॉफ्टवेयर अपडेट उस मूड पे, आई मीन वो छोटी छोटी चीज पे डिपेंड करता है. तो आज इस शो में आई वांट टू डेडिकेट दिस शो टू द लिटिल थिंग्स दैट सीक्रेटली कंट्रोल आवर डे. और मैं जानना चाहती हूँ कि सुबह आपका मूड किसने डिसाइड किया, कॉफी, आपके बच्चे, ऑफिस और anything special that has happened today. Keep listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Rumita. Chal raha hai hamara afternoon adda.

You're listening to 104.9 FM Funny Show Radio. Main hoon Rumita, and this afternoon, Adda, we are going to talk about the little things that is making or breaking up your mood. सच बताइए, अलार्म तो सिर्फ उठाता है, मूड तो आपका पहला जो नोटिफिकेशन आता है फोन पे उसी से बनता है. इमेजिन फोन उठाया और नोटिफाइड हुए आप कि आपका सैलरी क्रेडिट हो गया, और एक सेकंड में लगता है यार लाइफ इज ब्यूटिफुल. एंड फिर इमेजिन उसके साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन और आता है आपके, कैन वी जंप ऑन अ क्विक कॉल. बस मूड ने लिया यू टर्न. और सबसे डेंजरस नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से ये होता है, वेयर आर यू. अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखो या नॉवल, ये तो आप ही पे डिपेंड करता है यार. पता होता कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही.

वो क्या हो रहा है मेरे लाइफ के साथ, तो मैं खुद ना लिखने बैठती आपके क्वेश्चन के आंसर्स के लिए. वेल, आई वांट टू नो, सुबह पहला आपका आज का नोटिफिकेशन क्या था? डिड इट मेक योर डे और डिड इट ब्रेक इट? स्टूडियो का नंबर इज 972-235-5555 एंड टेल मी कि किस चीज से अभी आपका मूड इम्प्रूव हुआ है या फिर स्पॉइल हो गया. यार फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए क्योंकि फनीशा रेडियो इज ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर अलोंग विद ब्यूटिफुल ट्रैक्स. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग.

It's 12:53 PM by the studio clock. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. आज है थर्सडे जून 25th और ये जो सुंदर सा ब्यूटीफुल सा गाना आप सुन रहे थे दैट वाज फ्रॉम द लास्ट इयर्स सैयारा एंड व्हाट अ म्यूजिकल हिट एंड व्हाट अ ब्लॉकबस्टर इट वाज एंड हम सफर पर्सनली आई थिंक सारे गानों में से मेरी बहुत ही फेवरेट मेरा एक गाना है रेदर हम सफर की बात अगर कर रहे हैं तो पिछले 13 सालों से आपके साथ हम सफर बनके चल रहा है टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक और इज प्राउडली केयरिंग द कम्युनिटी विद दिस ग्रोइंग वेंचर दे हैव अ न्यू वेंचर विच हैज गॉट अ न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन एंड दे आर इंट्रोड्यूसिंग इट एज अ लेनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लेनॉक्सी मेडिकल में आपको मिलेगी सारी सुविधाएं जैसे कि प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics और Himalayan Med Spa services भी और ये सब कुछ मिलेगा all under one roof. It is open all 7 days a week from 8 AM to 8 PM and you can walk in anytime. No appointment is necessary. You know, आजकल appointment मिलना भी is too difficult, especially if you have a sudden illness or you need a immediate diagnosis. So go ahead and visit Lenoxy Medical. It's at the Kaiser Way in Main Street. Go there and have all your doubts cleared about your health. Texas Primary Care, it is, ladies and gentlemen.

0: am I behaving like a teenager? मैं उसका इंतजार क्यों कर रही हूँ?
1: शिखर! हाय
0: हाय,
1: आज आप जल्दी निकल गए।
0: लेडीज का

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
2: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
3: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
2: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
4: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
5: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
6: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
0: Beta, 95% आए?
7: हाँ मम्मी।
0: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
8: मेरा?
0: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड?
8: वो
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
10: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
11: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
10: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
12: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
13: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
8: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में? सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
13: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

मान गए डॉलर्स, आप जो इतने बॉलीवुड बफ है, मुझे हमेशा पता चलता है इसी बात से कि कोई भी गिव अवे का इंट्रिकेट डिटेलिंग अगर आपको पकड़ना हो, ये यही वो वक्त होता है जब आपके अंदर में जो बॉलीवुडी कीड़ा है ना, वो बाहर निकल के आता है, कूद कूद के निकल के आता है। आप आई हैड आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन के तीनों कैरेक्टर का नाम बताओ, और श्वेता जी ने मतलब मेन एक्टर्स के तो नाम बता ही दिए थे, विच इज आयुष्मान खुराना एंड यामी गौतम। तो मैं तीसरा नाम, इसी एक्सपेक्टेशन से मैंने ये सवाल रखा था कि लोग अन्नू कपूर बोलेंगे, बट यार उन्होंने तो कैमियो का नाम भी बोल दिया, जॉन एब्राहम। मतलब कितने पागल हो यार आप हिंदी फिल्म्स को लेके। आई एम सो हैप्पी दैट आई गेट टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू गाइज हियर। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशिया रेडियो। मैं हूँ रुमिता एंड आई डू हैव द विनर विच इज श्वेता। कंग्रेचुलेशन श्वेता, यू हैव वन दिस चंडीगढ़ बाइट्स का गिव अवे। यू कैन ईदर एंजॉय द डिलिशियस कढ़ाई पनीर और कढ़ाई चिकन from their restaurant. फिलहाल moving on, I have a request from Mr. Krishanu, जो कि बहुत ही प्यारे से इंसान है और बंगाली है तो और भी ज़्यादा प्यारे होंगे। So he has requested this track from the movie New York, and yes, it is my favorite too. So thank you for taking back to this beautiful song. Enjoy, this is for you.

सुन रहे थे आप इस ब्यूटीफुल गाने को फ्रॉम द मूवी, ऑब्वियसली फ्रॉम द टाइटल ट्रैक ऑफ द मूवी गहराइयां. एंड आई हैव अ क्वेश्चन टुडे, अ डिफरेंट वन. आई वांट टू नो, कोई फेवरेट गाना नहीं, वो गाना जो आपका मूड ना इंस्टेंटली चेंज कर दे, या चाहे कितना भी बुरा दिन चल रहा हो, बस दो लाइंस उसका सुनते ही आपके चेहरे पे ना एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है. और वो कुछ भी हो सकता है, कभी दैट कैन बी एन ओल्ड बॉलीवुड मूवी का गाना, या फिर 90s सॉन्ग, या कभी एक रैंडम डांस नंबर. यू नो, म्यूजिक का मैजिक तो यही है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, पर प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए ज़रा बाजू हटना भाई साहब, वो साइड में ज़रूर कर देता है. आपका मूड रीसेट सॉन्ग कौन सा है? आई वॉन्ट टू नो एंड आई कैन टेक दैट रिक्वेस्ट एंड प्ले इट फॉर यू. फिलहाल मेरा एक ऑफ लेट फेवरेट गाना सुन लो, ओनली ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो. दिस इज रमिता विद द शो आफ्टरनून अड्डा.

24 minutes past 1 o'clock, you're listening to 104.9 FM. फन एशिया रेडियो में हूँ रमिता. और इस गाने से पहले मैंने आपसे एक छोटा सा यू नो मोमेंट रखा था कि ऐसा कौन सा गाना है जो आप मतलब जिसे सुनते ही आपके मूड अच्छे हो जाते हैं, चाहे कितना भी आपका दिन खराब चल रहा हो. बैक टू बैक अभी भी कॉल्स आ रहे हैं एंड आई वुड लव टू पिक ऑल ऑफ देम, बट सबके कॉल्स नहीं उठा सकती. बट आई कैन अपलिफ्ट द मूड ऑफ सम एंड जो जो रिक्वेस्ट आप लोगों ने की है आई एम गोना प्ले. द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई एम गोना प्ले इज अ रिक्वेस्ट बाय मिस्टर मोहिल एंड ही हैज़ अ डिफरेंट फ्लेवर टुडे. दोपहर को उन्हें अचानक से सतिंदर सताज की बहुत याद आ गई एंड ही वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग. सो हियर इट गोज. आई विश दैट इट lifts up your mood and makes your day a little better. Stay tuned and keep enjoying. Aur baki log, aap log Qatar mein ho, aapke gaane bhi bajenge. Don't worry. Stay tuned and keep listening.

taken from the movie ABCD. That's Anybody Can Dance. This beautiful song was requested by Shahina. Shahina, I hope this song has made your day, as you were mentioning that you want to listen to this. And as we were discussing, ke koi ek gana jo aapka matlab jitna bhi agar din bura chal raha ho, bas do lines unke sunte hi aapke फेस में स्माइल आ जाता है. सिर्फ गाने की बात चल रही थी, उसके साथ साथ और बाकी चीज़ों के साथ चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे. यानी कि कुछ भी हो सकता है. दैट कैन बी द नोटिफिकेशन, द वेदर, द ट्रैफिक दैट यू आर इन. गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है आपको अगर आज, वो भी आज आप हमसे शेयर कर सकते हैं या फिर हम बातें कर सकते हैं उस बारे में. करेंगे ना आफ्टरनून अड्डा जो है. कीप लिसनिंग टू 104.9 एफएम. दिस इज रुमिता. आई विल बी बैक विद अ गिव अवे बैक टू बैक दो गानों के बाद.

You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. मैं हूँ रमिता and this afternoon अड्डा हम बात कर रहे हैं about the छोटी छोटी चीजें that are making or breaking your day. Making का तो पता नहीं पर break करने के बहुत सारे reasons हमें दे रहे हैं ये जो टेक्सस का या डैलस का वेदर होता है. डैलस वालों की भी अलग ही लाइफ स्टाइल होती है. गाड़ी में बैठते पहला काम हम सीट बेल्ट नहीं AC ऑन करते हैं और वेदर ऐप हम इंस्टाग्राम से ज़्यादा चेक करते हैं आजकल क्योंकि ना सुबह सनशाइन है, दो घंटे बाद घने बादल, शाम को बारिश और रात को फिर से वो ह्यूमिडिटी. और पार्किंग दोस्तों, वो दूर वाली पार्किंग भी चलेगी, बस शेड मिल जाना चाहिए. आप सुन रहे हो ना, आप ही की बात हो रही है जो आप अभी पार्क कर रहे हो या फिर सोच रहे हो कि आज छाता ले धूप से बचने के लिए या बारिश से. तो कन्फ्यूजन वही होता है विच मेक्स और ब्रेक्स आर डे. अगर आपको बारिश पसंद है तो क्या ही कहना, अगर आपको बारिश सच में पसंद है तो ये जो अगला गाना है ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगा बिकॉज इट इज़ आई मीन पिक्चराइज्ड दैट वे. बट गाना पसंद आने के साथ साथ काम भी करना है आपको क्योंकि स्टूडियो का नंबर दबाना है 9722355555 और मुझे बोलना है कि ये जो गाना है इनके जो सिंगर्स है, मेल सिंगर इज अ गॉड बाय इट्स ओन वॉइस ग्रेस, बट द फीमेल सिंगर इज एन एक्ट्रेस एंड अ सिंगर. ऑल यू हैव टू डू इज टेल मी द नेम ऑफ बोथ दिस सिंगर्स और आप जीत सकते हैं फन पिज्जा किचन से $10 का गिफ्ट कार्ड. सो अगेन स्टूडियो नंबर इज 9722355555. कीप लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो स्टेशन फनीशा रेडियो क्योंकि यही है डालस की धड़कन.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे।
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
8: Don't let debt ruin your life. Visit oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
5: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
13: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
14: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
5: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
15: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
16: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
15: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
16: Thousands की लाइफ बदली उनकी divine guidance से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और visit astrologerishwar.com.
17: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
18: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention Fun Asia 2020 for a free consultation.
17: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
19: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
20: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
19: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
20: वेट, व्हाट?
15: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
21: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
15: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
0: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

9 minutes past 2 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio, and I can assure you, nothing can beat 90s Bollywood music. 90s ke Kumar Shanu ke gaane, and of course 90s ka aur Salman Khan's version of 90s. Ji ha. I mean, look at him, man. This was actually one of his best looking phase. He still is a good looking Bollywood actor, I can tell you that. I mean, I'm not going to offend any of the Salman Khan fan who are listening to me right now. I myself is a big fan of him. But I want to go out on a debate right now, and which I can call a Bollywood debate. Seriously, sochiye ki ye jo Bollywood heroes hai na, ye फिल्मों में एक्चुअली काम कब करते हैं? राज को यूरोप घूमना है, राहुल कॉलेज में बास्केटबॉल खेल रहा होता है, बनी दुनिया घूम रही है, और कबीर तो रोड ट्रिप्स पे ही है. पर इनको ना ये सब करने के लिए सैलरी कौन दे रहा है भाई? मेरे को भी ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए जो मेरे ये ट्रिप्स और यूरोप वेकेशंस और कॉलेज में बास्केटबॉल खेलने की लिबर्टी और बनी जैसा दुनिया इटली विटली पेरिस घूम लो और कुछ हो ही ना. सैलरी कौन देता है भाई लोग? मुझे लगता है बॉलीवुड में ना सबसे डिफिकल्ट जॉब ऑडियंस की इमेजिनेशन करती है. हम लोग जो हम इतने हिंदी फिल्म फैनेटिक्स है, अगर आप किसी बॉलीवुड कैरेक्टर की लाइफ एक दिन के लिए जीना चाहते हो या जी सकते हो, तो वो कौन सी होगी? कॉल करके मुझे बताओ, एंड आई वॉन्ट टू नो कि सबसे पॉपुलर आंसर कौन सा होगा. नहीं, इसके लिए आपको कुछ गिफ्ट नहीं मिलने वाला है, बट ये चर्चा जारी रहनी चाहिए. नहीं, you're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Afternoon Adda with me, Ramita.

was a beautiful track by Parth Shivastav and Shirisha Bhagavatula. Yes, I take a little time to pronounce difficult names. Yaar, kya karu? Choti si bachchi hu. Waise, I am not going to waste any time in mentioning two calls which I received in between this song. Ek to hai Vishal ji. Vishal ji ne call karke mujhe bataya ki unko na jo character, hero ka character jeena hai, wo hai Sanjay Singhania from Ghajini. I don't know. Matlab itna... I know there is a financial perspective to it, but yeah, बहुत दुखी character है वो. Why you have to and want to live a life like that? जो जब वो भूल ही जाते हैं सब कुछ and trauma में जी रहे. I am a little confused, Vishal ji. I think you should reconsider your choice and manifest something better because I don't encourage this. But Adil ji ने call किया and उन्होंने बहुत ही sweetly मुझे पहले बताया कि जिंदगी तो हम खुद की जीएंगे, but I love watching Irfan Khan and Nawazuddin Siddiqui on screen, but character मुझे जीना है मुन्ना भाई की तरह. That is a character which lives along and it's a lifetime का character है भाई. मुन्ना भाई जैसा happy go lucky character अगर हमारी जिंदगी में हो या हम खुद बनना चाहते हैं और we know someone who can be that character, तो बात ही कुछ और है. इसी के लिए जादू की झप्पी तो बनती है. बट आई वॉन्ट टू नो, अगर स्टिल इफ यू वॉन्ट टू ट्राई आउट एंड लुक आउट फॉर कैरेक्टर हीरो वाला, तो वो कौन सा होगा बॉलीवुड में? आई वॉन्ट टू नो आपका दिल क्या चाहता है. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. कॉल मी एंड टेल मी.

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

Yep, I'm going to rightfully stick to my point and observation ki nothing can beat 90s Salman Khan. You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. Aur kuch hi waqt pehle maine aapse pucha tha ki aisa kaun sa character hai that you would like to, you know, जीना चाहते हो वो कैरेक्टर आप. और रोजीना जी ने अभी कॉल किया एंड शी सेड, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, दैट शी वांट्स टू लिव द लाइफ ऑफ गीत फ्रॉम जब वी मेट एंड ऑल्सो वीरे दी वेडिंग्स करीना कपूर खान का कैरेक्टर. यस, क्योंकि व्हेन आई आस्क्ड हर शी सेड कि सिंपल है यार, जैसे वो अपनी फेवरेट थी मैं भी अपनी फेवरेट हूँ. एंड आई लाइक द स्पिरिट. रोजीना, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन एंड शेयरिंग दिस ब्यूटिफुल थिंग एंड रिमाइंडिंग अस कि सबसे इम्पोर्टेंट तो हम अपने लिए खुद ही है ना भाई लोग. स्टूडियो का नंबर इज 972-235-5555. यू कैन स्टिल कॉल इन एंड टेल मी व्हाट कैरेक्टर वुड यू वांट टू लिव एंड व्हाई.

इट्स ऑलमोस्ट 2:30 PM एंड वक्त हो गया है कि मैं आपको आज अलविदा कह दूँ. शो खत्म करने से पहले ना आज एक रिक्वेस्ट है. यू नो सोशल मीडिया में नेगेटिविटी बहुत मिल जाती है, आज कुछ पॉजिटिव शेयर करते हैं. इस वीक ऐसी कौन सी छोटी सी बात हुई जिसने बिना रीजन आपके फेस पे एक स्माइल डाल दी? किसी स्ट्रेंजर ने कॉम्प्लीमेंट दिया, कॉफी फ्री मिल गई कहीं पे, या फिर यू गॉट अ फ्री हग फ्रॉम समवन, या किसी ने यू नो जेन्युइनली पूछा कि हाउ आर यू. कभी कभी पूरा दिन बदलने के लिए बस इतना ही काफी होता है हमारे लिए. और अगर आज घर जाके किसी एक इंसान की तारीफ कर सके ना, तो जरूर करिएगा, शायद उनका दिन भी बन जाए. दिस इज रमीता और आज के आफ्टरनून अड्डा में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कल फिर मिलेंगे फ्राइडे वाले वीकेंड, मतलब फुल ऑन वीकेंड मूड के साथ. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिवली सुनते रहिए 104.9 FM फनी शेयर रेडियो. दिस इज डालिस की धड़कन.

0: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
1: Calculating route, rerouting.
0: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
1: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
0: क्यों?
1: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
0: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
1: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना. यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट. और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजर वे स्वीट 205 फ्रिस्को.
4: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है. और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
4: जहाँ हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज.
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
6: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
0: हाँ.
6: घर रिलोकेट करनी है?
0: हाँ.
6: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
0: हाँ भाई हाँ.
6: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
7: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Aaja meri gaadi mein baith ja.
12: Baith jao. पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
13: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
12: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
15: इन प्लेनो.
14: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग. और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
6: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
16: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
6: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
16: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
6: ये क्या होता?
16: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
17: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.

वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. आज है जी थर्सडे और थर्सडे को आफ्टरनून ड्राइव टाइम्स में मैं आपके लिए लेकर आती हूं. फर्स्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ इज फूड जंक्शन वेयर वी गो टू डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट सिटीज इन द वर्ल्ड एंड टॉक अबाउट फूड जो हमें एज अ टूरिस्ट वहां पे खाना चाहिए उनके लोकल फेवरेट्स एज वेल एज अ टूरिस्ट हमें वहां क्या खाना है एज वेल एज द देसी फेवरेट्स ऑफ दोज टाउन्स. लेकिन आज फर्स्ट थर्सडे नहीं है. द रेस्ट ऑफ द थर्सडेज वी सेलिब्रेट वो 90s का बॉलीवुड. सो अराउंड 4:15 बजे तक साढ़े चार ही कर लीजिए मैं आपके साथ वो 90s के बॉलीवुड को करने वाली हूँ सेलिब्रेट. आई एम गोइंग टू प्ले सम हार्ट you know beating beautiful melodies और सिर्फ वो 90s के बॉलीवुड में जी. पीछे आपको पता है हमें थोड़े 2 साल का लेवरेज ले लेती हूँ मैं और 88 से आगे 87 88 से आगे आपके लिए गाने प्ले करते हैं हम. तो this is 88 onwards वो 90s का बॉलीवुड और कुछ खूबसूरत गाने आपके साथ आज करने वाली हूँ शेयर. अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल एंड यू डोंट हैव टू डील विद इट अलोन. बिल्कुल आप अकेले इसके साथ डील मत कीजिए. द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन एंड डीलिंग विद द इंश्योरेंस कंपनीज, यू हैव टू हैव एन अटर्नी बाय योर साइड एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. ना सिर्फ ये कि उमर ख्वाजा और उनकी टीम विल हेल्प यू फाइट योर केस, बट दे विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कुछ पे नहीं करना अनटिल यू विन द केस. सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. वो कहते हैं ना, मुश्किल में या एक स्ट्रेस की सिचुएशन में राहत का ये पैगाम आपके लिए है. अगर आप या कोई आप जानते हैं somebody you know you care for is going through such a situation, then attorney Umar Khwaja is here to help. Give him a call 469-300-5046. 469-300-5046 is that number, or you can visit the website which is attorney Umar, OMAR, attorneyumar.com. This is Wo 90s ka Bollywood right here on your afternoon drive time with Suneri Kiran.

सुभाष घई की डायरेक्टेड फिल्म ताल से सुन रहे थे आप ये गाना जो कि 1999 में रिलीज हुई थी. सो वो 90s के बॉलीवुड में कुछ ऐसे ही गाने आपके लिए प्ले कर रहे हैं. अराउंड 88-89 से मैं शुरू करती हूँ और लेके जाती हूँ आपको पूरे 1999 तक के गानों की तरफ. और अब जो अगला गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ दैट इज टेकन फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर वन. लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूं, अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज के बारे में सोच रहे हैं एंड यू वांट टू बिल्ड स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, तो फिर माय टाइम इक्विटी जो कि सीपीए सुधीर पाई लीड करते हैं, दे कैन हेल्प यू एंड यू एज वेल एज एन इंडिविजुअल एज वेल एज फैमिलीज बिल्ड स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज और साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. तो चाहे आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोच रहे हो लॉन्ग टर्म वेल्थ की, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो, या फिर यू आर इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट योर पोर्टफोलियो, माय टाइम इक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस. बिल्कुल आपके गोल्स के अराउंड आपको एक पूरा सॉल्यूशन क्रिएट करके देंगे. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ये सुन के आपके जहन में कोई सवाल आया तो आप माय टाइम इक्विटी को कॉल कर सकते हैं. दैट इज 469-702-1272 उनका नंबर, या फिर उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए विच इज mytimeequity.com. एंड द व्यूज एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड इन दीज लाइव अनाउंसमेंट्स एज वेल एज द इंटरव्यूज दैट वी डू हियर ऑन आवर शोज आर पेड एडवर्टाइजमेंट्स एंड डज नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट द ऑफिशियल व्यूज ऑफ द रेडियो स्टेशन नॉर द आरजे.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: Don't touch that dial. Keep listening.

0: सरफरोश फिल्म से सुन रहे थे आप ये गज़ल, जो कि जगजीत सिंह जी ने गाई, निदा फजली साहब ने इसको लिखा था, और ओरिजिनली ये जो गज़ल थी, ये जो कंपोजर्स थे वो भूपेंद्र सिंह से उन्होंने गवाई थी, लेकिन जो मेकर्स ऑफ द फिल्म थे वो जगजीत सिंह से गवाना चाहते थे, और फिर ये सुना आपने जो कि बना। वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है।
10: प्लान या होप?
9: मतलब है
10: प्लान, मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
9: ओके, तो मेरा वाला होप है।
10: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं।
9: क्यों?
10: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
11: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट wealthtactic.com।
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
14: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
15: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
16: मामू, देखो क्या हो गया।
17: ओ, क्या हो गया?
16: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
17: ओए, जर्मन का कमाल है।
16: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
17: ओए, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 9726906623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
18: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
19: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार,
18: खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
19: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
20: कितने आदमी थे?
21: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

फिल्म बागी से सुन रहे थे आप ये गाना। एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ, सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण। वो 90s का बॉलीवुड लेकर हाजिर हुई हूँ और बागी फिल्म जो कि 1990 की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, अ रेबेल लव स्टोरी जो मतलब एब्सोल्यूट क्लासिक कल्ट बन गई थी जी। ये सलमान खान की जब फिल्मोग्राफी हम देखते हैं तो उसमें बागी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, बिकॉज ये वो टाइम था जब बैक टू बैक सलमान खान की सारी फिल्म हिट हो रही थी। और मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये जो फिल्म थी बागी, इसका सारी जो कहानी का आइडिया था फॉर द फिल्म दैट वाज पिच्ड बाय सलमान खान हिमसेल्फ, तो आइडिया सलमान ही लेके आए थे एंड दैट्स हाउ बागी केम इनटू बीइंग। नगमा थी सलमान के साथ, वो टाइम भी था जब सलमान सारी नई लड़कियों के साथ काम करते थे और जो भी न्यू हीरोइन सलमान के साथ काम करती थी वो सुपरहिट हो जाती थी, क्योंकि सलमान की मूवी सुपरहिट हो जाती थी तो रातों रात बन जाती थी वो भी स्टार। तो ये एक छोटा सा किस्सा फिल्म बागी का आपके लिए। और अब अगला गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में, मुझे इनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है और शाहरुख खान पर जब अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ यू नो डाली जाती है तो ऐसा लगता है जैसे अभिजीत नहीं शाहरुख ही गाने, मतलब Made for each other है अभिजीत और शाहरुख की आवाज की जोड़ी।

फिल्म बादशाह से सुन रहे थे आप ये गाना, और बादशाह फिल्म में हमें नजर आए शाहरुख खान और साथ ही साथ ट्विंकल खन्ना। वैसे मैं आपको बताऊं कि बादशाह फिल्म जो है वो काइंड ऑफ लूजली बेस्ड थी एक हॉलीवुड फिल्म की, जो कि 1995 में रिलीज हुई थी, एंड द नेम ऑफ द मूवी वॉज निक ऑफ टाइम, और इसमें हमें नजर आए थे जॉनी डेप। वैसे निक ऑफ टाइम वॉज नॉट अ बिग हिट, बट आई एक्चुअली रियली लव्ड निक ऑफ टाइम, एंड स्पेशली ये वो टाइम था जब जॉनी डेप वॉज एट हिज पीक, एंड इट वॉज सच अ गुड मूवी। बट आई डोंट नो क्यों क्रिटिक्स को निक ऑफ टाइम कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी 1999 में ये मूवी बादशाह रिलीज हुई, विच वॉज वंस अगेन लूज्ड ऑन दैट स्टोरी ऑफ निक ऑफ टाइम, जिसमें शाहरुख खान थे, ट्विंकल खन्ना थी, और स्टोरी कुछ ऐसी ही थी आधी मूवी के बाद जो कि इधर उधर की कहानी है कि एक बच्ची किडनैप होती है और उस बच्ची को छुड़ाने के लिए शाहरुख खान को जॉब दी जाती है टू किल द प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या जो भी वहाँ के होते हैं चीफ मिनिस्टर, और फिर वो कहानी ऐसी चलती है एग्जैक्टली द सेम एज निक ऑफ टाइम। तो ये तो हुई छोटी सी बात आपके लिए बादशाह की, और अब आपके लिए लेकर आई हूँ एक गिव अवे। इंडिया बाजार जो कि फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है, आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल ग्रोसरी हैपर। अगर आप फोर्ट वर्थ में रहते हैं, केलर में रहते हैं, हर्स में रहते हैं, हैसलेट में रहते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू गो विन दिस एंड गो एंड पिक अप योर ग्रोसरी हैम्पर। लेकिन इफ यू आर अ विनर, यू विल हैव टू गो टू द फोर्ट वर्थ लोकेशन ऑफ इंडिया बाजार एंड पिक दिस ग्रोसरी हैम्पर। सो कीप दैट इन माइंड प्लीज। और अगर आप पिछले एक महीने में फनेजिया के किसी भी शो पे ये गिव अवे जीत चुके हैं, तो एक महीने रुक जाइए, बिकॉज यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ। वैसे तो आप जानते हैं कि इंडिया बाजार इज अ प्लेस जहां आपकी तमाम डेली देसी एसेंशियल नीड्स जैसे कि ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स, सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिलता है। सो जरूर विजिट कीजिए इंडिया बाजार। और अब चूंकि हम वो 90s के बॉलीवुड में हैं, और जो अगला गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूं, दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम वन ऑफ द वेरी पॉपुलर मूवीज ऑफ दैट टाइम। और जिस गाने को अब आप सुनेंगे, मुझे आपने ये बताना है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है और इस मूवी के लीड स्टार्स कौन थे, यानी कि हीरो और हीरोइन कौन थे। 972-235-5555 is the number to the studio. You have to name the movie and the stars in the movie.

जी हाँ, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। ये गाना मुझे जब रिलीज हुआ इतना ज्यादा पसंद था। इट वॉज सच ए रोमांटिक मेलोडी। और सैफ अली खान और रवीना टंडन के दरमियान इस गाने को पिक्चराइज किया गया। ऑल दो इस फिल्म के जो स्टार थे वो मेन थे सनी देओल, बिकॉज पहले रवीना और सनी की जोड़ी बनी और फिर वो गायब हो जाते हैं मंजर से, और फिर सैफ आते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है, और फिर क्या होता है यही तो कहानी है। मूवी का नाम था इम्तिहान, जो कि आपसे मैंने सवाल पूछा था, स्टार्स बताइए और मूवी का नाम बताइए। इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ की तरफ से ये ग्रोसरी हैम्पर आपके लिए आया था। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी कि 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है इंडिया बाजार, जो फोर्ट वर्थ की लोकेशन का आपसे बात हो रही है। और आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे हमें फोन कॉल्स आए, एक्साइटमेंट में मैंने ताली जरा जोर से बजा दी, तो बहुत सारे फोन कॉल्स आए। लेकिन आज के जो हमारे लकी विनर हैं, आप ही की लक फैसला करती है, और लकी हैं विनर है हमारी राया रियानी। राया कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे। आपको हमें दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ पे पहुंचाने के लिए। फिर आपके पास 5 से 6 दिन का टाइम है टू गो टू इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ लोकेशन एंड अवेल योर ग्रोसरी हैम्पर। कोई आपको फोन नहीं करेगा जी, आपको खुद जाना है 2 दिन बाद और अपने इस ग्रोसरी हैम्पर को अवेल करना है। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का। इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज फन एशिया आपके लिए लेकर आता है। मेरे पास भी एक और गिव अवे लाइंड अप है आपके लिए, वो लाऊंगी अराउंड 4 बजे या 3:30 के बाद आपके लिए एक और गिव अवे लेकर आऊंगी। बने रहिए, सुनते रहिए, दिस इज 104.9 FM फन एशिया रेडियो। मैं हूं किरण।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
1: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hain. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutton. Rich, bold, no compromises.
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
3: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया.
3: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-772. दैट्स 972-863-772.
5: विजिट www.sanadainc.com टुडे.
6: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
7: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
6: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
8: इस शहर को हुआ क्या, कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
1: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
10: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी.
11: कॉफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डक्ट्स मे बी टू ब्लेम, एंड क्लॉग ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर्स. डक टाइम रिमूव्स डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एंड लिंट, गिविंग यू क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ, एनर्जी सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड. सर्विंग द DFW एरिया एंड 15 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद CSIA सर्टिफाइड टेक्नीशियंस एंड फ्री एस्टिमेट्स. फन एशिया लिसनर्स गेट $100 ऑफ डक्ट क्लीनिंग प्लस फ्री ड्रायर, वेंट क्लीनिंग एंड सैनिटाइजर विद सर्विस. कॉल जीतू पटेल at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Ducktime.
12: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
13: Call the SBA loan experts.
12: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
13: Call the SBA loan experts.
12: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
13: Call the SBA loan experts.
12: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
15: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
14: सच में? सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
4: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

मूवी आर्मी से सुन रहे थे आप ये गाना श्रीदेवी और शाहरुख खान पे पिक्चराइज्ड। और अब आगे बढ़ रहे हैं जी। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको एक बार फिर वेलकम करती हूँ। आप सुन रहे हैं 90s का बॉलीवुड ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण, और लेकर आई हूँ आपके लिए कॉन्वर्सेशन कॉर्नर ब्रॉट टू यू बाय रेड हॉट चिली पेपर। सबसे पहले तो ये कि रेड हॉट चिली पेपर की 3 लोकेशंस इस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, रिचर्डसन, मेकिनी एज वेल एज एलन। फ्रिस्को इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस गिव अवे। आपके पास मौका है जीतने का चिली चिकन, ड्राई चिली चिकन, या फिर चिली बेबी कॉर्न, या फिर बटर चिकन, या फिर चिकन मक्खन वाला। इफ यू आर अ विनर यू कैन विन एनी वन ऑफ दीज 4 डिशेस फ्रॉम रिचर्डसन, मेकिनी या फिर एलन लोकेशन। और कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में आपसे बात क्या होगी जी, 90s के दौर के हम गाने प्ले कर रहे हैं और वो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज वापस ला रहे हैं, तो मुझे आप कॉल करके बताइए कोई मजे की कहानी 90s के दौर की, जैसे आपने कोई कैसेट खरीदी और उसकी रील टूट गई। याद है ना आपको वो कैसेट खरीदने के जमाने, तब ये सब तो हमारे पास होता नहीं था, सोशल मीडिया या यूट्यूब, तो कैसेट्स खरीदा करते थे और उसे ही राइट लेफ्ट करके चेंज किया करते थे, 5 गाने इधर तो 5 गाने उधर। कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी मीठी याद शेयर कीजिए 90s के दौर की, जो फिल्मों से रिलेटेड हो या गानों से रिलेटेड हो या फिर कोई भी और। 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर, फोन उठाइए और मुझे अभी अभी कॉल मिलाइए।

ऑल राइट, फोन कॉल्स का सिलसिला इतना लंबा चल रहा था कि जो है आपको मैंने इस म्यूजिक पे डाल दिया. अच्छा, सबसे पहले आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. और रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से ये गिव अवे आया था आपके लिए. और आज की जो हमारी लकी विनर हैं वो हैं शशि सिंह. शशि, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. आपका नाम और नंबर हम दो दिन में अराउंड पहुंचाते हैं रेड हॉट चिली पेपर, रिचर्डसन मिकिनी या एलन लोकेशन, एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 डेज टू गो इन your dish. तो शशि की स्टोरी इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. द स्टोरी इज 1990s में जब शशि आ रही थी यहाँ, तो उनके सूटकेस में अराउंड 150 कैसेट्स थी, जो कि कस्टम पे या जो चेक करने वाले होते हैं एयरपोर्ट पे, उन्होंने रोक लिया और उन्होंने कहा, भाई ये क्या है, तो आप क्या बेचने लेके जा रही हैं इन्हें? तो उन्होंने कहा, नहीं, ये तो मेरे समातों के प्लेजर के लिए है, हमारी कैसेट्स हैं ये. तो दैट इज हाउ द स्टोरी गोज. लकीली उस बंदे ने जाने दिया उन कैसेट्स को, और फिर वो बहुत लंबे अरसे तक कैसेट्स उनके पास रहीं. ऐसा सिर्फ एक स्टोरी नहीं है शशि की, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं. मैं भी अपने साथ बहुत सारी कैसेट्स जब आ रही थी तो लेकर आई थी, बाद में तो वो सब रिडंडेंट हो गई और टाइम चेंज हो गया जी. अब तो ना कैसेट्स, ना सीडीज, ना कुछ, बस अब तो स्पॉटिफाई और वो कान में लगे रहते हैं बच्चों के, और वही चलता रहता है, और हम लोग यूट्यूब से बाकी बहुत कुछ देख लेते हैं. थिंग्स हैव चेंज्ड, जमाना, माहौल हैज चेंज्ड, लेकिन म्यूजिक का मोहब्बत, वो कहते हैं ना, द लव फॉर म्यूजिक नेवर चेंजेस.

थैंक यू सो मच कमलेश आपकी कॉल का और अपनी 90s की कैसेट्स की म्यूजिक की वो कहानी शेयर करने का कि किस तरह से यू नो फ्रेंड्स के घर जाके कैसेट्स में रिकॉर्डिंग की जाती थी. और याद है ना आप सबको कि एक टेप रिकॉर्डर होता था जिसमें एक लाल बटन होता था, जिसके पास वो लाल बटन वाला टेप रिकॉर्डर होता था वो बड़ा बंदा, उसके बड़े दोस्त बनते थे क्योंकि उस लाल बटन से रिकॉर्डिंग हुआ करती थी. और अगर दो साइडों वाला टेप रिकॉर्डर के राइट पे डल जाए और लेफ्ट पे वो प्ले हो और लेफ्ट पे रिकॉर्ड हो जाए तो वो तो फिर सोने पे सुहागा. ऐसी कितनी मेमोरीज और कितनी स्टोरीज हैं जो आई एम श्योर आपके पास भी हैं और मेरे पास भी हैं. और ये सारा हम आजकल चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, टाइम चेंज हो गया है बहुत सारे, तो अब वो वैल्यूज वो मतलब आजकल के बच्चों को वो पता ही नहीं कि हम किस किस तरह से कैसेट्स खरीदा करते थे और पैसे जमा किया करते थे और फिर उन कैसेट्स को खरीदने के लिए जद्दोजहद करते थे और कई बार जो है वो अपने पसंद के गाने रिकॉर्ड करने के लिए उनको दे के आया करते थे कि भाई इसको रिकॉर्ड कर दो और उसके भी पैसे दिया करते थे. सो मच मोर, सो मेनी मेमोरीज दैट आर रिलेटेड टू द वो 90s का बॉलीवुड.

0: कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं होता, लंबे अरसे तक उनका जवाब ढूंढना पड़ता है, और वैसे ही कुछ सवाल लाजवाब हो तो ही बेहतर होते हैं। इसी थॉट के साथ हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ। मैंने प्यार किया से ये गाना आप सुन रहे थे। ये एक ऑफ कोर्स एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें खूबसूरत अदाकारी सलमान खान और भाग्या शीरी, ऐसे आइकॉन्स बने सलमान और भाग्या कि आज तक उन्हें याद किया जाता है। बट मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Sunita, tumhare bete ke marks kafi improve hue hain recently.
9: Haan, bas thoda right guidance mil gaya hai.
8: Same teacher, same school, phir bhi mera beta struggle kar raha hai.
9: Different school ka nahi hai, concept clarity ka hota hai.
10: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia, get $100 off your first month.
11: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
12: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
13: Mere kal wale khane mein dosa, aane wale khane mein dosa.
14: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
15: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
16: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
17: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
18: इट्स लॉसन।
17: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
18: इट्स लॉसन।
17: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
19: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
2: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com.
6: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
15: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
6: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
15: फूडिस्तान in Aubrey, everything they see, one place,
18: वन वाइब।
20: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
21: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
20: नहीं।
21: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
20: नहीं।
21: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
20: वो भी नहीं।
21: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
22: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
23: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
24: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Funasia Radio.

20 more minutes of वो 90s का Bollywood right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. मैं हूँ किरण आपके साथ और रहती हूँ Monday to Friday, यानी के पांचों दिन हफ्ते के 2:30 से 5 बजे तक. और ये जो गाना अब आपके लिए प्ले हो रहा है, this is specially going out to Safi. Safi, enjoy.

पिछले 13 साल से जी टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक इज प्राउडली सर्विंग द कम्युनिटी और अब दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन. Introducing Lenoxy Medical. Ji haan, founded by Dr. Mandeep Acharya, Lenoxy Medical brings primary care, isi ke saath urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scan, cardiac diagnostic aur Himalayan Med Spa services bhi isi under one roof available hai aapko. To ab aapko kahin jaane ki zarurat nahi hai ki blood test karane yahan jana hai, CT scan karane wahan jana hai, x-ray karane yahan jana hai. Sab kuch aapko ek hi chhat ke niche milega aur jo sone pe suhaga baat hai wo ye ki it is open 7 days a week from 8 AM till 8 PM aur appointments lene ki bhi zarurat nahi hai. Agar aapne nahi लिया, नो प्रॉब्लम, वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड. तो व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर? Lenoxy Medical जो कि फ्रिस्को में लोकेटेड है, आपके लिए मौजूद है. इट इज पैशनेट टू सर्व यू. गिव देम अ कॉल और यू नो विजिट देम विद ऑल योर मेडिकल नीड्स.

आपने डेफिनेटली ये गाना आजकल की फिल्म में तो जरूर सुना होगा, एक रीमिक्स इसका डेफिनेटली आया है, लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल आप सुन रहे थे, कोई जाए तो ले आए, 1990s की फिल्म घायल से लिया गया था ये गाना। घायल फिल्म इज डेफिनेटली वन ऑफ माय मतलब उस दौर की आप कह लीजिए 80s और 90s की फिल्मों में कुछ, जो आपको एक्शन फिल्म की बात की जाए तो मुझे घायल इज वन ऑफ माई टॉप लिस्ट मूवीज। उसके अलावा अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा घायल के बारे में बताती हूँ कि संजय दत्त वॉज द इनिशियल चॉइस ऑफ घायल, और जो प्रोड्यूसर्स थे, जो इनिशियल प्रोड्यूसर थे सुभा राव उनका नाम था, उन्होंने फाइनेंस करने के लिए इस मूवी को इसीलिए हाँ भरी थी क्योंकि उनको कंफर्म किया गया था कि संजय दत्त इस फिल्म में होंगे। लेकिन जब बाद में संजय दत्त को अप्रोच किया गया तो कुछ उनकी डेट्स का इशू आ रहा था जिसकी वजह से संजय हैड टू यू नो से नो टू द मूवी, और फिर सनी देओल को रास्ता मिला इस मूवी में आने का। लेकिन चलते चलते कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे उनके फाइनेंसिस के इशू शुरू हो गए और वो इस मूवी को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और तब राजकुमार संतोषी ने सनी देओल को बोला और सनी देओल ने जाके अपने फादर से रिक्वेस्ट की, धर्मेंद्र जी से, और धर्मेंद्र जी ने फिर इस फिल्म घायल को प्रोड्यूस किया विजेता, आई थिंक विजेता फिल्म्स के बैनर के अंडर, जी हाँ विजेता फिल्म्स के बैनर के अंडर, और फिर बनी घायल। सो दैट केम टू द रेस्क्यू फॉर द सन। अच्छा जो मैं बात कर रही थी आपसे कि एक और फिल्म जो 90s की तो नहीं है 80s की है, 1985 में ये फिल्म आई थी एंड आई एम स्टिल इन लव विद दिस मूवी एंड नेम ऑफ दिस मूवी इज मेरी जंग। इसके अंदर हमें अनिल कपूर और मीनाक्षी नजर आए, एक बहुत और अमरीश पुरी जी एक बहुत ही कमाल के रोल में अमरीश पुरी जी मौजूद थे, और अनिल कपूर ने जिस तरह लॉयर के रोल को अदा किया इस फिल्म में, आई जस्ट एब्सोल्यूटली आई डोंट थिंक के अभी तक मैंने कोई इतना ज़्यादा इतना मज़ा आता है मुझे मेरी जंग देख के। आप मुझसे आज भी दिखवा लो मेरी जंग तो मैं फ़ौरन बैठ के उसे देख सकती हूँ। एक छोटा सा किस्सा मेरी पसंद की फिल्म का ये भी।

वो तो गीत गाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी जगह एक ऐसी रेस्टोरेंट का बताऊं जहां बिल्कुल घर जैसा खाना मिलता है, आज आपका खाना पकाने का दिल नहीं कर रहा, कोई अचानक से मेहमान आ रहा है, खाना तो अच्छा परोसना है लेकिन घर जैसा परोसना है पर कुकिंग का बिल्कुल मूड नहीं, तो तंदूरी फ्लेम गार्डन में लोकेटेड है। बेहतरीन नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स आपके जैसे कि सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स, रिच करीज, फ्रेश हॉट नान और भी बहुत कुछ अवेलेबल है तंदूरी फ्लेम पे। वंस अगेन दे आर लोकेटेड इन गार्लैंड, जरूर उन्हें चेकआउट कीजिए, खाइए जाके रेस्टोरेंट पे, केटर कीजिए, घर ले आइए, जो भी हो खाना आपको घर जैसा ही मिलेगा।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
4: Lekin aapke doctor ka appointment milna usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
5: Tarikh par tarikh.
2: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
4: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
6: Calculating. Rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
6: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
2: क्यों?
6: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
2: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
7: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
6: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
8: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
0: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस। आई एम नवनीता, योर ट्रस्टेड रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
2: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
9: लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
10: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: With your

भाई क्या ऑलरेडी बॉयफ्रेंड आई डोंट माइंड मामा फेस बेस लिप्स हिप्स सब सुपर फाइन मामा शादी वादी करें फिर बच्चे करें नाइन मामा ए तू भी दे दे थोड़ी लाइन मामा।

0: शुभ बॉय बादशाह।
1: Afternoon drive time with Suneri Kiran सुन रहे हैं आप। This is 104.9 FM Fun Asia Radio। आधा घंटा मेरा और आपका अभी एक साथ मौजूद है। Every day Monday to Friday मैं आपके साथ रहती हूँ 2:30 PM to 5 PM और लेके आते हैं आपके लिए a new flavor। आज हमने 90s के Bollywood को कवर किया। अब I'm going to play some blockbuster beats for you because it is time now to give you currency, weather, traffic, gold price and so much more that I always have lined up for you। तो weather के साथ शुरू करते हैं जी। आज Thursday, June 25th, 4:38 PM in the studio. Aur city of Makini mein is waqt hai 89 degrees. However, it feels like 94 right now. Din raha mostly sunny with a slight chance of sprinkles. Kahin idhar udhar bunda bandi hui but not too much. Highs in the lower 90s. Jabki sham rahegi mostly clear in the evening, then becoming mostly cloudy. Lows in the mid 70s. Pollen count aaj ka 5.4 tha, which was medium. Grass and oak is what is bothering where pollen is concerned. Jabki UV index is extremely high. Once again, it is 11. To agar aap bahar nikal rahe hain, to ek to aap hydrated rahiye aur dusra सनस्क्रीन्स अपनी जरूर हैंडी रखिए। और साथ ही साथ आपको बताते चलें जी, आज का सनराइज हुआ 6:18 सुबह पे 6:18 AM, जबकि आज का सनसेट होगा 8:39 PM। That was your weather forecast। और अब जब हम इस गाने के बाद वापस आएंगे तो आई विल टेल यू द करेंसी अपडेट कि US डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है।

एंड विद दैट इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द करेंसी अपडेट. यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो सबसे पहले तो जी अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो इस वक्त ट्रेड कर रहा है 0.87 पे, British pound 0.75 with respect to one US dollar, jabki Indian rupee is right now at 94.72. Canadian dollar 1.41 pe trade kar raha hai, jabki Pakistani rupee 277.61 Pakistani rupees are trading for one US dollar. Nepali's rupee 151.63 pe stand kar raha hai, jabki Bangladeshi taka 122.84 Bangladeshi takas are trading for one US dollar. Abhi aapke finance mein gold prices baki hain, but that will come after this song.

और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट लेकर आई हूँ थर्सडे जून द 25th 4:47 PM इन द स्टूडियो एंड अकॉर्डिंग टू goldprice.org गोल्ड प्राइस पर आउंस है इस वक्त $4,027.07 जबकि 1 ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $129.47 कल की निस्बत 1 ग्राम सोने की कीमत में $1.17 का इजाफा हुआ जबकि 1 आउंस सोने की कीमत में $36.42 का इजाफा देखने को मिला But that's pretty much all that I have for you where your finance matters. इस गाने के बाद जब हम वापस आएंगे तो I will bring you the traffic update.

एंड विद दैट इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द ट्रैफिक अपडेट. डेफिनेटली आपका आफ्टरनून ड्राइव टाइम शुरू हो चुका है और अगर आप कहीं जा रही हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो देयर इज अ कोलिजन दैट आई कैन सी ऑन 35 वेस्ट टूवर्ड्स FM 407 नॉर्थ बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड. लेकिन दिस वॉज रिपोर्टेड अबाउट 50 मिनट्स अगो, सो होपफुली क्लियरिंग अप ऑलमोस्ट हो गई होगी. सो वी आर होपिंग कि बहुत जल्दी यहां से आपको सारा क्लियरिंग अप, सारा जो ट्रैफिक जैम है वो हट जाएगा. ऑल्दो द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड ऑफ हाई सिवेरिटी. इसके साथ एक डिसेबल्ड व्हीकल नजर आ रही है विच इज एट US 75 टूवर्ड्स नॉक्स हेंडरसन साउथ बाउंड, जिसकी वजह से वन लेन इज ब्लॉक्ड. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर ट्रैफिक इज कंसर्न्ड राइट नाउ on the roads of Dallas.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है. ये वाला बहुत हैवी है. और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
9: तो पहनती क्यों नहीं हो?
8: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेशन टाइप.
9: तो रोज वाला ले लो.
10: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane, is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
11: Hello, Texas Parivar. Where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
12: Aaja meri gaadi mein baith ja.
13: Baith jaau? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
14: Wo thoda overheating tha.
13: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग. और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
13: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
15: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
13: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
15: वेट, व्हाट?
16: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
17: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
16: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
18: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
19: Excuse me. It's called being loyal.
18: It's called being predictable.
19: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
18: And what's so special at Neon Cactus?
19: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
18: Not bad.
19: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
18: Okay, this I didn't expect from you.
19: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
20: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
21: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
20: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
21: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
22: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
23: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद वही भाव श्री अयोध्या भवन में ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को
0: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक
23: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग ओपन डेली फ्रॉम 7 AM लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो श्री अयोध्या भवन वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी
1: छोटा सा मेरो मदन गोपाल
2: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhinduTemple.org. Jai Shri Krishna.

This part of the show is brought to you by AG FinTax. अगर आपने अभी तक अपने taxes नहीं किए हैं तो भैया जी अगर extensions file कर चुके हो मेरी तरह then AG FinTax is the place you need to go to क्योंकि they will maximize your tax benefits and minimize your tax liability. उसके साथ साथ they also give you services like you know your retirement plans, कैसे financial growth होती है. They have certain tools that can help you grow in whatever your vision is, especially you know as you grow older. आइडियली मेरा प्लान तो ये है कि जब रिटायरमेंट हो जाए तो हम भैया जितने पैसे बनाते हैं उतने तो होने चाहिए ना मंथली खर्चे के लिए. तो बस इस तरह के कुछ प्लान्स आपको अवेलेबल हैं विद AG FinTax. मेक श्योर यू विजिट द वेबसाइट फॉर मोर इन्फो. AGFinTax.com इज दैट वेबसाइट फॉर यू. एंड जैसे मैंने कहा योर फेथ विल कैरी यू थ्रू द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स. तो कभी भी घबराइए मत. थिंग्स आर हर चीज़ जो है ना वो टेम्परेरी है. खुशी थोड़े टाइम की होती है, फिर गम ने आना है, गम आएगा वो भी जाएगा, फिर खुशी आएगी. दिस इज द प्रोसेस एज इट गोज. ओनली इन द डार्कनेस यू कैन सी द स्टार्स. सो अगर कहीं लगे कि जिंदगी ज्यादा डार्क है तो कोई बात नहीं यार, ऊपर तारे देखो एंड लेट योर टाइम कम एज वेल. नाउ टेकिंग यू टू अ ट्रैक विच वी ऑल लव. एंड एक पब्लिक सूचना, वाहन चलाते समय सौंदर्य दर्शन ना करें. ध्यान से दोबारा सुनिए, वाहन चलाते हुए सौंदर्य दर्शन ना करें वरना देव दर्शन की उम्मीद है.

0: टेकन फ्रॉम द मूवी जिसका नाम था जी परदेश, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूवी, शाहरुख खान साहब एंड इसमें कौन सी एक्ट्रेस थी साथ में, ये थी महिमा चौधरी जिनका डेब्यू हुआ था जी दिस मूवी के साथ। दिस मूवी के साथ हमारी इंग्लिश मिक्स रहती है, व्हाई नॉट, वी आर इन अ मिक्स्ड कंट्री, तो थोड़ा सा मिक्सचर लेके चलना चाहिए, और स्पेशली जब शाम को कॉर्न मिक्स हो जाए ना, थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स वाला मिक्स, मूंगफली हो उसमें, थोड़ा काजू, कभी कभी नारियल भी हो तो अच्छा लगता है। खैर उसका प्रोग्राम आप देख लीजिए, चाय कॉफ़ी वट एवर इज़ योर प्लेजर, प्लीज़ उसको इन्जॉय करिए, बिकॉज शाम में जो चाय की चुस्की है ना उसका मज़ा अलग है। मैं नहीं लेता पर मेरी मम्मी ने बड़ी चाय बनवाई है मेरे से और खूब मज़े से चुस्कियाँ ले लेके पी है। एक आदमी की शादी हो रही थी और लड़की कहती है कि घबराओ मत डार्लिंग, हमारी शादी के बाद ना हम सारे दुख जो है ना वो बांट लेंगे बिल्कुल, कहता है बट बेबी विल बी हैप्पी। वो कहती मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ दोस्त।
1: बड़ा चासी के पहला प्यार हुंदा फिर व्या।
2: हुण तू किदे नाल प्यार करना?
1: थोड़े नाल। अगले जन्म च की पता केड़ा पशु जानवर बन जाना।
2: ए ता है, उना च व्या नहीं हुंदा, उना च कल्ला प्यार हुंदा।
3: जानवर किसे थां दे।

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Heere moti main chahu.
3: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
4: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
5: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
4: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग। अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स। जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
11: हाँ।
10: घर रिलोकेट करनी है?
11: हाँ।
10: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
11: हाँ भाई हाँ।
10: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
12: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
13: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
14: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
13: जहाँ हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
15: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो।
16: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
17: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
18: इतना सब और प्राइस?
17: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा।

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे स्वीट 205 फ्रिस्को।
2: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
1: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
3: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funnacious Radio.

किसी से ना उम्मीद लगाने से अच्छा है, किसी से उम्मीद लगाने से बहुत अच्छा है कि आप ना मुल्तानी मिट्टी लगाओ, रंग भी गोरा होगा और दिल को भी सुकून मिलेगा ब्रदर। बंदा ये बिंदास है। 5:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। मुल्तानी मिट्टी लगाओ, दिल दुल लगाए क्या करना है, और किसी से उम्मीद लगाए क्या करना है यार, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी, कभी कभी हल्दी का लेप लगाओ, उस वो भी अच्छा रहता है। और ये जो लोग कहते रहते हैं ना कि लेडीज़ मेकअप लगाती हैं, नहीं मुझे एक बात बताओ है, आप लोग शेव करते हो, उस तरह करते हो, अपने आप को स्मार्ट रखते हो, लड़कियों के लिए मेकअप बना है तो वो मेकअप लगाएंगी और चटनी लगाएंगी। इट इज फॉर द लेडीज, फॉर द मेकअप, लेट देम यूज, लेडीज प्लीज गो अहेड, बाय दैट फाउंडेशन, बाय दैट मस्कारा एंड दैट वो जो ब्रश आता है ना स्पेशल, जो ब्लश करने के लिए, जो भी आपको चाहिए लो यार। उसके बाद हमारे जैसे कह रहे होते हैं, ये जो आपके साथ बैठे हुए ना, यही कह रहे होते हैं, बड़ी हॉट लग रही थी यार बंदी, बड़ी अच्छी लग रही थी, हाँ तो लगने दो ना। होते इसके तो खारी तलवार है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। वेलकम बैक टू द बिंदास शो। और साथ साथ ये बता दूं कि लोग अगर कहते हैं ना कि ये आशीर्वादों में, दुआओं में कोई असर नहीं होता, बड़ा असर होता है दुआओं में, बिल्कुल होता है। अब आपने ये वर्ड सुना होगा, सदा सुखी रहो, ठीक है, ये आशीर्वाद में बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स, सदा सुखी रहो। अब ये जो है ये एक्चुअल में काम करता है। आपने देखा होगा आपके कई दोस्त हैं जिनकी शादी नहीं हुई क्योंकि उनको आशीर्वाद मिला था सदा सुखी रहो। ऑलराइट, टेकिंग इट टू द नेक्स्ट ट्रैक। और इसके साथ साथ दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय आवर ड्राइव टाइम स्पॉन्सर, जिनका नाम है जी द वन एंड ओनली अटॉर्नी ओमर ख्वाजा। एंड इफ यू आर एवर इन्वॉल्वड इन अ कार एक्सीडेंट, रैक या कोई भी ऐसी तकलीफ आपको सताए तो आप उनको कॉल कीजिए, या उनका नंबर अपने पास ना भी हो तो उनका वेबसाइट हैंडी रखिए, बड़ा सिंपल सा है, याद करना attorneyomar.com, ही विल फाइट योर केस, ही मेक श्योर कि आपको जो भी डिजर्विंग कॉम्पनसेशन है वो मिले, साथ साथ आपके मेडिकल एक्सपेंसिस, गाड़ी का रिपेयर शिपेयर सब कुछ करवाएंगे। अटॉर्नी ओमर, दैट्स द नेम यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज कभी भी मुसीबत आए तो हमें पता नहीं होता जी कब आ जाती है, बस एक दिन ऐसी शादी हो जाती है। सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा,

0: बट इफ यू हैव अ बिजनेस एंड योर हार्ट इज रेसिंग कि अगर मेरा बिजनेस ग्रो करने के लिए मुझे टाइम कम है एंड यू हैव डेडलाइंस टू मीट, यू हैव अ विजन ऑफ स्टार्टिंग अ फ्रेंचाइज बिजनेस, देन डोंट वरी, ये जो रेस आपके दिल की धड़कनों की है इसको शांत करेंगे विद शाहिद पंजवानी हु इज विद द SBA लोन एक्सपर्ट. देयर जॉब इज टू गेट यू अ लोन एंड द वन दैट बेस्ट फिट्स योर बिजनेस. नाउ क्या क्या ऑप्शन हैं, कैसे होता है उसके लिए, इट्स नॉट गोना बी मी, इट्स गोना बी मिस्टर शाहिद पंजवानी विद द SBA लोन एक्सपर्ट्स. हिज फोन नंबर इज 8177863388. Let me call him right here on Fanasia. Good evening, Shahid Bhai. How are you?
1: I'm doing great. Good evening to you and all listeners.
0: Thank you, thank you, thank you, sir. First of all, please let our listeners know कि you know business loan लेते हुए हर बंदे का एक सवाल होता है और वो ये होता है कि यार मेरे को business तो लेना है, loan तो लेना है, but मुझे क्या ज़रूरत की चीज़ क्या है from my end? Is it my credit score which is more important? Is it the collateral that will guarantee my loan? Is it the cash flow of the business that will get me the loan? इन सब का क्या जवाब है शाहिद साहब?
1: ये जो इसका जो जवाब है थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा लिसनर्स को. मोस्ट पीपल थिंक क्रेडिट स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गेटिंग अ बिजनेस लोन. ज्यादातर 8 out of 10 पीपल व्हेन दे कॉल अस वी टॉक अबाउट लोन चाहिए, ये अमाउंट चाहिए, ये पर्पस चाहिए, एंड देन दे आस्क क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए लोन लेने के लिए. व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट अबाउट द क्रेडिट स्कोर? एंड आई वुड लाइक टू लेट द लिसनर नो, जो इसको बिजनेस लोन चाहिए, डू नॉट वरी अबाउट क्रेडिट स्कोर. क्रेडिट स्कोर इज नॉट व्हाट द लेंडर इज लुकिंग फॉर. टॉप प्रायोरिटी है कैश फ्लो. जो लोन की पेमेंट जिसको करनी है वो आपका स्कोर पेमेंट नहीं करेगा, आपका कोलैटरल पेमेंट नहीं करेगा, वो आपके लोन की पेमेंट होगी बिजनेस के कैश फ्लो से. एक क्विक एग्जांपल, अगर आप एक बिजनेस खरीद रहे हो और आपकी महीने की पेमेंट $5,000 आनी है उस बिजनेस के लोन की, एनुअल पेमेंट इज $60,000, डज दैट बिजनेस हैव इनफ रेवेन्यू और द बॉटम लाइन के उस 5,000 की महीने की पेमेंट को सपोर्ट कर सके? सेम रूल अप्लाइज एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर जो लोन के लिए कॉल करते हैं कि वर्किंग कैपिटल चाहिए, एक्सपांशन के लिए पैसा चाहिए और मेरा स्कोर क्या होना चाहिए. डोंट वरी अबाउट द स्कोर. आप जितना लोन चाह रहे हो उसकी जो पेमेंट होगी, क्या आपके बिजनेस में सफिशियंट कैश फ्लो है? अगर कैश फ्लो है तो स्कोर 600 भी होगा चलेगा. कैश फ्लो ही नहीं है और आपका स्कोर 800 है तो वो स्कोर कोई फायदे का नहीं है. तो बॉटम लाइन नंबर वन, दैट डज नॉट मीन क्रेडिट स्कोर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट द डिसीजन मेकर. डिसीजन मेकर इज द कैश फ्लो.
0: Wonderful. 8177863388 is the phone number for Shahid Sahab. If you're looking for a loan, I am telling you, one person that can make it happen is Mr. Shahid Panjwani with SBA Loan Experts. 8177863388. This one especially going out to AD.

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
1: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
2: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
3: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
2: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
4: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
5: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
6: It's Lawson.
5: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
6: It's Lawson.
5: Daddy, what is the law?
7: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
8: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
9: Beta, 95% aaye?
10: Haan, mummy.
9: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
9: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
13: Aji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
14: India mein? To yahan jo friends aur relatives hain, wo kaise attend karenge?
13: यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में? सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
15: Welcome back to 104.9 FM FunAsia Radio, the Bindaas Show. To all the ladies out there, it's time for a beauty check. आपने अपने आप को शीशे में देखा? नहीं देखा तो जरूर देखिए. Looking like a wow. This is for all of you.

0: एब्सोल्युटली नचने दे एंड डिड यू लेडीज एक्चुअली टेक द टाइम टू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर। मेरी तरफ से जरूर देखिए यार, इतना काम इतनी मेहनत करने के बाद भी जो खूबसूरती है ना वो आपकी बनी रहती है ना। आपकी आंखों में जो खूबसूरती है सबसे ज्यादा जबरदस्त वो खूबसूरती है, क्योंकि आंखें आर द गेट वे टू योर सोल। तो अपने आप को जरूर एक पैट ऑन द बैक प्लीज फ्रॉम माई साइड दैट यू लेडीज आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बी दैट योर होम्स, बी दैट योर वर्क प्लेस, व्हेरेवर यू आर। आप लोगों का जो यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी है दैट इज वे बिगर देन वी मैन, एंड आई हैव नो शेम इन saying that। और ladies, अगर आप किसी एक problem से गुजर रहे हो which is a debt problem due to unplanned family expenses हो गए, and if you and your husband are having a tough time and इसमें थोड़ा सा कलेश भी हो रहा है कि यार payments आ रही हैं, there is a solution, you don't need to fight, and what is that solution? Well, let the masters go for it. Good evening Aman, how are you and why don't you tell our listeners how Ura can avoid the chick the kit pit in the family because of debt that is piling up?
1: Yeah, of course, फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार। सो दोस्तों, आज 25 तारीख हो गई जून की और कुछ ही गिने चुने दिन बचे हैं, ये महीना बाय बाय कहने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन जो गलती आपने पिछले महीने या पिछले साल से करते आ रहे हैं कि क्या मिनिमम पेमेंट भरते जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड उतरने का नाम नहीं ले रहे, तो आप अगले महीने वो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सिंपल, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाले चार्ज करते हैं मोर देन अ 40% इंटरेस्ट, जिसके कारण आपका क्रेडिट कार्ड कभी नहीं उतरता। ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड का कर्जा बल्कि इसके साथ साथ अगर आपके पर्सनल लोन्स हैं या गाड़ी जो ट्रक या कार आपकी रिपोजेस हो गई है वो, या फिर आपका कोई पर्सनल लोन है जो आप मिनिमम पेमेंट तो दे रहे हैं, जैसे रेनोवेशन के लिए कोई लोन लिया हो सकता है, यूरोप ट्रिप के लिए आपने लोन लिया हो सकता है, उस तरह के लोन्स जो हैं वो एक एक करके आपके सर पर खड़े हैं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि ना वो क्रेडिट कार्ड, ना वो लोन उतर रहे हैं, ना आपको नया लोन देने के लिए अप्रूवल दे रहे हैं, ना ही आपका क्रेडिट स्कोर बनने दे रहे हैं। तो फिर उसको मिनिमम पेमेंट दे के कौन सा गोल्ड मेडल की वेट कर रहे हैं? तो आपको चाहिए डेट सेटलमेंट प्रोग्राम की तरफ जाएं, क्योंकि ये बैंकरप्सी बिल्कुल नहीं है, ये सेटलमेंट प्रोग्राम है जिसके कारण आप अपना जो डेट जल्दी से उतार सकते हैं। सो कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, वंस अगेन 1-888-888-9914, और हमारी ईमेल है, माफ कीजिए, हमारी वेबसाइट है www.ura.org। लेकिन मिनिमम पेमेंट करते रहने से नहीं सोल्यूशन निकलेगा। मिनिमम पेमेंट से पहले अगर आप हमें कॉल करें तो आधे से ज्यादा कर्जा आप माफ करवा सकते हैं। सो कॉल टुडे

I just love the voice of this English singer from Sri Lanka, Yohani, who actually sang the original Manike Make Hite. And you know what? That song, even though you don't understand the language, jo actual original hai Manike Make Hite, I think it's just so beautiful that you don't understand the language, but phir bhi aap usko zabardast apne doston ke saath, especially gaadi mein na, let's say if it's raining and you're with a good company of friends, you will enjoy that track. That's why I say music never has boundaries. All right, I have a giveaway coming up, and this is from Panj Tara. छोले भटूरे जबरदस्त वाले जिसपे वो प्याज कच्चा और टमाटर कच्चा डाल के सर्व करके देते हैं. अगर आपको नहीं चाहिए आप कह सकते हैं, साथ में आप थोड़ा सा उस पर नींबू छिड़केंगे, अचार उसके साथ आता है जी, उसके साथ आप भटूरे खाएंगे. आप कहेंगे मारविन जी क्या करा दिया आपने, बस आप नैपकिन से वो तेल ना पूछना क्योंकि कोई फायदा होने वाला नहीं है, जैसा है वैसे इंजॉय करना. या इफ़ यू आर लाइक द हेल्थ कॉन्शियस, यू नो यू आर काउंटिंग योर कार्ब्स एंड ऑल दैट, फिर आप क्या करेंगे कि आप लेंगे उनका कुलचा, आलू कुलचा, उस पर आप ढेर सारा मक्खन डाल के उसको लेप के और साथ में एक बड़ा ग्लास कोक का मंगा लेना. ठीक है, अब डाइट पे हो ना तो वैसा कर लेना. ऑल राइट, एलन में लोकेटेड है. जीतने के लिए आपको मुझे सवाल का जवाब देना होता है. मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जो मुझे सबसे क्रिएटिव जवाब देगा उसको मिलेगा जी ये पांच तारा का गिव अवे. कंडीशन ये है, पहले आपने ये नहीं जीता होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर वन मंथ, एंड यू आर एबल टू गो टू एलन एंड एंजॉय दिस. अच्छा जी, अब आते हैं सवाल पे. सवाल ये है कि एक नॉर्मल इंसान को, यू नो जस्ट नॉर्मल मैन इन लाइफ, If he wants to know more about himself, जैसे कि कभी कभी अपने अंदर झांकना ज़रूरी होता है, to see what is right, what is good in you, to see the values, to see the negatives, क्या क्या गलतियाँ हैं, किस चीज़ में हम खराब हैं, किस चीज़ में हम अच्छे हैं. अगर इंसान ये करना चाहता हो, the males, not the ladies, अगर males ये करना चाहते हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए, what is the right way to look inside you and to know What is right about you? What are good things in you? What are bad things in you? कैसे होगा ये? Creative answer दीजिए और खाइए छोले भटूरे पांच तारा एलन के. आ जाइए calls के लिए. STD PCO booth खुल गया है 9722355555.

0: फॉर दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वन मोर टाइम, मैं ये पूछ रहा हूँ यार कि इंसान को कभी कभी यू नो सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए अबाउट देमसेल्व्स, एंड अगर एक इंसान यानी कि मर्द आदमी अगर अपने अंदर झांक के देखना चाहता है कि वो क्या अच्छा करता है, क्या बुरा करता है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, व्हाट आर हिज ट्रिगर्स, अगर ये एक आदमी ने करना हो, व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर हिम टू डू दैट, आपसे पूछ रहा हूँ सजेशंस. द मोस्ट क्रिएटिव आंसर गेट्स छोले भटूरे 5 तारा. All right, आजा वे आजा, कौन है मेरे साथ, करते हैं इनसे बात. गुड इवनिंग फनेजिया, हुज दिस?
1: हेलो, दिस इज मनप्रीत.
0: मनप्रीत जी, हाउ आर यू?
1: बढ़िया जी, बढ़िया.
0: वेरी गुड जी, बढ़िया रहो जी. मनप्रीत जी, दसो फिर क्या करना चाहिए ऐसे मर्द को जो ये करना चाह रहा है?
1: अपने बारे में अगर आपको अच्छाई जाननी है तो
0: नहीं, सब कुछ ये ना सोचे अच्छा
1: अंदर क्या क्या बुराई है.
0: नहीं, सुनो अच्छाई नहीं, सुनो सारा कॉम्बिनेशन, द होल थिंग अबाउट हिम ही वांट्स टू नो. ये कैसे पता लगे?
1: मम्मी और बीवी को साथ में बिठाएं और एक मीटिंग करिए.
0: मम्मी और बीवी,
1: सारा दूध और पानी का पानी हो जाएगा.
0: मम्मी और बीवी को बिठाओ. ओके मनप्रीत जी, आंसर नोटेड, थैंक यू फॉर योर कॉल. लेट्स सी हु डू वी हैव नेक्स्ट. गुड इवनिंग फनेजिया, रेडियो वॉल्यूम लो, योर वॉल्यूम अप. कौन बोल रहा है?
2: हाय, मैं सईदा बोल रही हूँ.
0: सईदा जी, कैसी?
2: पहले तो मैं ये पूछ रही थी कि आपने जी
0: कैसी हैं. हाँ पूछिए, आप पूछिए सवाल. तो मैंने पूछा,
2: ठीक हूँ.
0: अच्छा, सवाल मैंने पूछा
2: जी.
0: बताइए फटाफट जवाब.
2: नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि सिर्फ लड़कियों के लिए तो, और तो मर्दों के लिए तो नहीं है ये आप कह रहे थे ना?
0: नहीं,
2: मर्द बताएं.
0: मर्द नहीं, मर्द नहीं बताएं. बता मर्दी भी सकती है, बट बताना ये है कि आदमी को अगर अपने आप में जानना हो सारा कुछ, यू नो लेट टेक अ लुक इनसाइड एंड गेट टू नो हिम हिमसेल्फ मोर, वो क्या करना चाहिए?
2: तो बैठ के सोचना चाहिए.
0: खड़े होके नहीं सोचना है, सैयदी जी कह रही है बैठ के सोचना है. ठीक है जी, बैठ जाओ लड़कों, बैठ जाओ फटाफट साथ जहाँ पे भी. हाँ, गुड इवनिंग फनी जी, आप कौन बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, मारविन जी, मिहिर बोल रहा हूँ. क्या
0: मिहिर भाई, कैसे हैं?
3: बढ़िया है, घर जा रहे हैं, ड्राइव करके.
0: अच्छी बात है, अच्छी बात है. घर जा रहे हो, खुश हो?
3: अरे एकदम.
0: अच्छा फिर ठीक है. अच्छा अब बताओ क्या आंसर है सर, क्या करना चाहिए इंसान को?
3: ये सर बरसों से सदियों से चला आ रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसको शादी बोलते हैं.
0: अरे वाह, ये बात हुई ना, बस बिल्कुल सही बात है. शादी कर लो, शादी कर लो, तुम्हारी अपनी क्या, तुम्हारी अपनी क्या, तुम्हारे पूरे खानदान की जो आगे पीछे का हिसाब है वो सब कुछ मिल जाएगा. ऑल यू हैव टू डू इज गेट मैरिड. होल्ड कीजिएगा मेरे लिए आप. मिहिर भाई, यू आर इन लाइन. आई एम गोना टेक वन मोर कॉलर एंड सी हु डू वी हैव नेक्स्ट विद अस हियर. All right, here we go. Good evening, Faneja. Who's this? Hello,
4: this
0: hello.
4: is Arif Marvin. I listen to you a lot.
0: All right, Arif ji. बंदे को शादी कर ले सब पता हो जाएगा. अरे भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग एंड कीप लिसनिंग टू फनेजिया. आई एम चूजिंग मिस्टर मिहिर, जिन्होंने दिया जी मुझे जवाब शादी कर ले. एंड एग्जैक्टली मैंने जैसे कहा कि शादी कर ले भैया, तेरा ही क्या, तेरे पूरे खानदान का आगे पीछे का सब चिट्ठा तुझे मालूम हो जाएगा बालक.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
7: Ye set sirf shaadi ke liye theek hai. Ye wala bahut heavy hai. Aur ye kab pehna tha last time?
8: To pehenti kyun nahi ho?
7: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेशन टाइप,
8: तो रोज वाला ले लो।
9: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
10: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन. वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस. फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू. एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे. कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल. पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन. मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन your first visit.
11: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
12: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
12: कहाँ?
14: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
15: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब.
16: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है. हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस.
17: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है, अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं.
16: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
17: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
16: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे.
17: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
16: नंबर बोल जल्दी.
17: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com.
18: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश.
19: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
20: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद वही भाव श्री अयोध्या भवन में ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को
0: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक
20: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग ओपन डेली फ्रॉम 7 AM लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो श्री अयोध्या भवन वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी
21: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: यूएस में जो सिंगर है उसे रिहाना बोलो,
1: बिंदास बोलो जी, नाम अरविंदास बोलो, क्या हाल चाल DFW, सब ठीक ठाक, बैक एट द 6 o'clock आवर ऑफ योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, जिसका नाम है द बिंदास शो विद योर वन एंड ओनली द बंदा बिंदास मारविंदास, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट हर्ड एंड द मोस्ट फेवरेट रेडियो स्टेशन इन साउथ अमेरिका विच इज फन एशिया 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। हो चुके हैं जी 6:06, टुडे इज थर्सडे इवनिंग, जून की 25 तारीख, एंड 25 तारीख है जून की, समझ रहे हो ना। मौका मिला है तो क्यों ना मारो चौका बड़े भैया। दिस पार्ट ऑफ द शो ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ, दे आर लुकिंग फॉर डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट, एंड इफ यू आर इन द मेडिकल फील्ड लुकिंग फॉर अ चेंज, लुकिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, देन दे माइट बी द पीपल टू गो टू। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक रेज्यूमे भेजना है जी अपना, एंड दैट इज गोना बी एट देयर ईमेल एड्रेस विच आई एम शेयरिंग विद यू राइट अवे। पर आपको पहले ये बता दूं उनकी लोकेशंस बहुत हैं, दे हैव मल्टीपल लोकेशंस इन DFW। आप अगर एक जनरल फिजिशियन ढूंढ रहे हैं गो विद देम, उसकी वजह सिंपल है यार, दे स्पेंड 30 मिनट्स एट योर विजिट, दे आर नॉट लाइक दी यू नो फटाफट स्टीरॉयड का इंजेक्शन रिकमेंड किया, ये लो जी स्टीरॉयड खाओ और ठीक हो जाओ, दैट्स नॉट द केस, दे ट्रीट यू लाइक फैमिली, मल्टीपल लोकेशंस, एंड द रेज्यूमे दैट यू नीड टू सेंड विल बी passionhealthphysicians@gmail.com, दैट्स passionhealthphysicians@gmail.com, pediatricians, psychiatrists, endocrinologists, and doctors, they are looking for you. As they grow, they want to get more opportunities to you as well. So, get in touch with them. That is one name you remember, Passion Health Primary Care. Here we go with the next track. And uske saath wapas aake, I have some questions to ask you. And one of those questions that I wanted to ask you is, ki ye jo badtameezi hai na, badtameezi, agar iski biwi ho, to uska kya naam hoga? Kuch है आपके दिमाग में? खोलिए दिमाग की खिड़कियां, सोच के कुछ ना कुछ भेजिए हमारी तरफ। 972-235-55-55 इज द नंबर टू आर स्टूडियो।

ब्यूटीफुल ट्रैक, क्या बात हो गई डारस, मतलब आपके पास मेरी इस बात का जवाब नहीं आया। थॉट यू आर सो टैलेंटेड पब्लिक है अपनी, यार कुछ भी सोच लो, दिमाग की घंटी दौड़ाओ कि अगर बदतमीजी की शादी हो, ठीक है, बदतमीजी उसको आप समझ लो करेक्टर है, जैसे बदतमीजी एक है चीज़, आप समझ लो वो कैरेक्टर बन गया। अब जो बदतमीजी कैरेक्टर है, अगर इस कैरेक्टर की शादी हो तो इसकी बीवी का नाम क्या होगा, इतना सा सवाल है, अपनी तरफ से कोई दे दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, है? सोच के बताओ, बाकी मेरी इतना मतलब थिंक फ्रॉम द बॉक्स ऑफ द मार्विन्स माइंड, राइट। तो स्टूडियो का नंबर 9722355555। इफ बदतमीजी गॉट मैरिड, व्हाट वुड बी बदतमीजीज वाइफ नेम, सिंपल क्वेश्चन है, आस्किंग यार, इतना स्ट्रेस काय को ले रखा आपने।

0: असलम भाई, क्या है कहानी मेरे भाई? गुड इवनिंग फनीशिया, कौन बोल रहा है बेड़ू?
1: आशा बोल रही हूँ।
0: आशा, आशा जी कैसी हैं? सब ठीक है?
1: आशा
0: जी, अच्छा जी बताइए आशा जी, कि अगर ये बदतमीजी की शादी करा दें हम, तो बीवी का नाम क्या होना चाहिए इसकी?
1: मिसेस
0: बदतमीजी। चलो, ये मैंने, आपने नाम क्या बताया था अपना? आशा। आशा जी, मुझे आपसे इससे ज्यादा आशा थी, पर कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर योर कॉल। देखता हूँ और कौन है मेरे साथ। गुड इवनिंग फनीशिया, अब बता दो कौन बोल रहा है बड़ू?
1: सलमा।
0: अच्छा सलमा, यहाँ भी बड़ू नहीं निकला, सॉरी सलमा जी। कैसी हैं आप? सब ठीक है?
1: बस शुक्र
0: है, शुक्र है, शुक्र है। अच्छा सलमा जी, अगर बदतमीजी की शादी करा दें हम, तो क्या नाम होना चाहिए बीवी का?
1: मैडम बदतमीजी।
0: मैडम बदतमीजी, ये तो फिल्म का नाम लग रहा है ना सलमा जी, अच्छा लगेगा।
1: या आपने बोला कुछ भी बोल दें।
0: मैं देखो, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ।

0: एक फिल्म अगर आपको बताया जाए कि मैडम बदतमीजी फिल्म आ रही है, देखने जाओगे ना अगर नाम ही इतना इंटरेस्टिंग सा हो?
1: ऑफकोर्स
0: ना, मैं भी जाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। गुड इवनिंग फनेशिया, रेडियो वॉल्यूम कम, आपका वॉल्यूम ज्यादा, इधर इधर इधर भी तवज्जो कर ले भाई। नहीं भैया ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो कहीं और की ख्वाहिश में। पर बताइए जी, अगर बदतमीजी की शादी होती तो उसका व्हाट द नेम वी गिव? फनेशिया रेडियो, गुड इवनिंग रेडियो वॉल्यूम लो, योर वॉल्यूम अप, हेलो हेलो हेलो, मेरी तरफ भी सुन लो यार, रेडियो वॉल्यूम लो, रेडियो वॉल्यूम लो प्लीज। हाय गुड इवनिंग, हु इज दिस?
1: माय नेम इज रश्मि।
0: Your name is, your voice is very breaking. Am I on Bluetooth? Can you take me off that?
1: Rajni.
0: Rajni, Rajni. Kant kahe hain kahin aur?
1: Nahi, Chaudhary.
0: Nahi, Rajni nahi hai aapka naam. Has nahi hai. Meri ko aapki awaaz mein disturbance hai, ma'am. I have to let you go, but next one is good evening, Fanisha.
2: Hi, this is Suraj here.
0: सूरज बड़ू, फाइनली देयर इज अ बड़ू। सूरज भाई क्या हाल है?
2: बस बढ़िया, आप बताओ?
0: बस बढ़िया, हमारा भी ट्रक बढ़िया होगा, पूछता हूँ फोन करके इंडिया में ट्रक ठीक चल रहा है कि नहीं। बस बढ़िया हो सकती है तो ट्रक भी बढ़िया हो सकता है। खैर आप बताओ सूरज, अभी तो शाम हो रही है, आपका घर जाने का टाइम आ रहा है, सूरज का भी और आपका भी। अगर ये बदतमीजी
2: घर ही जा रहा हूँ,
0: बदतमीजी खुशी खुशी
2: जा रही है। आपका क्वेश्चन सुना मैंने, तो जैसे बोलते हैं ना कि आदमी को हमेशा बोला जाता है उसकी वाइफ को बोलने के लिए कि शी इज माय बेटर हाफ, तो बदतमीजी में से अगर बेटर निकालना हो तो इट वुड बी तमीज।
0: तमीज, अच्छा अच्छा अच्छा यार, कितने टेक्निकल हो आप। मुझे लगा बदतमीजी से अगर बैटर निकालना होगा तो बैटर निकाल के बदतमीज वाला डोसा बनाएंगे। मेरे को पर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का सर। आई एम गोना टेक वन मोर कॉलर एंड देन आई एम गोना गो बैक टू द म्यूजिक एंड टेल यू कि बदतमीजी की बीवी का नाम क्या होना चाहिए। गुड इवनिंग फनेशिया, हु इज दिस?
1: हाय, माय नेम इज रश्मि।
0: हाय रश्मि, यू वर द वन दैट कॉल्ड अर्लियर व्हिच आई थॉट वाज रजनी।
1: No. Yeah,
0: I thought it got disconnected. Yeah, I thought it was Rajni. That's why I asked where is Kant. Rajni Kant. All right.
1: Yeah.
0: So, Rush.
1: So, the answer for your question is Dil. Maybe Batamizi Dil.
0: Batamizi Dil will not be rhyming well. But I will take it into consideration. But, you know, what will actually it be, I'll tell you. So, if Batamizi ki shadi hoti and Batamizi ko hum shadi karwa dete, to biwi ka naam hota हद,
1: दिल,
0: हद हद हद, क्योंकि बदतमीजी की, बदतमीजी की हद होती है ना मैम। यस मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। उसका नाम हद होता क्योंकि बदतमीजी की हद होती है ब्रो। आज तो बदतमीजी की हद ही हो गई।

0: 18 years old Yuga, which is celebrating her brother's birthday, who turns 9 today. His name is Kiyansh. We'll talk more about them and their parents and Kiyansh being a tough boy on his birthday right after this short commercial break. Don't go anywhere. I'll be right back.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
5: मामू देखो क्या हो गया।
6: ओ क्या हो गया?
5: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
6: ओए जर्मन का कमाल है।
5: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
6: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
3: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
7: सेम टेस्ट से बोर हो गए? ट्राई समथिंग डिफरेंट। मैक्सिकन फ्यूजन ग्लोबल फ्लेवर्स, हैप्पी आवर्स, नियॉन कैक्टस फेयरव्यू, मैक्सिकन बट डिफरेंट एग्जैक्टली।
8: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
9: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, fun
5: Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: देखो यार, एक काम किया करो, दोस्त जब बड़े सालों बाद मिलते हैं ना, स्पेशली वो दोस्त जो आपकी शादी से पहले आपके मिले हों और उसके बाद शादी के बाद आपसे मिलने आए, तो जब भी मिलने आए पहले तो उनको तब नहीं बुलाना जब घर पे पार्टी चल रही हो, और बुलाना भी है तो पहले ही बीवी बच्चे वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया करो भाई। अब एक दोस्त गया एक दोस्त के घर शादी फंक्शन में, शादी के कई साल बाद उसने घर में देखा सब ठीक ठाक है, बैठे दोनों बात कर रहे थे, एकदम से दोस्त बोलता है, यार ये तेरा बेटा तो बिल्कुल तेरे पे गया है। कहता धीरे बोल, पड़ोसन का है। वही लंबे ट्रबल में आ जाओगे ब्रदर, एडवाइस देना मेरा काम है।
1: प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है।
0: 6:26 इन द स्टूडियो क्लॉक, 6:26 हो चुके हैं जी, यानी कि आई हैव अबाउट 30 मोर मिनट्स विद यू ऑन फनेजिया रेडियो। जून की 25 तारीख थर्सडे की शाम है जनाब, मजे आने शुरू हो चुके हैं, वीकेंड को दिख रहा है अब हमें, और अगले वीकेंड के लिए वैसे एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि अगले वीकेंड के बाद जो अगला वीकेंड आ रहा है वो आ रहा है जुलाई 4th का, और छुट्टियाँ छटियाँ आ रही हैं जी, घूमने कामने जाने का प्लान है, बट सैड बात है कि जुलाई 4th सैटरडे को, यार ऐसे कौन करता है यार, ये क्या सिस्टम है, इन्होंने जान के खेला हमारे साथ, ये खेला खेल गए, दया कुछ तो गड़बड़ है दया। खैर, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय श्री कृष्णा ज्वेलर्स। भाभियों, जो भी गड़बड़ है ना लाइफ की, सारी सॉल्व हो जानी है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने जाना है श्री कृष्णा ज्वेलर, वहाँ पे पोल की और कुंदन की जो सिलेक्शन है ना यूनिक है उनके पास, बता रहा हूँ अभी से, मेरी बीवी गई थी उसने बताया मुझे, मैं बीवी को यूजुअली क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ और जाने देता हूँ, जा इंजॉय कर, ऐसे ही होना चाहिए ना भाभी। अब लेने क्या जा रही है, सोचो आप सोना लेने जा रही है ना, डिप्रिशिएटिंग एसेट है, नहीं अप्रिशिएटिंग एसेट है, हमारे माँ बाप के टाइम से चलता आ रहा है सोना खरीदो सोना खरीदो, मोदी जी की बात मत सुनो, हम रहते हैं ट्रंप की कंट्री में, हमें मोदी का क्या लेना। आप जाके बेधड़ल्ले से श्री कृष्णा पे करो शॉपिंग, हस्बैंड जो चैं चैं चैं करता रहता है उसके दोस्तों दोस्तों के पास, जाने दो उनको, करो एंजॉय, आप अपना सुकून से शॉपिंग शॉपिंग करो। श्री कृष्णा नई लोकेशन लेके आया आपके लिए डालस फोर्ट वर्थ में, और ये आ चुका है जी कहाँ फ्रिस्को में। एड्रेस क्या है मैं दे रहा हूँ ना आपको, आप क्यों टेंशन ले रही हो, एड्रेस मेन स्ट्रीट फ्रिस्को पे है जी, और एड्रेस उनका है 13145। कुछ नहीं करना है आपने, गूगल करना है मेन स्ट्रीट श्री कृष्णा ज्वेलर, उसने आ जाना है, आपने जाके इंजॉय करना, सिंपल सी फिलॉसफी है। आज एक बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जी, उन्हीं का एक गाना मैं लगाना चाहता हूँ, बट आई एम गोना टेक यू बैक इन द डे विद दिस नेक्स्ट ट्रैक। और ये जो गाना है ये आई एम श्योर आप सब लोगों ने बहुत बार सुना है, और दिस सॉन्ग हैज़ अ वेरी स्पेशल फीलिंग टू इट। हार के बाद जो जीतने का हमें समझ आया है वो आया था, एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया 1987, और उसका जो गाना था जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है, आई थिंक इट्स वेरी प्रेवलेंट टुडे आल्सो। अगर आप कहीं लाइफ में स्टक हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट लिसन टू दिस सॉन्ग, थिंग्स विल बी बेटर। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है, आपके बच्चों ने नहीं देखी है, मेक श्योर यू मेक देम वॉच इट नाउ। मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द गिव अवे, बट वी आर सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे ऑफ दिस एक्टर हु वॉज ऑल्सो इन मिस्टर इंडिया मूवी, ऑल्दो ही वॉज बॉर्न इन 1978, तो मतलब मिस्टर इंडिया आई है 87 में, दैट मीन्स ही वॉज अबाउट 9 years old एट दैट टाइम। उसके साथ इन्होंने अव्वल नंबर 1990 में आई थी फिल्म, उसमें भी रोल किया था, चालबाज में किया था, शहनशाह में किया था, CID में किया था, एंड इंसानियत में भी किया था। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मूवीज एज अ चाइल्ड एक्टर, ही हैज़ डन मैनी मूवीज इन द इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा एज वेल, एंड एक जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल मिला था, फिल्म आई थी कसूर 2001। कौन है ये आप बताइए मुझे, आई एम लुकिंग फॉर द नेम ऑफ द चाइल्ड एक्टर हु इज़ अ बिग एक्टर नाउ, अब तो एक्टिंग खैर कम करते हैं, बट ही इज़ गॉट सम अदर मूवीज टू हिज नेम, जैसे की हंगामा, आवारा पागल दीवाना, एंड द बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल फॉर अ मूवी कसूर इन 2001, हु इज़ ही टेल मी।

0: Born in the year 1978 and did the child roles, as I said, for movies like Mr. India 1987, Shehenshah 88, Chalbaz, Amwal Number and CID. And he did get a debut award for the best debut male, and that was with a movie which was called Main Kyun Bataun Ruk Jata Hoon. And of course he got a best negative actor role in 2001 as well. Let's see, who do we have with us who wants to answer that for me? Good evening.
1: Hi.
0: Fanesia, aapka naam? What's your name, sir?
1: Rishi.
0: Rishi bhai, kya kar rahe hain? Matlab cash register sambhal rahe hain ya paise gin ke rakh rahe hain?
1: Nahi, bas kuch grocery ke kaam karke wapas laut rahe hain ghar ko.
0: Wo kya ab main ration ki qataron mein nazar aata hu. Ha,
1: bilkul aap sahi samjhe.
0: Ek ghazal hai Jagjit sahab.
1: Wahi.
0: वैसे मैं उतना बुरा नहीं हूँ मैं, पर फीलिंग ले लेता हूँ. अच्छा, आपको मालूम है किस एक्टर की बात कर रहा हूँ सर?
1: मैं गेस करना चाहता हूँ, मेरे गेस के हिसाब से आफताब शिवदासानी, क्योंकि उन्होंने चाइल्ड एक्टर.
0: आप ऑल राइट, आपका मैं आंसर लेता हूँ जी, आफताब शिवदासानी कहते हैं ये. गुड इवनिंग. किसी ने मुझे बोला कि एक और नाम लिया था उन्होंने, बट नो, दैट वॉज नॉट द वन. गुड इवनिंग फनेजिया, हुज दिस? Hello, hello, hello. Can you hear me?
2: Hello.
0: Hi, good evening.
2: Hi, good evening. First of all, मतलब previous उन्होंने कहा, मतलब आफताब शिवदासानी, जुगल हंसराजी और हुजन.
0: नहीं नहीं, हाँ, जुगल भी थे मिस्टर इंडिया में, बट हम बात कर रहे थे आज बर्थडे किसका है जो मिस्टर इंडिया में थे, वो थे आफताब शिवदासानी. You are absolutely right. Thank you very much for that call and that answer. Yes, it was indeed आफताब शिवदासानी. राम गोपाल वर्मा, मस्त मूवी आई थी जिसमें मिला था बेस्ट डेब्यू मेल स्टार स्क्रीन अवार्ड फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर. एंड सब्सिक्वेंटली 2001 में फिल्म आई थी कसूर, फॉर विच रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल. एंड अगर इनकी और फिल्मों की बात की जाए तो क्या यही प्यार है, आवारा पागल दीवाना, हंगामा, मस्ती एंड सम रोल्स इन तमिल सिनेमा एज वेल. टुडे वी रिमेम्बरिंग दिस वंडरफुल जेंटलमैन. हिज नेम इज आफताब शिवदासानी. अ वेरी हैप्पी बर्थडे आफताब भाई फ्रॉम द टीम हियर एट फनेजिया. And from Banda Bindas. And you know what? Meri inke saath ek photograph hai at an event that we did here in Dallas. We did a New Year's Eve where the star celebrity was Aftab Shivdasani. And luckily, my brother was also here. And ye dono ek jaise lag rahe the yaar. Khair, happy birthday, Aftab, from the team here at Fun Asia. And here is the track that got it all going for him.

0: On the other side of the commercial break, I have one more special birthday coming up, and the segment is going to be totally on her. And she was one of the best stars of her time. Who is she? Right after the break.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ.
5: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है.
4: कैसे?
5: Page 3 eatery?
4: No, not another restaurant again.
5: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
4: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
6: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट.
7: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
10: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
11: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च मे वेरी.
12: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
13: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
14: इट्स लॉसन.
13: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
14: इट्स लॉसन.
13: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
15: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे. 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
16: तोहफा हो या यादें, पहुंचाइए प्यार. इंटरनेशनल शिपिंग मेड सिंपल विद SFL Worldwide. SFL Worldwide, डिलीवरिंग कनेक्शंस एंड स्माइल्स.
17: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
18: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है, या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
19: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली, और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
18: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन.
20: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
21: नहीं आया.
20: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
1: Visit www.sanadainc.com today.
22: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

कपूर फैमिली में पैदा हुआ था जी, आज ही के दिन एक ऐसा चिराग जिसने मतलब शाइनिंग आज भी उनकी ये बरकरार है जी, एंड शी इज समबडी हु मेड अ बिग इम्पैक्ट इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री विद हर एंट्री, एंड दैट वाज द ईयर 1991-1995 जब कि इनकी एंट्री होनी शुरू हुई। एक उम्र 16 साल की और एक यंग सी लड़की पहली फिल्म के साथ आई थी जिसका नाम था प्रेम कैदी। उसके बाद आई बहुत सारी और फिल्में, एंड दैट वाज पुलिस ऑफिसर, जागृति, निश्चय, सपने, साजन के दीदार, ये सारी कुछ फेल हो गई। एंड देन केम मोर मूवीज़, एंड एक कोलैबोरेशन आई अक्षय खन्ना साहब के साथ, एंड देन सलमान साहब के साथ बहुत हिट मूवीज़, एंड गोविंदा साहब के साथ बहुत हिट मूवीज़। और अगर इनकी हिट मूवीज़ की बात की जाए तो मुकाबला, जो कि एक अच्छा मूवी आया था इनका, एंड देन द लिस्ट केप्ट गोइंग ऑन टू सच हिट्स जो कि हम सब ने इन्जॉय किए हैं, जैसे कि राजा बाबू, जिगर, अनाड़ी, एंड देन अंदाज अपना अपना विच कैन बी नेवर फॉरगॉटन, कुली नंबर वन, साजन चले ससुराल, एंड जीत, आई एम टॉकिंग अबाउट द बर्थडे गर्ल ऑफ टुडे, करिश्मा कपूर, द एल्डर सिस्टर ऑफ करीना कपूर, बॉर्न ऑन टुडेज डे 25th of June 1974। आज 51 ईयर्स की हो चुकी हैं। निकनेम लोलो के नाम से जानी जाती हैं, एंड आई लव्ड हर रोल इन मोर मूवीज़ जैसे कि दुल्हन हम ले जाएंगे, एंड एक और इनकी बड़ी सीरियस सी फिल्म आई थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट वन, फिज़ा वॉज फैंटास्टिक, एंड जुबेदा वॉज फैंटास्टिक, दुल्हन हम ले जाएंगे वॉज फैंटास्टिक। सो ओवरऑल आई थिंक शी इज़ गिवन अस अ वेरी हैप्पी टाइम ऑफ बॉलीवुड विद हर एक्टिंग, एंड एक फ्रेशनेस थी इनकी एक्टिंग में, इनकी डांसिंग में, एंड व्हाट शी ब्रिंग ब्रॉट टू द टेबल वाज वेरी डिफरेंट देन मेनी अदर्स। आज हम कर रहे हैं जी करिश्मा जी को बर्थडे सल्यूट एंड सेलिब्रेशन राइट हियर एट फनेजा, एंड आई एम गोना प्ले सम मोर ऑफ हर सॉन्ग्स। दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, लेट्स विश दिस ब्यूटीफुल गर्ल अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द टीम हियर एट फनेजा एंड फ्रॉम बंदा बिंदास मारविंदास। हियर वी गो विद वन मोर ट्रैक दैट वाज वेरी पॉपुलर बैक इन द 90s। अगेन करिश्मा जी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एक्चुअली यार करिश्मा जी के गाने के बाद ना एक छोटा सा किड है जिसका नाम था कियांश, कियांश का बर्थडे अभी ड्यू है राइट आफ्टर दिस ट्रैक।